0: विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरका परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्ले ऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। भगवान शिव असाधारणता के पर्याय हैं। तमोगुण के अभिमानी देवता होते हुए भी वह परम प्रकाश स्वरूप हैं। सर्वाधिक अमांगल्य को अंगीकार करके भी परम मंगलमय हैं और मुंडमाल चिताभस्म को धारण करके भी पतित पावन हैं।

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हे प्रभु, तेरे सामने हाथ जोड़कर सच्चे हृदय से इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि मैं मांगू या ना मांगू, मुझे कोई ऐसा चीज कभी ना देना जो मुझे अच्छी लगने पर भी मेरा बुरा करने वाली हो और मेरी बुद्धि को कुमार्ग पर ले जाने वाली हो।

गीता के अनुसार ईश्वर परम सत्य अनादि अविनाशी सर्वव्यापी और सत्ता है, जो सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है, सृष्टि का आधार है और योग माया से प्रकट होता है। वह सभी कर्मों का साक्षी है जो प्रकृति और माया को नियंत्रित करता है, फिर भी स्वयं उससे परे है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: राम जब जीवन में और हृदय में आ जाते हैं तो पुण्य बुद्धि का विषय न रहकर स्वभाव बन जाता है। वह जीवन में उस गुण की संज्ञा में आ जाता है जहाँ जो भी होता है वह सबके लिए सुखकारी और आनंदकारी होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए चिंतन बिंदु।
1: संबंध, एक ऐसा संबंध कि प्रायः हम सब उन संबंधों में रचे बसे हैं। आज वह प्रेम व भाव भातृत्व संबंध में भी न रहा जो भातृत्व संबंध में प्रायः आज के 20-25-30 साल पूर्व रहा करता था, कि बड़ा भाई बोले और छोटा भाई चुप होकर के स्वीकार करता था। आज सबको बड़ा बनने की होड़ है। हम रामकथा सुनते तो हैं, रामकथा दर्शन क्या कराती है कभी हमने समझने का प्रयास नहीं किया। अन्यथा राम का चरित्र, लखन का चरित्र, भरत लाल जी का चरित्र और शत्रुघ्न लाल का चरित्र, मुझे लगता है इससे बड़ा प्रमाण हमारे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में नहीं हो सकता, जो प्रमाण हमारे राघवेंद्र सरकार और चारों भाइयों ने इस समाज को दिया है। एक भाई ऐसा है जिसे जब पता चलता है कि मेरे पिताजी से मेरी मैया ने कहा है कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी, राम जी के चेहरे पे शिकन नहीं है, राम जी के चेहरे पे वही लालिमा, वही मुस्कुराहट है, मेरा भाई ही तो बन रहा है। कभी चिंतन करिए उस भातृत्व प्रेम का कि जिस दशरथ जी का शरीर क्षीण पड़ा हुआ है, जो राम राम कह के व्याकुल हैं और वहाँ पे राघवेंद्र सरकार अपनी माँ से आके कहते हैं तो किसी की बुराई नहीं करते, कैकेयी मैया के बारे में भी कुछ नहीं कहते। कौशल्या मैया पूछती हैं क्या हुआ, क्या कारण है, पूरे अयोध्या में हल्ला मचा हुआ है, तो राघवेंद्र सरकार ने कहा कि भरत राजा बनने वाला है, मेरा भाई भरत अयोध्या का राजा बनने वाला है। एक बड़े भाई का कर्तव्य एक छोटे भाई के राजा बनने पर इतनी प्रसन्नता राघवेंद्र सरकार को है। कौशल्या मैया ने कहा आप कहाँ, आपके बारे में क्या सोचा, तो उन्होंने कहा पिताजी ने मुझे उससे भी बड़ा राजा बना दिया, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया, किसी की बुराई नहीं, राघवेंद्र सरकार का त्याग, मेरा भाई भरत राजा बनेगा, इसकी प्रसन्नता साफ चेहरे पे झलक रही थी। कोई सिकन नहीं, कोई कष्ट नहीं, वही माधुर्य, वही प्रेम। और इधर भरत लाल जी महाराज को जब पता चला, भरत लाल जी को जब सूचना मिली और भरत लाल जी जब आए और पता चला कि मेरे कारण मेरे भाई को बन जाना पड़ा, कैकेयी मैया से कहते माँ हर माँ बालक का चतुर्दिक सम्मान मान बढ़े इसलिए सदैव तत्पर रहती है, लेकिन तू मेरी माँ होकर मुझे तुमने इतने बड़े पाप का कारण बना दिया, मुझे तेरे गर्भ से जन्म ही नहीं लेना चाहिए था, न मैं जन्म लेता और न मुझे अपने भाई को वन में जाने का कारण मैं हूँ। वशिष्ठ जी से कहते हैं कि गुरुदेव मेरे पिताजी इसलिए नहीं मरे कि मेरे भाई राघवेंद्र सरकार बन जा रहे हैं, मेरे पिताजी की मृत्यु इसलिए हो गई कि मैं पापी भरत का मुख कैसे देखूं जिसके कारण उसका बड़ा भाई बन चला गया हो, मेरा मुख मेरे पिता कैसे देखते हैं जिसने अपनी माँ को त्याग दिया हो, कि माँ तुमने इस राजसत्ता के कारण मेरे भातृत्व प्रेम में जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा वह तुमने मांग लिया। एक भाई है लखन लाल जिसने अपने पत्नी तक से पूछने नहीं गए और 14 वर्षों तक वह जंगल में रहे, सहन नहीं किए और अपने भाई के रक्षणार्थ खड़े रहे कि मेरा भाई अकेले कैसे जाएगा। अपनी माँ से पूछते हैं क्या करो, माँ ने कहा कि तुम मुझसे पूछने आए हो। लखन लाल जी महाराज माँ का तो आशीर्वाद लेने राम जी के कारण गए लेकिन पत्नी के पास नहीं गए और वो निकल पड़े अपने भाई के साथ वलकल वस्त्र धारण करके। और एक भाई शत्रुघ्न लाल जब देखा कि मेरा एक भाई वन में है और एक भाई उसकी सेवा में है और एक भाई भरत हैं जो नंदीग्राम में जाके तपस्वी जैसा जीवन जी रहे हैं, तो मौन होकर इस अयोध्या का साम्राज्य चलाना है लेकिन यह साम्राज्य का राजा तो मेरे राघवेंद्र सरकार ही हैं। एक चारों भाई के इतने स्नेह और इतने प्रेम का दर्शन करने के बाद भी अगर हम अपने भाइयों में प्रेम न कर पाएँ तो भातृत्व संबंध को समझना इससे सरल नहीं हो सकता।
0: ये था आज का चिंतन बिंदु, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए जान लेते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से कुछ ही देर में 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मानस गान। प्रादेशिक समाचार का समय है 7:20 और 7:31 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी।

8:45 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा हिट्स सुपर हिट्स। सुगम संगीत कार्यक्रम 9:50 पर, इसमें आज के कलाकार होंगे अली हैदर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते का समय है 10:05 पर, और 11:05 पर होगा कार्यक्रम लोक रंगे, जिसमें आज आप सुनेंगे सत्यनारायण राजभर और साथी के गाए हुए लोकगीत।

11:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा गीतांजलि, और 12:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने। दोपहर के 12:00 एनसीईआरटी द्वारा आयोजित प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे, और 12:55 पर होगा कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज के कलाकार होंगे अली हैदर।

महिलाओं का कार्यक्रम होगा नारी जगत। ये कार्यक्रम होगा 1:15 पर। इसे लेकर आएंगे मेनका श्रीवास्तव। 1:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में आज का विषय है मिट्टी में कार्बन मात्रा कैसे बढ़ाएं। वार्ताकार हैं डॉक्टर रामजीत यादव।

सायंकालीन सभा में 5:05 पर युवाओं का कार्यक्रम होगा युवा वाणी, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा यूनियन ग्लोबल रोड सेफ्टी सप्ताह, विश्व एड्स टीकाकरण और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर। घर आंगन कार्यक्रम का समय है 5:35 पर, इसमें आज चर्चा होगी विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर। और साथ ही आप वार्ता सुनेंगे नवजात शिशु की देखभाल कैसे करें, डॉक्टर अनामिका शर्मा की वार्ता होगी। और साथ ही आप लोकगीत सुनेंगे बिमल कठेरिया से।

दिसमार कार्यक्रम में आज ब्रिजमोहन राम से कविता पाठ सुनवाई जाएगी 7:07 और लोकधारा कार्यक्रम में राम ज्ञान व साथी के गाए हुए आप लोकगीत सुनेंगे। ये कार्यक्रम होगा 6:45 पर। ये था आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।

वन गमन के लिए तैयार श्रीराम माता कौशल्या से विदा ले चुके हैं, किंतु साथ जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ पत्नी सीता से माता की उपस्थिति में कुछ भी कहने में उन्हें संकोच हो रहा है। उधर समय अपनी गति से निकला जा रहा है, अतः सीता के लिए उनकी सिखावन भी अनिवार्य है कि यदि वो अपना और पति का कल्याण चाहती हैं तो उन्हें श्रीराम की आज्ञा मानकर घर पर ही रहकर सास की सेवा करनी चाहिए। आदरपूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। पत्नी से श्रीराम का कहना है, हे सुमुखी, जब जब प्रेम से व्याकुल होकर माता मुझे याद करें तब तब उन्हें पुरानी कथाएं सुनाकर धीरज बंधाना। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु तथा वेदवाणी द्वारा सम्मत आचरण का फल बिना किसी क्लेश के तुम्हें मिल जाएगा। हट करने के कारण गालव ऋषि तथा राजा नहुष जैसों ने केवल कष्ट ही सहे हैं, किंतु वन प्रवास में होने वाले घोर कष्टों का वर्णन सुनकर भी सीता ने अपना निश्चय नहीं बदला। वन मार्ग में नंगे पैरों में चुभने वाले कुश कांटे और कंकड़, दुर्गम पर्वत और खो, रीछ बाघ भेड़िये सिंह आदि के डरावने गर्जन तर्जन की आशंका उन्हें तनिक भी विचलित नहीं कर सकी। वन के भीषण सर्पों, भयानक पशु पक्षियों तथा स्त्री पुरुषों को उठा ले जाने वाले राक्षसों के झुंड का वर्णन भी सीता को उनके निर्णय से नहीं डिगा पाए।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री राम चेतमानस का संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
3: अखबार प्लास्टिक कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
2: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
3: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
4: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना,

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गतरात्रौ गोथिनबर्ग इत्यत्र स्वीय स्वीडिश समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यमुना साकं संवादं विहितवान्। श्री मोदी द्विदिवसीय स्वीडन यात्रान्तर्गतं गतदिने गोथिनबर्ग इत्यत्र संप्राप्तवान्। भारत स्वीडन देशयोः संबंधेषु मोदिनः असाधारण योगदानाय दूरदर्शी नेतृत्व सम्माने च प्रधानमंत्री श्री मोदी रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोल स्टार डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस इत्यनेन सम्मानेन सभाजितवान्। प्रधानमंत्री मोदी सह प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्तांतर्गतम उभौ नेतारौ भारत स्वीडन संबंधानां समेषां पदक्षेपाणां समीक्षामपि कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ व्यापार निवेश प्रविधि नवाचार हरित परिवर्तनम अंतरिक्ष रक्षा अनुसंधानम समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चितवन्तौ। स्वीय संबोधने श्री मोदी आतंकवादम आलोचयन नैकेषु विषयेषु विस्तृतेन वक्तव्यं प्रकटितवान्। आतंकवादं विरुध्य संघर्षे स्वीडिश प्रधानमंत्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्री मोदी प्रकाशितवान्।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना स्वीडिश समवायाः आमन्त्रिताः। गोथिनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतं श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण हरित हाइड्रोजन अभियानं स्वच्छोर्जा अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय यात्रायाः चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्यः श्री मोदी अद्य नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। प्रधानमंत्रिणः मोदिनः नॉर्वे इत्यत्र एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम इत्यमुना अथ रानी सौम्या इत्यनया साकं च मेलनं कुर्यात्। श्री मोदी तत्रत्य प्रधानमंत्रिणा जोनास गहरस्टोरे इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे केरलम शासनस्य शपथग्रहणम् अद्य स्यात्। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन अद्य तिरुवनन्तपुरम इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्। कांग्रेस दलेन सतीशन इत्यसौ केरल प्रदेशस्य अग्रिम मुख्यमंत्री रूपेण समुद्घोषितः। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वयुतेन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ग्रन्थियुतेन तत्र शासन विरचनं स्यात्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः गुजरात प्रदेशस्य गांधीनगरे 700 कोटि मितानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। स्वीय द्विदिवसीय यात्रावधौ गतदिने गांधीनगर नगर निगमस्य 100 कोटि मितानां विकास कार्याणां शुभारम्भमपि श्री शाहः विहितवान्। एतत्पूर्वं प्रथमे दिने श्री शाहः सूचना केन्द्रस्य उद्घाटनं च कृतवान्। श्री शाहः एआई तथा डीपटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तंभौ इति वर्णितवान्।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: अन्ते च क्रीडा वार्तासु आईपीएल इत्येतस्यां क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां अद्य चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः

0: मध्ये द्वंद्वं स्यात् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोतेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोतेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी उल्लेख किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोतेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें और मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए उन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे जलपोत गुजरने की अनुमति दी गई थी, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details, log on to www.ddindia.com।
6: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
7: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
6: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
7: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप हमारे केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
8: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
9: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
8: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
9: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
8: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
9: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
8: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के नव नियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को किया विभागों का आवंटन। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बने एमएसएमई विभाग के मंत्री। प्रदेश में अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत, 5 घायल। अब समाचार विस्तार से। स्वीडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। ये किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को स्वीडन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वीडन का सर्वोच्च पुरस्कार मिलना सिर्फ उनका सम्मान नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है।
1: यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: स्वीडन में मिला सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक मिला ये 31वां वैश्विक सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने मंत्रिमंडल में नव नियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया। नव नियुक्त मंत्रिमंडल मंत्रियों में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई विभाग सौंपा गया है। मनोज कुमार पांडे को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग आवंटित किया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान राज्य मंत्री के तौर पर पदोन्नत किए गए अजीत पाल सिंह को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के साथ साथ राजनीतिक पेंशन विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है, जबकि सोमेंद्र तोमर को सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षा दल विभाग का प्रभार सौंपा गया है। नवनियुक्त 4 राज्य मंत्रियों को भी विभाग आवंटित कर दिए गए। कृष्णा पासवान को पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग, हंसराज विश्वकर्मा को लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और कैलाश राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग सौंपा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन वहां के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण 2026 के तहत भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश का ऐसा राजनीतिक दल है जो देश को सुरक्षा, संस्कृति, सुशासन और समृद्धि को जोड़ने का काम कर रही है। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारों ने राष्ट्र प्रथम की भावना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की संकल्पना के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को तैयार किया है। इससे देश के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।
2: भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन सपनों को भी साकार किया है जिन्होंने अंत्योदय की बात, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास मिल जाना, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल जाना, 10 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, ये समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समृद्धि के शिखर तक पहुँचाने के अभियान का क्रम है।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान और सांसद रवि किशन शुक्ल सहित कई पार्टी पदाधिकारी और प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 24,717 अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर

0: 17,000 रूपए प्रतिमाह किए जाने के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मानदेय बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार अनुदेशकों को 5,00,000 तक स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है हर बच्चा शिक्षा हासिल करे ताकि विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सके।
1: जब साफ नियत से कोई सरकार कार्य करती है, स्पष्ट नीति हो तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। प्रदेश के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट था लगभग 17-18% के आसपास था और आज हम इसको घटाते घटाते 3 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं और हमारा मानना है इसको 0 तक पहुंचाना चाहिए। हर बच्चा पढ़ेगा तब विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार हम कर पाएंगे।
0: केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद और प्रदेश के राज्य मंत्री संजय गंगवार ने कल पीलीभीत में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री प्रसाद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है और सरकार ने जो कहा उसे करके दिखाया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने कल से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपये की बढ़ोतरी कर दी। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपये जबकि गाजियाबाद और नोएडा में ये 88.70 रुपये हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में 1 माह तक चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला कल से शुरू हो गया। एक रिपोर्ट।
2: मथुरा समेत समूचे ब्रजमंडल में 1 माह तक चलने वाला अधिक मास मेला शुरू हो गया है। चहू और 84 कोस परिक्रमा का उत्साह और राधे राधे की गूंज सुनाई दे रही है। आस्था और भक्ति में डूबे लाखों श्रद्धालु मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना नंदगांव और गोवर्धन में 84 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। SP ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए परिक्रमा मार्ग गोवर्धन द्वारकाधीश और श्री कृष्ण जन्मस्थली समेत प्रमुख मंदिरों को सुपर जोन और सेक्टरों में कर भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र की CCTV कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
0: प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल हुए 3 अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 अन्य घायल हैं। हमीरपुर के मौदहा क्षेत्र के छिरका गांव के पास हाईवे पर खड़े ट्रक और कार की टक्कर में हुई दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सभी बागेश्वर से दर्शन कर घर वापस जा रहे थे। हमारे फतेहपुर प्रतिनिधि ने बताया कि वहां के रिंद नदी में नहाने गए 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई जबकि अन्य 2 को गोताखोरों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं शाहजहांपुर जिले के कांट इलाके में कल सुबह डंपर और ऑटो की टक्कर में दंपत्ति सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 20 मई से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साथ ही विभाग द्वारा कल और 20 मई को प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में दिन के समय कुछ स्थानों पर तेज लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच प्रदेश में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी रखी जाए। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए जाए। मुख्यमंत्री द्वारा अस्पतालों में दवाओं बेड और डॉक्टरों की उपलब्धता बनाए रखने के साथ एम्बुलेंस सेवाओं को भी सक्रिय करने का निर्देश दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को किया विभागों का आवंटन। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बने एमएसएमई विभाग के मंत्री। प्रदेश में अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत, 5 घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ, यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
5: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म काला पत्थर के इस गीत से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, संगीत निर्देशन है राजेश रोशन के और बोल हैं साहिर लुधियानवी के।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हमारे कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं? क्या तब्दीलियाँ चाहते हैं आप हमारे कार्यक्रमों में? बताइएगा जरूर। आज और अभी हमें खत लिखिए। पता है, पत्र मिला कार्यक्रम द्वारा के निदेशक, आकाशवाणी गोरखपुर, टाउन हॉल कैंपस, पिन 273001। आप अपनी बातें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। एड्रेस है PATRAMIN।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे मशाल फिल्म का गीत। संगीत था हृदयनाथ मंगेशकर का और गीत लिखा था जावेद अख्तर ने। और अगला गीत है हम तुम फिल्म से अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में।

संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

कल हो ना हो, इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और शान को। अगला गीत है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है संघर्ष, संगीत नौशाद का है।

कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलो हर्ट्स और एफएम 100.1 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने

0: आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोटेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोटेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के लिए संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की।
6: कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए यूडीएफ कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई जयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
7: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
8: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल VA वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलूट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने एचडी देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
9: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और एआई में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। एनडीए सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और एनडीए की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नव भारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. Congress leader V.D. Satheeshan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Prime Minister Modi was awarded Sweden's highest honour, the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties and his visionary leadership. The award is the highest distinction that can be given to a head of government. This is Prime Minister Modi's 31st international honour. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. The two leaders also agreed to identify new opportunities in the spirit of the India-EU strategic partnership and recently concluded India-EU FTA for the benefit of their people. We have more details on this from our correspondent in Sweden covering the Prime Minister's visit.
11: Central to the visit was the adoption of a joint action plan which aims to double bilateral economic exchange within 5 years. Under the theme India-Sweden Stronger Together toward 2047, both nations committed to holding a bilateral trade and investment summit in India in 2027. In the realms of technology and climate action, the visit secured significant agreements to co-create solutions for the 21st century. Both nations launched the Joint Innovation Partnership 2.0 and agreed to establish a virtual India-Sweden Joint Sciences and Technology Center focusing on AI, 6G, quantum computing and life sciences. Furthermore, Sweden-India Technology and AI Corridor will be strengthened to connect the two nations' startup ecosystem. On the climate front, the leaders announced the third phase of the leadership group for industrial transition, significantly expanding cooperation in green steel and low-carbon industrial transformation. Defense and security cooperation have transitioned from a traditional buyer-seller model to a long-term industrial partnership with Swedish companies actively investing in India's defense production corridors. Prime Minister specifically thanked Sweden for its support following the Pahalgam terror attack, reaffirming a joint commitment to global stability. Finally, the visit celebrated a shared intellectual legacy and broader regional cooperation. To commemorate the centenary of Gurudev Rabindranath Tagore's historic visit to Sweden, both countries initiated the Tagore Sweden Lecture Series and exchanged unique gifts including replicas of Tagore's handwritten epigrams found in Swedish archives. The presence of European Commission's President Ursula von der Leyen highlighted the visit's importance to the India-Euro partnership with the renewed push for the India-Euro free trade agreement described as the mother of all deals to unlock new opportunities for innovators and investors alike.
12: We succeeded indeed in concluding our landmark trade agreement. We call it the mother of all deals. And just look at some of the figures. A shared market of over 2 billion people, that is close to one quarter of global GDP. Over 90% of tariff cuts. Enormous opportunity to grow trade and investment. From here in Gothenburg, Scandinavia's largest trading port, to Mundra port in your home state in Gujarat.
11: Sakshi Singh, Akashwani News, Gothenburg, Sweden.
10: Prime Minister Modi has invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission. During an interaction with select Swedish CEOs in Gothenburg, Mr. Modi made a strong pitch to Swedish companies to enhance their presence in India in manufacturing, green hydrogen mission, clean energy and other sectors. The discussions also focused on strengthening cooperation in resilient supply chains, green transition, sustainable mobility, life sciences and digital technologies. Highlighting India's rapid economic transformation, Mr. Modi mentioned about strong domestic demand, digital public infrastructure, manufacturing expansion and next-generation infrastructure development in India.
2: Vodafone, Ericsson, Nokia, Orange जैसी कंपनियों का भारत में विशाल अनुभव है। भारत 5G से 6G ट्रांजिशन एआई एनेबल्ड नेटवर्क्स, सिक्योर कनेक्टिविटी और डिजिटल इंक्लूजन में बड़ा पार्टनर बन सकता है.
10: The Ministry of External Affairs has said that business leaders and CEOs who met Prime Minister Narendra Modi in Sweden expressed strong interest in India and appreciated the country's transformation driven by sustained economic reforms over the past several years. Addressing reporters after the European Roundtable Industry Meeting, MEA Secretary of West, C.B. George, said that CEOs and senior industry leaders highlighted the significant changes they have witnessed in India in recent years.
13: Which was attended by a large number of key companies in Europe. I would like to highlight that in his meetings today with the CEOs and other senior leaders from the business, they all highlighted about their interest. You know, they have been observing India for last few years. They have been investing in India for last few years. What they have seen is a complete transformation in India in the last few years. They emphasized that.
10: In the fourth leg of his visit, the Prime Minister will reach Norway today for the third Indian-Nordic summit and bilateral engagements. This will mark the first prime ministerial visit from India to Norway in 43 years. Mr. Modi will call on King Harald V and Queen Sonia and hold bilateral talks with Prime Minister Jonas Gahr Støre. Mr. Modi will also address the Indian-Norway Business and Research Summit along with the Norwegian Prime Minister. The visit will provide an opportunity to review the progress made in Indian-Norway relations and explore avenues to further strengthen them. Congress leader V.D. Satheeshan will be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Keralam Governor Rajendra Vishwanath Arlekar will administer him oath of office and secrecy at a function in Thiruvananthapuram this morning. The Chief Minister-designate unveiled a 21-member UDF cabinet last evening ahead of today's swearing-in ceremony. More from our correspondent.
14: The Congress-led UDF ministry is being sworn in today in Keralam after a gap of 10 years. The Chief Minister and 20 other ministers will take oath at a function organized at Central Stadium, Thiruvananthapuram. 16 members of the new ministry, including Chief Minister V.D. Satheeshan, are becoming ministers for the first time. UDF workers in large numbers have been arriving in the state capital since yesterday afternoon to witness the swearing-in ceremony. Senior leaders, including Congress President Mallikarjun Kharge, leader of the opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, the chief ministers of Karnataka, Himachal Pradesh and Telangana, outgoing chief minister Pinarayi Vijayan and BJP state president Rajiv Chandrasekharan are expected to attend the ceremony today. Nidhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
10: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Union Home Minister Amit Shah arrived in Raipur last evening on a two-day visit to Chhattisgarh. During his visit to the state, Mr. Shah will participate in several programs in Raipur and Bastar. A report from our correspondent.
7: On the first day of his visit to Chhattisgarh, Union Home Minister Amit Shah will flag off new vehicles under the emergency response service dial 112 in Raipur this morning. Later, he will travel to Bastar and inaugurate a public convenience center at Netanar village in the district. The center is aimed at providing easier access to government and digital services for people living in remote areas. Thereafter, Mr. Shah will reach Jagdalpur and pay tribute to Martyrs at Amar Vatika. In the afternoon, he will interact at Badal Academy in Jagdalpur with families of martyrs, security personnel, people affected by Naxal violence and representatives of various local communities. In the evening, he will also attend the Bastar Ke Sang folk cultural program. This is Mr. Shah's first visit to the state after Chhattisgarh was declared Naxal free. Vikalp Shukla, Akashwani News, Raipur.
10: The trail of the NEET paper leak case has now reportedly extended from Latur to Nanded in Maharashtra. A parent has been accused of purchasing the leaked question paper for 5 lakh rupees for his daughter. A CBI team questioned the individual yesterday and has summoned him to appear before the agency's Pune office tomorrow for further investigation. Meanwhile, in the same case, the Delhi Rouse Avenue Court has remanded Pune-based accused Manisha Mandhare to 14 days of CBI custody. According to the agency, Mandhare was a key conspirator in the leak of the NEET biology examination paper. The India Meteorological

0: department has said that the southwest monsoon is likely to set in over Keralam on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date of 1st of June. Our correspondent reports that conditions are favourable for the southwest monsoon to advance into more parts of the southeast Arabian Sea, Bay of Bengal, Andaman Islands and Andaman Sea over the next 2 to 3 days.
1: IMD said Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, coastal Karnataka, Keralam and Mahe are likely to experience heavy rainfall today. The Met Department said that Lakshadweep, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura, South Interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal are also likely to witness similar conditions. Meanwhile, the Weather Department forecast a heat wave to severe heat wave conditions over West Uttar Pradesh today. Heat wave conditions are very likely at isolated places over East Uttar Pradesh, Haryana, Chandigarh, Delhi, Madhya Pradesh, Marathwada, Punjab, Rajasthan, Telangana and Vidarbha today. According to IMD, a gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius is expected over many parts of northwest India during the next 3 to 4 days. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
0: In our bilingual live phone-in program Public Speak today, we will bring you an insightful discussion on the ongoing Phase 1 of Census 2027, the House Listing and Housing Census. V.A. Varade, Deputy Registrar General in the Office of the Registrar General and Census Commissioner of India, Ministry of Home Affairs, will be in our studio to answer listeners' queries. To participate, simply dial 011-233-1444 from 9:30 p.m. onwards tonight. Alternatively, you can send your queries via WhatsApp to 9289094044 or post your questions on X using the hashtag AskAIR. On to sports. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Rajasthan Royals by 5 wickets at Arun Jaitley Stadium, Delhi last night. Chasing a target of 194 runs set by Rajasthan Royals, Delhi Capitals scored 197 for 5 in 19.2 overs. KL Rahul was the top scorer with 56 runs. For Delhi Capitals, Mitchell Starc took 4 wickets, which was later adjudged player of the match. And now for a look at today's newspapers, it's over to Neera Arakel.
2: Thank you, Shagun. Sweden confers its highest honour on PM Narendra Modi. The Royal Order of the Polar Star Degree Commander Grand Cross is Prime Minister Modi's 31st international award, is a top headline in the Pioneer, while the Asian Age headlines trade to chips. India inks 14 Netherlands pacts, lifts ties, Modi jettin, hold talks, adopt strategic partnership roadmap. The statesman mentions metro to run extra rain train trips to encourage use of public transport. This capacity expansion aims to ensure uninterrupted service and efficient passenger management. UAE nuclear plant attacked by drone, testing Iran truce, writes the Hindustan Times. While the Times of India states drone attack sparks fire at UAE nuclear plant. In an editorial titled Diversification Gains, the Hindu commends India's export performance in April 2026, underscoring the attempts by the government and industry to diversify in terms of crisis. And finally, the Indian Express writes HPV vaccination sees uptake, 1,100 girls receiving the shot. The figure reflects a slow but steadily accelerating start to one of the country's most important public health drives in recent years in preventing cervical cancer. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Neera. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. Congress leader V.D. Satheesan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन कोटनबर्ग से दो तरफा बातचीत की। भारत और स्वीडन ने अपनी दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकत दारी तक ले जाने का फैसला किया। वजीर आजम ने स्वीडन की कंपनियों को मदु किया है कि वो मेक इन इंडिया, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन इकदाम के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। इम्कान है कि जुनूब मगरबी मानसून इस महीने की 26 तारीख को केरलम के साहिल पर पहुंच जाएगा, जो मामूल की तारीख से 6 दिन पहले है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल रात गोटेनबर्ग में स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टरसन से बातचीत की। वो इस मुल्क के दो रोजा दौरे पर कल गोटेनबर्ग पहुंचे थे। जनाब मोदी को स्वीडन के आला तरीन एजाज रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से नवाजा गया। उन्हें ये एजाज दो तरफा ताल्लुकात में उनके गैर मामूली तआवुन और उनकी दूरंदेश क्यादत को तस्लीम करते हुए दिया गया है। ये अवार्ड आला तरीन इम्तियाज है जो किसी सरबराह हुकूमत को दिया जाता है। ये वजीर आजम मोदी का 31वां बैन अलावामी एजाज है। वफ्द की सतह की बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने भारत स्वीडन ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लिया और दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकत दारी तक ले जाने से इत्तेफाक किया, जो इन ताल्लुकात में एक बड़ी पेशरफ्त है। उन्होंने तिजारत और सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और इख्तिरा, माहौल के लिए साजगार राहदारी, खला, उभरती हुई टेक्नोलॉजी, दिफा और सलामती, एसएमईज, रसाई और अवाम से अवाम के रिश्तों के मैदानों में गहरे तआवुन के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। पेश है एक रिपोर्ट।
4: इस दौरे का असल मकसद 2026 से 2030 तक के लिए एक मुश्तरक एक्शन प्लान इख्तियार करना है, ताकि दो तरफा इकतसादी तबादलों को अगले 5 साल में दोगुना किया जा सके। भारत स्वीडन मजबूत तर अंदाज में यकजा 2047 की जानिब मौजू के तहत दोनों मुल्कों ने 2027 में दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी समिट मुनाकिद करने का आजम किया। स्वीडन के सीईओज के साथ बातचीत के दौरान वजीर आजम ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन, खासतौर पर माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन और अहम मादनियात के मिशनों में मजीद सरमायाकारी को मदु किया। अब इस शराकतदारी को सेमीकंडक्टर्स, जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग और मुस्तहकम सप्लाई चेन तक तोसी दी जाएगी। वजीर आजम ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत को स्वीडन की तरफ से हिमायत दिए जाने पर खासतौर पर शुक्रिया अदा किया, जो आलमी इस्तेहकाम के तई एक मुश्तरक अजम का यादा है। गोटेनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
3: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मदु किया है कि वो मेक इन इंडिया, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन जैसी पहल के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। गोटेनबर्ग में स्वीडन के सीईओज के साथ बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने स्वीडन की कंपनियों से जोर देकर कहा कि वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन मिशन, साफ सुथरी तवानाई और दीगर शोबों में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। इस बात पर जोर देते हुए कि भारत और स्वीडन के दरमियान जमहूरियत, शफाफियत, इख्तिरा और पायदारी की मुश्तरक अकदार मौजूद है, जनाब मोदी ने स्वीडन की ताकत को इख्तिरा और पायदारी के मैदान में भारत की तरक्की, सलाहियत और नशोनुमा की रफ्तार के मुताबिक बनाने को कहा।
5: वोडाफोन, एरिक्सन, नोकिया, ओरांज जैसी कंपनियों का भारत में विशाल अनुभव है। भारत 5G से 6G ट्रांजेक्शन, AI एनेबल्ड नेटवर्क्स, सिक्योर कनेक्टिविटी और डिजिटल इंक्लूजन में बड़ा पार्टनर बन सकता है।
3: वजारत खारजा ने कहा है कि स्वीडन में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले सीईओज और कारोबारी रहनुमाओं ने भारत में काफी दिलचस्पी जाहिर की है और पिछले कुछ बरसों में पायदार इकतसादी असलाहत के जरिए मुल्क में यकसर तब्दीली की सताइश की है। यूरोपी गोल में सनती मीटिंग के बाद नामनिगारों से खिताब करते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी CB जॉर्ज ने बताया कि सीईओज और कारोबारी रहनुमाओं ने हालिया बरसों के दौरान भारत में देखी गई काबिल जिक्र तब्दीलियों को उजागर किया। जनाब जॉर्ज ने मजीद कहा कि वजीर आजम मोदी और स्वीडन के वजीर आजम उल्फ क्रिस्टरसन ने रविन्द्रनाथ टैगोर की मुश्तरक सकाफती विरासत के जश्न के तौर पर खसूसी तोहफों का तबादला किया। वजीर आजम मोदी अपने दौरे के चौथे मरहले में तीसरी भारत नॉर्डिक समिट और दोतरफा सरगर्मियों के लिए आज नॉर्वे पहुंचेंगे। ये वज़ीर-ए-आज़म मोदी का नॉर्वे का पहला दौरा तो है ही, अलबत्ता पिछले 43 साल में भारत के किसी वज़ीर-ए-आज़म का नॉर्वे का पहला दौरा भी है। जनाब किंग हेराल्ड फाइव और जनाब मोदी किंग हेराल्ड फाइव और क्वीन सोंजा से मुलाकात करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म जोनास गहर स्टोर के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। जनाब मोदी नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म के साथ साथ भारत नॉर्वे तिजारत और तहकीक की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। केरलम के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर उन्हें तिरुवनंतपुरम में एक तकरीब में आज सुबह 10 बजे ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। नामजद वजीर आला ने कल शाम यूडीएफ की 21 रुकनी काबीना का ऐलान किया था। तफसील हमारे नमा निगार से।
6: कांग्रेस की क्यादत वाली यूडीएफ वजारती काबीना को आज केरलम में 10 साल के वक्फे के बाद हलफ दिलाया जा रहा है। वजीर आला और 20 वजीर तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में मुनक्किद एक तकरीब में हलफ लेंगे। वजीर आला वी डी सतीशन समेत नई वजारती काबीना के 16 अराकीन पहली बार वजीर का ओहदा संभालेंगे। यूडीएफ कारकुन हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में कल दोपहर से ही रियासत की राजधानी पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के वज़ीरे आला सुबुकदोश वजीर आला पिनराई विजयन और बीजेपी के रियासती सदर राजीव चंद्रशेखर इस तकरीब में शिरकत करेंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
3: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह छत्तीसगढ़ के दो रोजा दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। रियासत के अपने दौरे में जनाब शाह रायपुर और बस्तर में कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
7: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह अपने छत्तीसगढ़ दौरे के पहले दिन आज सुबह रायपुर में हंगामी खिदमात डायल 112 के तहत नई गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वो बस्तर के लिए रवाना होंगे, जहां जिले के नेतानार गांव में अवामी सहूलत मरकज के इफ्तिताह करेंगे। इस मरकज का मकसद दूर दराज के इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों की हुकूमत और डिजिटल खिदमात तक रसाई को आसान बनाना है। इसके बाद जनाब शाह जगदलपुर पहुंचेंगे और अमर वाटिका पर शहीदों को खराज अकीदत पेश करेंगे। जनाब शाह का जगदलपुर की बादल एकेडमी में दोपहर में शहीदों के अफराद खानदान, हिफाजती अहलकारों, माओनवाजों के तशद्दुद से मुतासर अफराद और मुख्तलिफ मकामी बिरादरियों के नुमाइंदों से मुलाकात का भी प्रोग्राम है। वजीर दाखिला शाम को लोक सकाफती प्रोग्राम बस्तर के संघ में मौजूद रहेंगे। मरकजी वजीर दाखिला कल 19 मई को जगदलपुर में वस्ती जोनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वज़ीरे आला शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ को माओनवाजों से पाक करार दिए जाने के बाद जनाब शाह का रियासत का यह पहला दौरा है। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
3: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को साल 2026 के लिए पद्म अवार्ड अदा करेंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दाखिला ने कहा कि सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भवन में मुनक्कद होने वाली पहली शहरी एजाज से मुतालिक तकरीब के दौरान सिविल इन्वेस्टिचर तकरीब में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड अदा करेंगी। इस साल भारत सरकार ने मजमूई तौर पर 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा 79वीं आलमी सेहत असेंबली में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए। ये 6 रोजा तकरीब आज से जिनेवा में शुरू होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब नड्डा ने कहा कि यह असेंबली 165 मुल्कों के वज़राए सेहत, मुअज्जज अफराद और अवामी सेहत माहिरीन को यकजा करेगी, जहां मुस्तहकम ज्यादा शमूलियाती और लचकदार सेहत देखभाल निजाम के तहत मुश्तरका आलमी अज़्म की यकीन दहानी कराई जाएगी। मगरिब वस्ती रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल आग लगने के वाकये की जांच के लिए आला इंतजामी ग्रेड सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। आग लगने का वाकया ट्रेन के एक मुसाफिर कोच और एक लगेज ब्रेक और जनरेटर कार में उस वक्त पेश आया जब ट्रेन मध्य प्रदेश के लूनी रिचा और विक्रमगढ़ अलौत स्टेशनों के दरमियान थी। भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बारख न्यूक्लियाई मरकज को निशाना बनाकर किए गए हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में वजारत खारजा ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं और कशीदगी के खतरनाक फैलाव की नुमाइंदगी करती हैं। नई दिल्ली ने सब्र तहमुल की अपील करते हुए बातचीत और सिफारतकारी की फौरी जरूरत पर जोर दिया है। इससे पहले कल मुत्तहिदा अरब अमारात के अज़दफरा के बारख न्यूक्लियाई मरकज के अहाते में ड्रोन हमला किया गया, जिससे मरकज की अंदरूनी हदूद के बाहर इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आग लग गई। भारत के महकमा मौसमियात ने कहा है कि जनूब मगरबी मानसून के 1 जून की मुकर्रर तारीख से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम पे आ जाने का इम्कान है। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि जनूब मगरबी मानसून की अगले 2 से 3 दिन के दौरान जनूब मशरकी बहरे अरब, खलीज बंगाल, अंडमान जजायर और अंडमान समंदर के हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए मौसमी हालात साजगार हैं। एक रिपोर्ट।
6: भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि अंडमान और निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, साहिली कर्नाटक, केरलम और माहे में आज शदीद बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने मजीद कहा कि लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी इसी तरह के मौसमी हालात रह सकते हैं। महकमे मौसमियात ने मगरबी उत्तर प्रदेश में आज गर्मी की शदीद लू चलने की पेशगोई की है। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
3: आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल शाम खेले गए इस दिलचस्प मैच में जीत के जरिए दिल्ली कैपिटल्स ने प्लेऑफ की अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 194 रन के निशाने के लिए खेलते हुए 19 ओवर्स और 2 गेंदों में 197 रन बनाए। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल पॉइंट्स टेबल में 8वें मकाम से 7वें मकाम पर पहुंच गई है और प्लेऑफ की दौड़ में शामिल है। एक दीगर मैच में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर शानदार 222 रन बनाए। जवाब में 223 रन के लिए खेलते हुए पंजाब किंग्स मुकर्रर ओवर्स में 8 विकेट खोकर 198 रन ही बना सकी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
7: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाली आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम के नीदरलैंड्स दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के स्वीडन पहुंचने पर उन्हें आला तरीन एजाज से सरफराज किया गया। रोजनामा प्रताप ने जजों की तादाद बढ़ाने की खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजों की तादाद 34 से बढ़ाकर 38 करने की मरकजी काबीना के फैसले को मंजूरी दे दी है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर दाखला अमित शाह के गुजरात दौरे की खबर को सुर्खी बनाया है। अमित शाह ने कहा कि गुजरात टेक्नोलॉजी के मैदान में भी मुल्क की क्यादत करेगा। अखबारात की कुछ अहम खबरें, बेंगलुरु मुंबई वंदे भारत स्लीपर सर्विस जल्द शुरू होगी, अश्विनी वैष्णव का बयान। अमरीका से चीन 200 से ज्यादा तैयारी खरीदेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के जौहरी पावर प्लांट पर ड्रोन हमला। ईरान ने अब नए हुरमुज से गुजरने वाले बहरी जहाजों के लिए टोल लगाने का मंसूबा बनाया।
3: और आखिर में खास खास खबर एक बार फिर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टरसन गोटनबर्ग से दोतरफा बातचीत की। भारत और स्वीडन ने अपने दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकत दारी तक ले जाने का फैसला किया। वजीर आजम ने स्वीडन की कंपनियों को मदद किया है कि वो मेक इन इंडिया, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन इकदाम के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। इम्कान है कि जनूब मगरबी मानसून इस महीने की 26 तारीख को केरलम के साहिल पर पहुंच जाएगा, जो मामूल की तारीख से 6 दिन पहले है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
8: जी, आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट्स।

0: संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: अगला गीत उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है तुमसा नहीं देखा, ए लव स्टोरी। संगीत नदीम श्रवण का है और गीत लिखा है समीर ने।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

एयर लिफ्ट फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अमाल मलिक और अरिजीत सिंह को। संगीत अमाल मलिक का था और गीतकार थे कुमार। अगला गीत आइए सुनते हैं तेरी मेरी कहानी फिल्म से। आवाज़ है वाजिद की, संगीत साजिद वाजिद की है और गीत लिखा है प्रसून जोशी ने।

0: जहर फिल्म में अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण को। संगीत था अनु मलिक के और गीत लिखा था सईद कादरी ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल लखनऊ केंद्र से।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बरेली और सीतापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नाजिया अंजुम का।
2: बरेली में अब कोई भी फरियादी अपनी समस्या का समाधान पाए बिना वापस नहीं लौटेगा। ये संभव हुआ है ऑनलाइन मॉनिटरिंग के माध्यम से। बरेली जिले में सभी तहसीलों की 10 से 12 के बीच जनता दर्शन की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसमें सभी तहसीलदारों BDO SDM को 10 से 12 के बीच अपने दफ्तर में बैठना है, जिसकी मॉनिटरिंग जिला अधिकारी बरेली अपने ऑफिस से करते हैं। यही नहीं, अगर जिला अधिकारी कार्यालय में किसी तहसील का कोई मामला आता है तो जिला अधिकारी बरेली संबंध अधिकारी से सीधे जुड़कर उस व्यक्ति की समस्या का समाधान करते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से जनता दर्शन की लाइव मॉनिटरिंग के आदेश को बरेली जिले में बखूबी पूरा किया जा रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय की भी मॉनिटरिंग लखनऊ से की जाती है। इसके साथ ही बरेली जिले की सभी तहसीलें बरेली जिला मुख्यालय से जुड़ती हैं, जिसमें हर फरियादी को अपनी समस्या का समाधान मिलता है। जनता दर्शन के दौरान 10 से 12 के बीच जिलाधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी

0: जनसुनवाई में मौजूद रहते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रखते हैं। जिलाधिकारी बरेली का कहना है कि जनता दर्शन का उद्देश्य आम आदमी की समस्याओं का समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान करना है, ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। लाइव मॉनिटरिंग के चलते अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है और हर शिकायत की प्रगति पर नजर रखी जा रही है।
1: मुख्यमंत्री कार्यालय से यूपी के 75 जिलों के जो जिलाधिकारी के कार्यालय में जो जनता दर्शन कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, उसकी लाइव मॉनिटरिंग की जाती है, जिसमें सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी ये देखते रहते हैं कि जनता दर्शन में आने वाले जो हमारे फरियादी हैं, शिकायतकर्ता हैं, उनकी शिकायतों का किस प्रकार से सुनवाई हो रही है, किस प्रकार से आम जनमानस के प्रति व्यवहार है और किस प्रकार से उनकी उचित गुणवत्ता के साथ उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए और उससे जो रिजल्ट प्राप्त हो रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जिला प्रशासन कह सकते हैं कि एक नया नवाचार किया है। हम लोगों ने अपने यहाँ भी एक बड़ी स्कीम के माध्यम से जितने भी हमारे 6 तहसीलों के SDM हैं, उनके कार्यालय, जो हमारे पास 15 विकास खंड हैं उनके विकास खंड अधिकारी के कार्यालय और 19 हमारे पास जो है वो नगर पालिका और नगर निगम के EO के कार्यालय हैं, उन सभी को हमने अपने यहाँ जोड़ते हुए उनकी भी लाइव मॉनिटरिंग प्रारंभ किया है। तो लाइव मॉनिटरिंग के दौरान कार्य के जो आम जनमानस के प्रति उनकी किस प्रकार का व्यवहार है, किस प्रकार से वो शिकायतों को सुन रहे हैं, किस प्रकार से समस्या का समाधान कर रहे हैं, इस पे लगातार हम लोग नजर रख रहे हैं और यही वजह है कि कार्य की जो गुणवत्ता है लगातार उच्चतर होती जा रही है।
0: बरेली में धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई मिलने जा रही है। गत दिनों उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने नाथ कॉरिडोर में कराए जा रहे कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जिले में 98 करोड़ की लागत से सभी नाथ मंदिरों का कायाकल्प कराया जा रहा है, जिसमें त्रिवटी नाथ, धुपेश्वर नाथ, अलकनाथ विशेष रूप से शामिल है। इन मंदिरों में सरकार द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, ताकि धार्मिक पर्यटन को एक नई दिशा मिल सके। एक कार्यक्रम में पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि पर्यटन को प्रदेश में नई ऊर्जा मिल रही है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा ईंधन बचाने की अपील पर बोलते हुए कहा कि ये राष्ट्रहित का काम है। बरेली जिले में जल्द ही इको फ्रेंडली नगर वन बनने वाला है, जिसका शिलान्यास गत दिनों वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने किया। ये नगर वन शहरवासियों के लिए एक प्राकृतिक रमणीय स्थल बनने जा रहा है, जिसमें प्रकृति का खास ध्यान रखा जाएगा। इस नगर वन में बच्चों के लिए किड जोन भी विकसित किया जाएगा, जिससे बच्चे यहाँ आकर प्रकृति को समझ सकें। सबसे बड़ी बात ये है कि इस इको फ्रेंडली नगर वन में सब कुछ प्राकृतिक ही प्रयोग किया जाएगा, कंक्रीट और ईंट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। रोहिलखंड विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए दिव्यांग विद्यालय दिशा पब्लिक स्कूल में गत दिनों गुजरात दिवस का आयोजन धूमधाम से किया गया। स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को और भी शानदार बनाया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाना आसान है, लेकिन बच्चों को सही दिशा देना, हुनर सिखाना और आत्मनिर्भर बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने विश्वविद्यालयों को समाज से जुड़ते हुए कम से कम 5 गांव गोद लेकर उन्हें विकसित करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी केवल किताबों तक सीमित नहीं है, उन्हें गाँव में जाकर महिलाओं, बच्चों और किसानों की समस्याएं सुननी चाहिए, उनके समाधान में भागीदारी निभानी चाहिए। टीबी मुक्त भारत अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 4 लाख से अधिक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्यपाल ने कहा कि हर विश्वविद्यालय को राज्यों की स्थापना दिवस मनाने चाहिए, जिससे छात्रों को देश की विविधता और विकास मॉडल की जानकारी मिले। उन्होंने अपने गुजरात कार्यकाल का अनुभव साझा करते हुए बताया कि ग्रामीण महिलाओं बड़े स्तर पर परीक्षण अभियान चलाया गया, जिसमें 1.5 करोड़ महिलाओं की स्क्रीनिंग हुई और हजारों को समय से इलाज मिला।
2: बरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सीतापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दीपक श्रीवास्तव का।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में सीतापुर स्थित पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य को भव्यतम स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में पौराणिकता और नवाचार को समाहित करते हुए नैमिष स्थित पुरानी धर्मशाला को आधुनिक शिल्प ग्राम इंटीग्रेशन सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। खास बात यह है कि विरासत भवन की मूल संरचना को सुरक्षित रखते हुए उसे आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 372 करोड़ रुपए की मंजूरी देते हुए पहली किस्त के रूप में 2.98 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि नैमिषारण्य के इस इंटरप्रिटेशन दर्शन सेंटर में श्रद्धालुओं को स्थानीय इतिहास, धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत की विस्तृत जानकारी मिलेगी। इसके लिए भवन के भीतर अलग अलग थीम पर आधारित गैलरियां बनाई जाएंगी, जिनमें कॉस्मिक ऑर्डर, जीवन का विकास, सभ्यता का उदय, महाकाव्य और ज्ञानोदय जैसे विषयों को रोचक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। परियोजना के तहत पूरे परिसर का समग्र विकास किया जाएगा, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। योजना अंतर्गत आधुनिक प्रवेश लाबी, आकर्षक एम्फी थिएटर, मूर्तिकला मार्ग और स्वच्छ शौचालय ब्लॉक विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही मौजूदा भवन का नवीनीकरण और नई इमारत का निर्माण किया जाएगा, जिससे इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि पूरे क्षेत्र का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वातावरण और अधिक सजीव व आकर्षक बन सके। अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृत एवं धर्मार्थ कार्य विभाग अमृत अभिजात ने बताया कि नैमिषारण्य जैसे पवित्र तीर्थ स्थल का समग्र विकास प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया यहाँ श्रद्धालुओं आधुनिक और समग्र सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ इसकी समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रस्तावित इंटरप्रिटेशन सेंटर के जरिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को एक ही स्थान पर इस पावन स्थल के धार्मिक महत्व, परंपराओं और इतिहास की व्यापक जानकारी मिल सकेगी। इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलेगी, बल्कि क्षेत्र में सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्राप्त होगी। सीतापुर के अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में स्वगणना 2027 के तहत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर सेल्फ सर्वे कराया गया। साथ ही सभी विभागों व विकास खंडों में विशेष अभियान चलाकर अधिकाधिक सेल्फ इन्यूमेरेशन सुनिश्चित कराने तथा अधीनस्थों को प्रेरित करने के निर्देश दिए गए। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु एवं विधायक मिश्रित रामकृष्ण भार्गव ने आम जनमानस से अपील की कि स्वगणना 2027 में अपनी जनगणना संबंधी सूचनाएं डिजिटल माध्यम से निःशुल्क दे सकते हैं, जिससे जनगणना का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सकता है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन बहुत ही हर्ष उल्लास और उत्साह के साथ बाबा जंगली नाथ मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर में रुद्र अभिषेक किया गया, जिसका सजीव प्रसारण सभी आगंतुकों ने देखा। महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर इस पर्व को समारोह पूर्वक मनाया। जनपद सीतापुर में पुलिस लाइन परिसर से कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा बाबा जंगली नाथ मंदिर में समाप्त हुई, जहां सभी गणमान्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को बाबा जंगली नाथ का अभिषेक एवं पूजन अर्चन संपन्न कराया गया। सभी अतिथियों ने श्रद्धालुओं को संबोधित करने के साथ सजीव प्रसारण का अनुसरण किया। अंत में जिलाधिकारी द्वारा सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। संचालन राज शर्मा जिला व्यायाम शिक्षक ने किया। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद सीतापुर, वैभव त्रिपाठी एवं बड़े संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे ये देश गान, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही देर में उर्दू कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से।
1: केंद्र है, पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
2: सामईन, आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेजबान आसिफ इकबाल। सलाम कबूल फरमाएं। आज हम पेश करते हैं आकाशवाणी के 90 साल होने पर इरम मेडिकल यूनानी कॉलेज कैंपस में हुए क्विज प्रोग्राम की पहली किस्त।
3: आकाशवाणी एट 90 क्विज प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान शमसुल आरफीन और मेरे साथ हैं।
4: मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जमशेद।
3: सलाम कबूल फरमाइए।
4: सामईन, आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर आज हम मौजूद हैं इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज में, जहां पर हम आकाशवाणी एट 90 क्विज प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं।
3: तो सबसे पहले हम खैर मकदम करते हैं कॉलेज के प्रिंसिपल मोहतरम जनाब प्रोफेसर अब्दुल हलीम साहब का और मोहतरम जनाब डॉक्टर जुबैर खान साहब का। हकम के फराइज अंजाम दे रहे हैं मोहतरम जनाब सुभाष खन्ना साहब और मोहतरम जनाब डॉक्टर जुबैर खान साहब।
4: तो इस क्विज में कॉलेज की चार टीमें हिस्सा ले रही हैं। चार टीमों के नाम आकाशवाणी के मशहूर प्रोग्राम्स के नाम पर हैं, जो कि इस तरह है। टीम हवा महल, जिसमें दो लोग मौजूद हैं, हबीबुल्ला और उबैदुर रहमान। जोरदार तालियां। साथ में है टीम छाया गीत, अब्दुल्ला सिद्दीकी और फजील हाशिम की शक्ल में। तीसरी टीम है हमारी आबशार, जोया आलम और तबीही नाज है मौजूद इसमें। और टीम है रजनीगंधा, तहसीन और शाइमा है मौजूद इस टीम में। तो आइए शुरू करते हैं आकाशवाणी एट 90 क्विज प्रोग्राम।
3: तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे इस क्विज प्रोग्राम में चार राउंड होंगे और चारों के नाम होंगे। पहला राउंड होगा बूझो तो जाने, जिसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन किए जाएंगे। हमारा दूसरा राउंड होगा आवाज की दुनिया, जिसमें हम आपसे रेडियो से जुड़े हुए सवाल पूछेंगे, आकाशवाणी से जुड़े हुए सवाल। तीसरा हमारा राउंड होगा स्टेथोस्कोप राउंड, जिसमें मेडिकल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फाइनल राउंड हमारा होगा जो जीता वही सिकंदर, जिसमें बॉलीवुड और उर्दू अदब के क्वेश्चन किए जाएंगे। हम आपको एक बात और बता दें कि इस पहले राउंड और तीसरे राउंड में नेगेटिव मार्किंग होगी। तो चलिए हम पहला राउंड शुरू करते हैं, बूझो तो जाने। पहला राउंड शुरू करते हैं बूझो तो जाने। बूझो तो जाने का हमारा पहला सवाल है, अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की नींव किस मुस्लिम सूफी संत ने रखी?
5: ऑप्शन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन नंबर दो मियां मीर और ऑप्शन नंबर तीन बुल्ले शाह। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, श्योर हैं आप? हम लॉक कर दें इसे। इन्होंने जवाब दिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी,
3: जो कि सवाल सही नहीं है।
5: जी, यानी जवाब इन्होंने गलत दिया है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और अगला सवाल जो है टीम छाया गीत के लिए है। साल 1919 में किस कानून को काला कानून कहा गया है, जो पारित हुआ था?
3: आपके ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी है माउंटबेटन प्लान और ऑप्शन सी है विधवा विवाह कानून।
6: सर ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट।
5: ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट। आप लोग क्या कह रहे हैं, सही है? ये ऑडियंस ने मोहर लगा दी है।
3: हाँ।
5: तो आपका ये सवाल का जवाब पूरी तरह से सही है।
3: जोरदार तालियां होनी चाहिए।
5: अब हम चलते हैं टीम आबशार की तरफ। सवाल बहुत बढ़िया है, आजादी से रिलेट करता हुआ सवाल है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा किसने दिया था?
3: ऑप्शन देने की बारी नहीं आ रही है, वो बोल रहे हैं सुभाष चंद्र बोस।
5: जवाब बिल्कुल सही है।
3: टीम आबशार का ये जवाब बिल्कुल सही है।
5: 10 पॉइंट मिलते हैं आपको। और टीम रजनीगंधा, आपके लिए भी सवाल बड़ा खूबसूरत सा है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए?
3: ऑप्शन आपके हैं 30 साल, 35 साल या 40 साल। 35 ईयर बता रहे हैं जमशेद।
5: 35 साल। आप लोग क्या कहते हैं, सही है गलत है? और आप पारी आती है, फिर एक बार टीम हवा महल की तरफ एक बार फिर चलते हैं। टीम हवा महल, आपका सवाल स्टेट से है, राजनीति से है। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है?
7: आपके ऑप्शन है 243, 243, 245, 245 या 250, 250।
8: सर 243।
7: 243 बता रहे हैं।
5: अब आप क्या कहेंगे?
7: सही जवाब है या गलत, आप लोग बताएं।
5: देखिए हमने तो कुछ नहीं कहा, आपके साथियों ने कहा ये जवाब गलत है। भाई सही जवाब जो है वो है 250।
7: टीम हवा महल नेगेटिव में।
5: और हम आगे बढ़ते हैं, सवाल आता है टीम छायागीत की तरफ। और सवाल ये है कि देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? और ऑप्शन आपके पास हैं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ या जस्टिस बी आर गवई।
6: सर फर्स्ट।
7: फर्स्ट जस्टिस सूर्यकांत।
6: जी।
7: क्या लगता है आप लोगों को, हैं सही है? ऑडियंस को,
5: ऑडियंस ने जो है मोहर लगा दी तो मानना पड़ेगा
7: जी।
5: तो ये जवाब पूरी तरह से है सही। और एक बार फिर चलते हैं टीम आबशार की तरफ। और टीम आबशार आपसे सवाल है, हवा की शुद्धता

0: यानी प्योरिटी, इसको प्रदूषण मापने का इंडेक्स क्या है?
1: ऑप्शन ए AQI, दूसरा ऑप्शन है AIQ या ऑप्शन सी है PQI।
2: AQI
0: AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स,
1: बिल्कुल सही है जवाब।
0: और आप चलते हैं टीम रजनीगंधा की तरफ। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीरो पर आउट होने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है?
1: ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है रिकी पोंटिंग और ऑप्शन सी है मुथैया मुरलीधरन।
0: जी
2: सर, ऑप्शन बी।
1: ऑप्शन बी है रिकी पोंटिंग। क्या लगता है ऑडियंस को? गलत है। आप में से कोई जवाब देना चाहेगा?
3: मुथैया मुरलीधरन।
1: मुथैया मुरलीधरन बिल्कुल सही जवाब है आपके लिए। टीम रजनीगंधा के लिए माइनस पॉइंट।
0: और अगला सवाल एक बार फिर टीम हवा महल से है, और सवाल है कि इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है?
1: आपके ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी है चेन्नई या ऑप्शन सी है बेंगलुरु।
4: बेंगलुरु।
1: अहो, जोरदार तालियां होनी चाहिए टीम हवा महल।
0: इस तरह से आगाज हो गया टीम हवा महल का।
1: टीम छाया गीत की तरफ चलते हैं हम लोग।
0: और टीम छाया गीत, आपके लिए सवाल है, ओलंपिक खेलों में भारत को सबसे ज्यादा मेडल किस खेल में मिले हैं?
1: आपके ऑप्शन है कुश्ती, आपके ऑप्शन बी है बैडमिंटन या ऑप्शन सी है हॉकी।
3: सर, ऑप्शन सी हॉकी।
0: तो ये जवाब पूरी तरह से है सही?
1: बिल्कुल सही जवाब,
0: क्योंकि अकेले हॉकी में इंडिया को 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, यानी कुल 13 मेडल मिले हैं हॉकी में। अब आप पूछेंगे अगला सवाल टीम आबशार से, क्या कहते हैं आप?
1: लखनऊ का फेमस सिकंदराबाग जो आपका बना हुआ है, इसको किस नवाब ने बनवाया था?
0: ऑप्शन है
1: आसिफुद्दौला, नवाब शुजाउद्दौला या वाजिद अली शाह।
0: वाजिद अली शाह। ऑडियंस क्या कहती है? और ये जवाब पूरी तरह से सही है।
1: ये बिल्कुल, अगला सवाल आप ही के सब्जेक्ट से है
0: और टीम रजनीगंधा से।
1: रजनीगंधा के लिए
0: जी,
1: प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है लाइपेज, ऑप्शन बी है एमाइलेज और ऑप्शन सी है ट्रिप्सिन।
2: ऑप्शन सी ट्रिप्सिन।
1: क्या लगता है जमशेद भाई, सही है?
0: हाँ, सवाल का जवाब तो बिल्कुल सही है। और अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, टीम हवा महल से है अगला सवाल। और सवाल है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीटों की संख्या कुल कितनी है? और आपके ऑप्शन है
1: 400, 402 या 403।
0: 403। और सही जवाब है 403। और उसके बाद हम चलते हैं एक बार फिर टीम छाया गीत की तरफ कि इनमें से उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है?
1: क्लासिकल डांस कौन सा है इनमें से उत्तर प्रदेश का?
0: कुचिपुड़ी, कथकली या फिर कथक?
1: सर, कथकली।
0: जवाब आया है कथकली। सही जवाब है कथक। फिर हम पहुंचते हैं टीम आबशार की तरफ। इनमें से भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया, जगत प्रकाश नड्डा या फिर राजनाथ सिंह?
2: बी
0: यानी JP नड्डा सही जवाब। और आपको मिलते हैं 10 नंबर।
1: जोरदार तालियां होनी चाहिए टीम आबशार के लिए अगेन।
0: और अब हम आखिरी सवाल की तरफ चल रहे हैं साहब, यानी बूझो तो जाने राउंड का
1: आखिरी सवाल
0: है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? और ऑप्शन आपके हैं 14 या फिर 15 में या फिर अनुच्छेद 16 में।
2: सर, ऑप्शन ए आर्टिकल 14।
1: आर्टिकल 14 टीम रजनीगंधा ने जवाब दिया है।
0: बिल्कुल सही जवाब, आर्टिकल 14। इस राउंड के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस टीम को कितने मार्क्स मिले हैं।
4: टीम हवा महल को मिले हैं 10 नंबर, छाया गीत को 25 और आबशार को 40 सबसे ज्यादा और रजनीगंधा को 25।
0: और अभी टीम हवा महल के पास चांस है और अगला राउंड हमारे पास आ गया है और आवाज की दुनिया में आपको बताना है। कुछ सवाल आकाशवाणी से रिलेट करते हुए होंगे।
1: अच्छी बात यह है कि इस राउंड में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
0: तो शुरुआत फिर एक बार हम हवा महल टीम से करें।
1: जी सर, करिए आप।
0: आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी?
1: ऑप्शन ए 1936 या ऑप्शन बी 1938।
5: 1936।
1: क्या कहेंगे आप लोग?
0: और सही जवाब है 1936। अभी एक स्लोगन था आकाशवाणी का, अभी आपने डॉक्यूमेंट्री देखी। और टीम छाया गीत के लिए सवाल है कि आकाशवाणी का स्लोगन क्या है?
1: आपके ऑप्शन ए है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, या ऑप्शन बी है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
6: सर पहला ऑप्शन।
1: पहला ऑप्शन बता रहे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, क्या कहेंगे आप लोग? गलत है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
0: और अगला सवाल टीम आबशार के लिए, आप बताइए किस साल में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम दिया गया? और ऑप्शन है 1947 या फिर साल 1957।
2: 1957।
0: बिल्कुल सही जवाब।
1: राइट।
0: आकाशवाणी लखनऊ FM का जो चैनल है उसका स्लोगन क्या है? धड़कन लखनऊ की या फिर शान लखनऊ की?
2: सर बी ऑप्शन।
1: ऑप्शन बी
2: शान लखनऊ की।
0: यहां पर हम आपसे कहेंगे धड़कन लखनऊ की। अगला सवाल है टीम हवा महल से। टीम हवा महल, हमारा चैनल है प्राइमरी चैनल, आपको बताना है कि हमारा प्राइमरी चैनल किस फ्रीक्वेंसी पर सुना जाता है? मीडियम वेव 747 किलो हर्ट्ज या फिर मीडियम वेव 750 किलो हर्ट्ज?
1: 750 का ऑप्शन चुना है टीम हवा महल ने।
0: तो सही जवाब क्या है शम्स साहब?
1: 747 किलो हर्ट्ज।
0: यहाँ
1: पर मीडियम वेव 747 किलो हर्ट्ज इज द राइट आंसर।
0: आपका जवाब गलत होता है। विविध भारती चैनल को सुनने के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी बैंड का इस्तेमाल करते हैं? AM मोड पर या फिर FM मोड पर?
1: FM मोड पर। टीम छाया गीत का ये जवाब FM मोड पर।
0: विविध भारती चैनल सुनने के लिए हम इस वक्त FM मोड पर जाते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी मोड पर। विविध भारती को किस फ्रीक्वेंसी पर सुना जा सकता है? 98.6 या 101.6?
2: सब बी
1: 101.6।
0: ऑडियंस सही जवाब। और अब टीम रजनीगंधा के लिए सवाल है कि आकाशवाणी लखनऊ के FM चैनल का नाम क्या है?
1: आपके ऑप्शन है FM रेनबो या ऑप्शन बी है रेडियो मिर्ची?
2: सर ऑप्शन ए।
1: ऑप्शन ए FM रेनबो।
0: बिल्कुल सही जवाब FM रेनबो। टीम हवा महल की तरफ चल रहे हैं। FM रेनबो के गजलों के प्रोग्राम का नाम क्या है?
1: ऑप्शन है आपके आबशार या कहकशां।
5: आबशार।
1: आबशार
0: तो बिल्कुल सही जवाब है
1: जी,
0: आबशार। टीम छाया गीत, प्राइमरी चैनल पर उर्दू प्रोग्राम का वक्त क्या है?
1: आपके ऑप्शन है सुबह 9:30 पर और बी है ऑप्शन रात में 9:30 पर।
6: रात में 9:30
1: का जवाब। सुबह 9:30 पर प्राइमरी चैनल पर आप आकाशवाणी का उर्दू प्रोग्राम सुन सकते हैं, तो आपका यह जवाब गलत है।
0: हम एक बार फिर चलते हैं टीम आबशार की तरफ। FM रेनबो की फ्रीक्वेंसी क्या है?
1: 98.7 या 100.7?
2: B 100.7।
1: राइट।
0: 100.7।
1: यस।
0: टीम रजनीगंधा। आकाशवाणी एक संस्था होती है, जैसे आपका चल रहा है कॉलेज, वैसे आकाशवाणी का एक पेरेंट संस्था है जिससे आकाशवाणी चलती है।
1: ऑप्शन
0: प्रसार भारती या फिर NSD?
2: सर ए प्रसार भारती।
0: ए प्रसार भारती, बिल्कुल सही जवाब है ये।
1: राइट आंसर
0: प्रसार भारती। और एक बार फिर टीम हवा महल।
1: आकाशवाणी के प्रोग्राम को रेडियो पर सुनने के अलावा आप अपने स्मार्टफोन पर किस ऐप के जरिए सुन सकते हैं? आकाशवाणी AIR या न्यूज ऑन AIR?
2: न्यूज ऑन AIR।
0: न्यूज ऑन एयर सही जवाब। न्यूज ऑन एयर
1: सही जवाब है टीम हवा महल के लिए। न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप रेडियो के प्रोग्राम सुन सकते हैं, हमारे आकाशवाणी लखनऊ के प्रोग्राम सुन सकते हैं।
0: और अब सवाल है टीम छाया गीत के लिए, क्या प्राइवेट चैनल FM में न्यूज का प्रसारण कर सकते हैं या न्यूज ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं?
1: सवाल है, ऑप्शन है हाँ कर सकते हैं, ऑप्शन बी नहीं कर सकते हैं।
6: जी सर कर सकते हैं,
0: प्राइवेट FM चैनल न्यूज को प्रसारित कर सकते हैं, उनको अनुमति है। और आपने कहा हाँ,
1: यानी कि गलत जवाब।
0: टीम आबशार सवाल है,
1: आकाशवाणी का सबसे लंबा चलने वाला प्रोग्राम कौन है? ऑप्शन ए है माटी की सुगंध, ऑप्शन बी है मन की बात।
2: मन की बात
0: सही जवाब है। मन की बात।
1: मन की बात, जोरदार तालियां।
0: और माइक टीम रजनीगंधा की तरफ। सवाल है, आकाशवाणी लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है
1: 1938 और 1947।
2: 1938।
0: तो बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ हमारे दो राउंड खत्म होते हैं, बूझो तो जाने और राउंड आवाज की दुनिया।
1: अब हम अपने जजेस से कहेंगे कि यहाँ पर टोटल स्कोर करके आप बता दें और एक टीम यहाँ से एलिमिनेट की जाएगी। मैं चाहता हूँ मोहतरम जनाब सुभाष खन्ना सर आए और टीम का रिजल्ट बताएं।
0: और आपको बता दें कि इस राउंड के बाद जिसके मार्क्स सबसे कम होंगे वो टीम यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी।
4: जो हमारी हवा महल है उन्होंने टोटल 40 अंक अर्जित किए हैं, उन्होंने पहले में भी 40 यानी चारों सही और दूसरे राउंड में भी आपने चारों सही जवाब दिए हैं। और अगली टीम है रजनीगंधा, उसने सेकंड राउंड में 30 अंक अर्जित किए हैं और पहले में 25, टोटल 55 आपके हैं। और आबशार ने टोटल 80 अंक अर्जित किए हैं, आपको बहुत बधाई, आपने सबसे बेहतरीन खेला। तो ये तो रहे अंक। और सर्वप्रथम मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आपने यहां सहभागिता की। तो बड़े दुख के साथ मैं बता रहा हूं कि यहां जो एलिमिनेट टीम हो रही है वो है छायागीत टीम। आपने टोटल 35 अंक अर्जित किए हैं लेकिन आपने पार्टिसिपेशन किया और लगातार आपने जवाब दिया और बहुत बेहतरीन।
0: तो ये दो राउंड के बाद जो बताया हमारे सुभाष खन्ना सर ने, यानी एक टीम हमसे अलग होगी, वो टीम है छाया गीत। और बाकी के तीन टीमें हमारे साथ रहेंगी, टीम हवा महल, टीम आबशार और टीम रजनीगंधा।
7: सामाइन, ये थी क्विज प्रोग्राम की पहली किस्त, अगली किस्त जल्द ही आपके सामने होगी। फिलहाल इजाजत दें, आसिफ इकबाल को आदाब।
8: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था।
9: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम।
10: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
11: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
12: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
13: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
12: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
13: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
12: डायल कीजिए 8700014242।
13: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
9: सुगम संगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं अली हैदर।

0: सुगम संगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार थे अली हैदर। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। श्री मोदी दो दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की। गोथेनबर्ग पहुंचने के तुरंत बाद श्री मोदी ने प्रवासी भारतीय समुदाय से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्ष बाद नॉर्वे की ये पहली यात्रा है।
2: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास

0: गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में गहरी रुचि दिखाई है। यूरोपीय उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ उद्योगपतियों ने हाल के वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया के दो देशों के दौरे पर रहेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये दौरा दोनों देशों के साथ भारत मित्रता के दायरे को और बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग को बढ़ाना और रक्षा औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। श्री सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। शपथ लेने वाले 21 मंत्रियों में सतीशन सहित 14 विधायक पहली बार मंत्री बन रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को मंत्रियों की सूची सौंपने के बाद श्री सतीशन ने कहा कि यूडीएफ मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक साथ शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एचडी देवेगौड़ा ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान देश के लिए बेहतरीन योगदान दिया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने एचडी देवेगौड़ा को धरती का सपूत बताया। श्री शाह ने कहा कि किसानों और ग्रामीण भारत के लिए उनके आजीवन समर्पण ने देश पर अमिट छाप छोड़ी है। भारत ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं। जियांगशान में छठे संस्करण की तुलना में भारत की ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। श्रोताओं, हम आकाशवाणी की 90वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आकाशवाणी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांत पर कार्य करती है। आज आकाशवाणी नेटवर्क देश के सबसे बड़े मीडिया संगठनों में से एक है, जिसे 200 से अधिक केंद्र पूरे भारत में काम कर रहे हैं। श्रोताओं, आकाशवाणी ने अपने सुनहरे इतिहास में न केवल स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश को एकजुट किया, बल्कि आपदाओं के समय और ग्रामीण विकास में भी लोगों तक अपनी पहुंच बनाई है। अपने 90 वर्षों के सफ़र में आकाशवाणी ने देश के कोने कोने तक सटीक जानकारी, संस्कृति और मनोरंजन पहुंचाने में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। तो श्रोताओं, चलते हैं गीतों के सफर पर।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे अंदाज फिल्म का गीत। संगीत शंकर जयकिशन का था और गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने। अगला गीत पाकीज़ा फिल्म से है, लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत गुलाम मोहम्मद का है और गीत कैफी आज़मी का।

आशा फिल्म में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

नया दौर इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को। संगीत ओपी नैयर का था और गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने। अब आइए सुनते हैं अनारी फिल्म में लता मंगेशकर और मुकेश को। संगीत शंकर जयकिशन का है और गीत हशरत जयपुरी का।

आनंद आश्रम इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को। गीत था इंदिवर का और संगीत से सजाया था श्यामल मित्रा ने। अगला गीत है अमानुष फिल्म से, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में, संगीत श्यामल मित्रा का है और गीत लिखा है इंदिवर ने।

अभिमान फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। संगीत एच डी वर्मन का था और गीत लिखा था मजरूह ने। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए, संगीत जयदेव का है।

मेरा नाम जोकर। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मुकेश को, संगीत शंकर जयकिशन का था। अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज़ में अमर प्रेम फिल्म का गीत, संगीत राहुल देवर्मन का है और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। बड़ी समय लग गया।

0: कुछ ही देर में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केरलम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली नई यूडीएफ सरकार ने आज तिरुवनंतपुरम में शपथ ली।
2: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याज विश्वस्त।
1: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और आईयूएमएल नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। तिरुवनंतपुरम में 21 सदस्यीय सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जारी है। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन से बातचीत की। श्री मोदी दो दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन ने डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा

0: की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। श्री मोदी की ये नॉर्वे की पहली यात्रा है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्ष बाद नॉर्वे की ये पहली यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में गहरी रुचि दिखाई है। यूरोपीय उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ उद्योगपतियों ने हाल के वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया के दौरे पर रहेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग को गहरा करना, रक्षा औद्योगिक साझेदारियों को मजबूत करना, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज सुबह एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब ट्रक की टक्कर सामने से आ रही वैन से हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। भारत ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य सहित 10 पदक जीते हैं। जियांगशान में छठे संस्करण की तुलना में भारत की ये एक बड़ी उपलब्धि है। तेल की बढ़ती कीमतों में पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बाद वैश्विक बाजार के कमजोर रुझानों के चलते घरेलू शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: लोक रंग के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं सत्यनारायण राजभर और साथी। आइए सुनते हैं इनके स्वर में लोकगीत।

0: सत्यनारायण राजभर और साथियों के स्वर में आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकरंग। लोकरंग कार्यक्रम जारी रहेगा, लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकरंग। कलाकार हैं सत्यनारायण राजभर और साथी।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकरंग, कलाकार हैं सत्यनारायण राजभर और साथी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार थे सत्यनारायण राजभर और साथी। इसी के साथ ही लोक रंग का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

0: जावेद बशीर के स्वर में आप सुन रहे थे भाग मिल्खा भाग फिल्म से इस गीत को, बोल थे प्रसून जोशी के और संगीत से सजाया था शंकर एहसान लॉय ने। गीतांजलि कार्यक्रम जारी रहेगा, पर उसके पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details, log on to www.ddindia.com।
0: गीतांजलि कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म है वेक अप सिड, आवाज़ें हैं कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य के, शब्द रचना जावेद अख्तर के और धुनों में पिरोया है अमित त्रिवेदी ने।

तुम मिले फिल्म से भी आपने इस गीत को सुना। आवाज़ें थी जावेद अली, इरशान अशरफ और शादाब के। शब्द रचना सईद कादरी के और धुन तैयार की थी प्रीतम ने। और आइए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म है गुनाह।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का आखिरी गीत। फिल्म है राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज। आवाजें हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल के, बोल हैं कुमार और सईद खात्री के।
2: के घाट से हिमालय के विस्तार

इस गीत के साथ ही गीतांजलि कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
1: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
1: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
2: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
1: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
1: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
1: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
2: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी। आपको साधुवाद।
1: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
2: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग

0: 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं?
0: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं।
1: जी,
0: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
0: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
1: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है?
0: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
1: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं?
0: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
1: जी विमरेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
3: वी आर फाइन सर।
4: आई एम फाइन।
5: आई एम गुड सर।
2: फाइन, गुड। ओके, सो टेल मी, what do you like most?
6: I like playing, sir.
7: I like painting, sir.
2: Very good. Anyone else?
8: Sir, I like singing.
9: I like playing with my pets.
2: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
3: Yes, sir.
7: We like.
2: Lovely butterflies?
3: Yes, sir.
2: And lovely colorful chirping birds? That's very nice, children.
7: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
2: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
3: Yes, sir.
2: The rivers, the mountains, and the green trees.
3: Yes, sir.
2: Okay. So let me tell you the story of a sweet child like you.
3: Like us?
2: Would you like to listen?
3: Yes.
7: Story.
2: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
3: Okay, sir.
2: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me. Okay?
3: Okay, sir. We love you.
2: As I lie on my back,
3: looking up at the sky,
2: I see a big white bear,
3: looking down at me,
2: as I lie on my back,
3: looking up at the sky.
2: I see a ship sailing. On a white sea.
3: As I lie on my back.
2: Looking up at the sky.
3: Looking up at the sky.
2: I see an elephant.
3: I see an elephant.
2: Waving its trunk at me.
3: Waving its trunk at me.
2: As I lie on my back.
3: As I lie on my back.
2: Looking up at the sky.
3: Looking up at the sky.
2: Oh, it's fun. It's fun to me. To see whatever I want to see.
3: To see whatever I want to see.
2: So children, you have recited so well. Have you ever noticed the clouds?
3: Yes, sir. They are beautiful.
10: They are very big.
11: They change the shapes.
2: Wonderful. You have very rightly said. So now listen to the same poem in a song. Would you like to listen to this song?
3: Yes, sir!
2: So kids, here comes the song, As I Lie. What?
3: As I Lie.

0: Did you like the song?
1: Yes, sir, it was lovely.
0: So, children, here is something to do for you, okay?
1: Okay, sir.
0: Sit outside your home or go to any park and see the clouds go by. And tell your friends what you have observed.
1: Okay, sir. It will be so lovely.
2: It will be good.
0: Yes. And one thing more. Notice the colors of the clouds. And you will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: Yes, sir.
3: I have seen rainbow.
4: It has 7 colors.
0: So, children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different
1: colors.
0: Very nice.
5: Show of clouds. You were just listening to this program. Program coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical coordinator, Bati Langlingdo. Child singer, Angel. Child artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound recordist, Mayank Kumar. Assistance in production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIET-NCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम. अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा.
6: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है. विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.
7: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
8: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका.
9: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती.
10: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा.
7: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
11: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है.
12: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार. आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
13: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण.
12: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है. देश भर में प्रसन्नता की लहर.
14: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है. राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा.

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों मैं करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है। क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
3: अरे ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
2: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
3: बिल्कुल होता है।
2: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से पढ़ते हैं।
3: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
2: है ना
3: जी।
2: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
3: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
2: बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
0: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
2: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
0: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
1: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
0: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
4: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
2: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
4: अच्छा।
2: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
4: अच्छा।
2: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
4: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
2: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
4: अच्छा।
2: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
4: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
2: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हो तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं, वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे?
4: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
2: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना?
4: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत धन्यवाद।
0: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
1: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे गाने सुहाने।
9: कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
10: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
11: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
10: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
11: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
10: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
11: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
10: For details, log on to www.ddindia.com।
8: फिल्म संगीत के कार्यक्रम गाने सुहाने में लीजिए सुनिए अमर प्रेम फिल्म से ये गीत।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू। आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

0: परवीन सुल्ताना के सुर में आप सुन रहे थे कुदरत फिल्म से इस गीत को। संगीत दिया था आर डी बर्मन ने और शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी के। गाने सुहाने कार्यक्रम जारी रहेगा, लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
4: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाए।
5: स्वच्छता अपनाए, स्वास्थ्य का आनंद उठाए।
4: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
5: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।

सुरेश वाडेकर की आवाज़ में आपने सुना लेकिन फिल्म से इस गीत को। धुन तैयार की थी हृदयनाथ मंगेशकर ने और बोल थे गुलजार के। और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का आखिरी गीत। फिल्म है स्वामी, आवाज़ है यशुदास के, संगीत दिया है राजेश रोशन ने और गीत के बोल लिखे हैं अमित खन्ना ने।

0: इस गीत के साथ ही गाने सुहाने कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
4: स्वच्छता से ही मिलेगी खुशहाल और सुरक्षित जिंदगी।
5: स्वच्छता का संकल्प लाओ, गंदगी को दूर भगाओ,
4: कूड़ेदान में कूड़ा डालो, साफ सफाई का ध्येय अपनाओ,
5: हर गली हर मोहल्ला हो साफ, स्वच्छता से ही मिलेगी खुशियों की सौगात।
4: स्वच्छता का ये संकल्प लें, गंदगी को दूर भगाएं,
5: हर जगह स्वच्छता का दीप जलाएं, स्वस्थ और सुंदर जीवन को अपनाएं।
0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं अली हैदर।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम जारी रहेगा, पर उसके पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।

इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। स्वीडन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस अवार्ड से नवाजा। ये स्वीडन का किसी भी सरबराह ममलकत को दिया जाने वाला सबसे बड़ा एजाज़ है। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि स्वीडन का आला तरीन एजाज़ हासिल करना सिर्फ उनके लिए एजाज़ नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए एजाज़ है। ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अब तक मिला 31वां आलमी एजाज़ है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अपनी सरकारी रिहायशगाह पर कैबिनेट मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में रियासत के मजमूई तरक्की, गुड गवर्नेंस और अवामी सहूलियात की तौसी से मुतालिक मुख्तलिफ अहम तजावीज़ पर फैसले किए गए। इससे कबल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल अपनी काबीना में नए मुकर्रर करदा और तरक्की पाने वाले वज़रा को कलमदान तफवीज़ किए। नए मुकर्रर करदा वज़रा में साबिक बीजेपी रियासती सदर भूपेंद्र चौधरी को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME का महकमा सौंपा गया है। मनोज कुमार पांडे को खुराक और शहरी सप्लाई का महकमा दिया गया। अजीत पाल सिंह, जिन्हें काबीना में तौसी के दौरान वजीर ममलकत के ओहदे पर तरक्की दी गई है, उन्हें फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ पॉलिटिकल पेंशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। सोमेंद्र तोमर को मिलिट्री वेलफेयर और सूबाई डिफेंस फोर्स के महकमे का चार्ज दिया गया है। चार नए मुकर्रर करदा वज़राए ममलकत को भी कलमदान दिए गए। कृष्णा पासवान को हैवानात और दूध की तरक्की का महकमा, सुरेंद्र दिलेर को रेवेन्यू का महकमा, हंसराज विश्वकर्मा को छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारी इदारों की वजारत और कैलाश राजपूत को तवानाई और इजाफी तवानाई के ज़राए का महकमा सौंपा गया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के जरिए मुनक्किदा इंस्ट्रक्टर एजाजी तकरीब और चेक तकसीम प्रोग्राम में शिरकत की। इस तकरीब का इनेकाद तालीमी साल 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 24,717 पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर्स के एजाजिया को 9,000 से 17,000 रुपये माहाना करने के लिए किया गया था। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि एजाजिया में इजाफे के साथ साथ रियासती हुकूमत असातिज़ा को 5 लाख रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस कवर का फ़ायदा फराहम करने जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का इरादा है कि हर बच्चा तालीम हासिल करे ताकि तरक्की याफ्ता भारत का अज़्म पूरा हो सके।
1: जब साफ नियत से कोई सरकार कार्य करती है, स्पष्ट नीति हो, तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। प्रदेश के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट था लगभग 17-18% के आसपास था, और आज हम इसको घटाते 3 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं, और हमारा मानना है इसको 0 तक पहुंचाना है। हर बच्चा पढ़ेगा तब विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार हम कर पाएंगे।
0: लखीमपुर खीरी ज़िले में आज सुबह हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में कम अज़ कम 9 अफराद जाँ बहक हो गए। ज़िला हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती हाईवे पर अदालीसपुर गांव के करीब यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज़ रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर सामने से आ रही एक गाड़ी से टकरा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव काम शुरू कर दिया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शदीद रंज का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी ज़िले में पेश आने वाले सड़क हादसे में जानी नुकसान इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला है। मेरी ताज़ियत सोगवार ख़ानदान के साथ है। वज़ीर आला ने मकामी इंतजामिया को ज़ख्मियों और मुतासरीन को फौरी और मुनासिब इमदाद फराहम करने की हिदायत दी। महकमा मौसमियात ने मशरकी उत्तर प्रदेश के शुमाल मशरकी हिस्सों में 20 मई से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। साथ ही महकमे ने 19 और 20 मई को रियासत के मशरकी और मगरबी हिस्सों में दिन के वक्त कुछ मकामात पर तेज़ लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दरमियान रियासत में लगातार बढ़ रही ज़बरदस्त गर्मी और लू के मद्देनज़र वज़ीर आला ने इंतजामिया को चौकन्ना रहने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से मुतासिर मरीजों के इलाज के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाएं। वज़ीर आला ने अस्पतालों में अदवियात, बेड और डॉक्टरों की दस्तियाबी को बरकरार रखते हुए एम्बुलेंस सर्विसेज को फ़ाल रखने की भी हिदायत दी है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं शहरी महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत।
3: नमस्कार, नारी जगत कार्यक्रम में आप सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है और आज आपके साथ हूँ मैं मेनका। बहनों, ये कार्यक्रम ऐसा है जहाँ हर दिन होती है महिलाओं से जुड़ी बातें जो उनकी जिंदगी को आसान भी बनाती हैं और बेहतर भी बनाती हैं। बहनों, आज के बदलते दौर में नारी कदम से कदम मिलाकर चल रही है। वो घर भी संभाल रही है, बच्चों का भविष्य भी संवार रही है और ऑनलाइन पेमेंट भी कर रही है और इसके साथ साथ अपने अधिकारों और अपनी सुरक्षा के प्रति भी जागरूक हो रही है। लेकिन इस तेज रफ्तार की जिंदगी में कुछ चुनौतियां भी हैं। एक तरफ डिजिटल दुनिया की सुविधा है तो दूसरी तरफ साइबर ठगी का खतरा भी बढ़ रहा है। एक तरफ सपनों को पूरा करने की दौड़ है तो दूसरी तरफ एनीमिया जैसी समस्याएं महिलाओं की सेहत को कमजोर कर रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि महिलाएं सिर्फ आत्मनिर्भर न बने बल्कि अपने स्वास्थ्य सतर्क और जागरूक भी बने। और इन्हीं तमाम विषयों को लेकर आज हम बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज के कार्यक्रम में सिर्फ बातें नहीं हैं बल्कि महिला के आत्मविश्वास, सुरक्षा और बेहतर जीवन से जुड़ी तमाम जानकारी।

तो चलिए हम बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग की, क्योंकि बहनों देखिए आज का दौर डिजिटल तकनीक का दौर है और मोबाइल फोन और इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को पहले से कहीं ज़्यादा आसान बना दिया है। अब बैंक जाने और लंबी कतार में खड़े होने या फिर हर काम के लिए नगद पैसे रखने की ज़रूरत धीरे धीरे कम होती जा रही है। डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग ने हमारी रोज़मर्रा के कामों को तेज़ और आसान कर दिया है। आजकल तो हम महिलाएं घर संभालने के साथ साथ अपना व्यवसाय, नौकरी और ऑनलाइन कामों में आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में आपको डिजिटल बैंकिंग की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि डिजिटल पेमेंट है क्या। बहनों, डिजिटल पेमेंट का मतलब है कि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट या फिर बैंकिंग ऐप की मदद से पैसे का लेन देन करना। लोग यूपीआई, मोबाइल वॉलेट, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके कुछ ही सेकेंड में पेमेंट कर रहे हैं। ऑनलाइन बैंकिंग की मदद से हम घर बैठे अपने बैंक खाते की पूरी जानकारी देख सकते हैं, बैंक के पैसे तुरंत ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एफडी बनवा सकते हैं और मैच्योर होने पर वो पैसे भी हम अपने अकाउंट में ले सकते हैं, वो भी घर बैठे। इसके साथ ही साथ कई ज़रूरी बैंक सेवाओं का लाभ भी हम ले सकते हैं। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। बहनों, डिजिटल जानकारी केवल सुविधा नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर बनने का एक हिस्सा बन चुकी है। अगर महिला डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग को सही तरीके से समझ ले तो वो आर्थिक रूप से और भी मजबूत बन सकती है। घर का बजट संभालना हो, बचत करना हो या फिर अपना कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करना हो, हर चीज़ में डिजिटल बैंकिंग मददगार साबित होती है। तो थोड़ी सी सावधानी के साथ आइए हम इस तकनीक को समझें, सीखें और सुरक्षित तरीके अपनाएं। आजकल इसमें कई तरह के फ्रॉड भी हो रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत। और आज हम आपके लिए लाए हैं फिल्म एक दूजे के लिए से एक बड़ा ही प्यारा सा गीत। इस गीत की खास बात ये है कि इसके जो बोल हैं उसमें कई फिल्मों के नाम बड़ी ही खूबसूरती से पिरोए गए हैं। गीत सुनते ही ऐसा लगता है जैसे पूरा बॉलीवुड एक ही धुन में मुस्कुरा रहा हो। बहनों, यही कारण है कि ये गीत सिर्फ मधुर संगीत नहीं बल्कि फिल्मी यादों का एक शानदार सफर बन जाता है।

0: चोर
1: भूल गए
2: जानी मेरा नाम
1: अच्छा
2: चोरी मेरा काम जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडल बाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: प्यार का मौसम
1: बेशरम
2: सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम मेरे जीवन साथी प्यार किए जा
1: चाचा

पहनो, ये गीत था फिल्म एक दूजे के लिए। और आपने देखा कि इस गीत में जो भी फिल्मों के नाम बड़ी ही खूबसूरती से पिरोए गए थे, ऐसा लगा कि जैसे पूरा बॉलीवुड एक ही धुन में मुस्कुरा रहा हो। तो चलिए और अब हम अपनी बातों को और आगे बढ़ाते हैं। बहनों, अभी हम बात कर रहे थे डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग की, तो ये बात तो सही है कि इसने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया है। अब पैसे भेजने हो, बिजली का बिल जमा करना हो, या फिर फ़ोन रिचार्ज करना हो, या फिर कुछ ऑनलाइन ख़रीदारी करनी हो, सब कुछ आपका मिनटों में संभव हो जाता है। लेकिन जहां सुविधाएं बढ़ी हैं, वहीं पर साइबर क्राइम के खतरे भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कई लोग अपने जान पहचान में ही देखिए, या हम अगर सुबह पेपर उठाते हैं तो उसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाते हैं। फर्जी कॉल उनके पास आती है, उसमें वो फंस जाते हैं, या फिर अगर कोई नकली लिंक है उस पर क्लिक कर देते हैं और धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। खासकर वो लोग होते हैं जिनके पास जानकारी का अभाव होता है। बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत से बुज़ुर्ग हैं जो सही जानकारी नहीं होती है और जानकारी के अभाव में ऐसे अपराध की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए बहनों, साइबर क्राइम से बचने के लिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली सावधानी जो है वो ये है कि आपकी अपनी निजी जानकारी आपको सुरक्षित रखनी है। अपना OTP, अपना ATM पिन, अपने बैंक का पासवर्ड या आधार संबंधी जानकारी किसी भी अनजान आदमी से आपको शेयर नहीं करनी है। अक्सर कर इस तरह के अगर कोई फर्जी कॉल आते हैं और आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाता है, तो बहनों याद रखिए, कोई भी बैंक या सरकारी संस्था फ़ोन पर ऐसी कोई जानकारी कभी नहीं मांगती है। अगले सावधानी हमें ये करनी है कि सोशल मीडिया को जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमेशा हमें सतर्क रहना चाहिए। अगर आपके पास बहुत से अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं तो उसे स्वीकार करने से आप बचिए, और साथ ही साथ अपनी जो भी पर्सनल तस्वीरें हैं या कोई जानकारी है उसे आप पोस्ट मत करिए। और अगर कोई मैसेज या ऑफ़र जो बहुत आकर्षक लगे उस पर भी हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमको सच्चाई जान लेनी चाहिए और उसके बाद ही हम उस पर भरोसा करें, क्योंकि कई बार साइबर अपराधी लालच दे करके लोगों को ठगी का शिकार बना लेते हैं। बहुत से ऑफ़र भेजते हैं, मैसेज करते हैं, इससे बड़ा अच्छा लगता है और लोग उसमें फंस जाते हैं और अपनी मेहनत की कमाई इसी तरह उड़ा देते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी फर्जी लिंक आए, कोई भी OTP हो, किसी से भी हम शेयर ना करें। और अगर घर में बच्चे हैं तो उन्हें भी आपको मोबाइल और इंटरनेट को सुरक्षित उपयोग की सिखाना होगा, और ये सिखाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। घर में आपको डिजिटल सुरक्षा के बारे में खुल करके बातें करनी होगी और घर के सभी लोगों को जागरूक बनाना होगा। और बहनों, अक्सर कर ये भी चीज़ें सुनाई देती हैं कि अगर कोई शिकार हो जाता है तो वो अपनी बातों को छुपा लेता है, तो लोगों को उन्हें ये लगता है कि हम अगर किसी से ये बात बताएंगे तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ठगी का शिकार होते हैं तो डरिए नहीं, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। तुरंत आपको साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930, इस पर आप शिकायत करिए, और समय रहते अगर आप शिकायत करती हैं तो आपका नुकसान भी काफ़ी हद तक कम हो सकता है। और इंटरनेट के जो भी उपयोग की समझ आप यूज़ करते हैं, जो भी साइट आप यूज़ करते हैं, उसमें आपकी समझदारी, सुरक्षा और सावधानी और जागरूकता, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और अब हम अपनी बातों को यहाँ पर रोकते हैं और

बहनों, ये गीत था फिल्म सागर से, और सागर फिल्म का बहुत ही चुलबुला और बेहद लोकप्रिय गीत है, और इस गीत का खूबसूरत संगीत है और प्यारी सी नोकझोंक है। बहुत दिनों बाद ये गीत, मुझे लगा कि आप सबको ये गीत सुनाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये गीत आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और अब हम अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य की, क्योंकि अगर आपको भी कभी ऐसा लगता है सुबह उठते ही कि अभी तो सो करके उठे हैं, फिर थकान क्यों इतनी लग रही है, और अगर थोड़ा भी घर का काम किया या ऑफिस का काम किया तो भी आपको अगर थकान लगती है, ये काम आपको भारी लगता है, तो बहनों ध्यान देने की ज़रूरत है। ये आलस्य नहीं है बल्कि ये एनीमिया यानी खून की कमी के संकेत हो सकते हैं। जब हमारी बॉडी में आयरन और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हमारे शरीर को पूरी ताकत नहीं मिल पाती है। यूं कह सकते हैं कि हम उस फ़ोन की बैटरी के जैसे हो जाते हैं जो देखने में तो 100% चार्ज लगती है, लेकिन 5 मिनट भी काम होता है तो बैटरी लो बोलने लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सतर्क हो जाइए। आजकल बड़ी संख्या में महिलाओं को और किशोरियों को एनीमिया की समस्या हो रही है। कई बार इसे हम सामान्य कमज़ोरी समझ करके नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया जाता है तो समस्या बहुत गंभीर रूप ले सकती है। और ये क्यों होता है, अगर इस बारे में बात करें तो देखिए, इसका एक कारण होता है कि महिलाओं में जो हर महीने पीरियड होता है वो भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान पोषक तत्वों की ज़रूरत बढ़ जाती है, अगर वो पूरी नहीं होती है तो आगे चल के महिलाओं में एनीमिया की समस्या होती है। इसके साथ साथ संतुलित और पौष्टिक भोजन अगर हम नहीं करते हैं और समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जाँच नहीं कराते हैं तो भी एनीमिया की समस्या होती है। और ये शुरू में कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है, इसका लक्षण सिर्फ यही होता है कि आपको थकान आती है, आपको चक्कर आने लगते हैं, कमज़ोरी होने लगती है, सिर दर्द होता है, ज़रा भी काम करिएगा तो सांस फूलने लगता है और चेहरा जो है वो पीला दिखाई देने लगता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि अगर हम थोड़ी भी जागरूकता दिखाएं, अपने खान पान में थोड़ा भी परिवर्तन कर लें तो इसे हम ठीक कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने खाने में आयरन से भरी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, और इसके लिए हम पालक, मेथी, चुकंदर, अनार और गुड़ और चना, इसके साथ साथ सूखे मेवे, ये चीज़ें हमें अपने खाने में शामिल करनी चाहिए। और इसके अलावा जो भी विटामिन सी युक्त फल हैं जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला, इन चीज़ों को अगर हम खाते हैं तो आयरन शरीर में बेहतर तरीके से घुल मिल जाता है। डॉक्टर की सलाह पर आप आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट भी ले सकती हैं, और सबसे ज़रूरी है समय समय पर अपना फुल बॉडी चेकअप कराते रहें। बहनों, महिलाएं अपनी सेहत को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की नींव होती है। तो जिस तरह हम पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं उसी तरह हमें अपना भी ध्यान रखना चाहिए। अपनी सेहत के लिए हमें जागरूक होना चाहिए, क्योंकि हर महिला परिवार की धुरी होती है, और महिला बीमार होती है तो समझिए पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज हम सब ये संकल्प लें कि हम सब अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, समय समय पर अपना चेकअप कराएंगे और कुछ समय योग और एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे। ये छोटा छोटा बदलाव अगर हम महिलाएं कर लें तो हम भी स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये तो बात हुई एनीमिया की, और अब वक्त हो चला है एक बहुत ही प्यारे से गीत का। तो आइए सुनते हैं फिल्म कामचोर का खूबसूरत गीत।

0: कामचोर के इस मधुर गीत के साथ हम आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे फिर होगी मुलाकात सुरीले गीत और ढेर सारी बातों के साथ। नमस्कार।
1: अभी महिलाएं सुन रही थीं अपना कार्यक्रम नारी जगत। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details, log on to www.ddindia.com।
6: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
7: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
6: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
7: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
8: एक शादी कच्ची उम्र की जिम्मेदारी, रिश्तों के फिक्र की कैसे।
9: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
6: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाए।
7: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
6: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
7: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।
10: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। खेती किसानी कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर रामजीत यादव की वार्ता। विषय है मिट्टी में कार्बन मात्रा कैसे बढ़ाएं।
2: आज हम चर्चा करेंगे कि मिट्टी में कार्बन की मात्रा को कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि कार्बन होता क्या है। कार्बन वैसे तत्व हैं जो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ चीज है, जो इन्वायरमेंट में उपलब्ध होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। इसे जो है पौधे किसी भी रूप में अपने मिट्टी में संशोधित करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा। जब ये पौधों के द्वारा मिट्टी में इनकी मात्रा फिक्स हो जाती है, तब पौधे उसे अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस में ले करके पौधों के डिफरेंट भागों में पहुंचाते हैं। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन की मात्रा हम जो है दिन प्रतिदिन मिट्टी में डाल नहीं रहे हैं, जिससे हमारे मिट्टी का सेहत खराब होते जा रहा है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि हम अपने मिट्टी में कार्बन की मात्रा को कैसे बढ़ाएं। जैसा कि सभी किसान भाइयों को जानकारी है कि पौधों के लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें कुछ पोषक तत्व हैं जो प्रकृति ने इन्हें नेचुरली रूप से मिट्टी में देती है, जिनका नाम है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो आज हम विशेष रूप से कार्बन को ही फोकस करेंगे कि आज हमारे मिट्टी में दिन प्रतिदिन कार्बन की मात्रा क्यों घट रही है और इस कार्बन की मात्रा को हम मिट्टी में कैसे बढ़ाएं, उसका कैसे मैनेजमेंट करें, जिससे हमारा सॉयल हेल्थ मेंटेन रहे। तो किसान भाई अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग करते जा रहे हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी लगा करके मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उनका दोहन करते जा रहे हैं। इससे हमारे मिट्टी का हेल्थ जो है खराब होते जा रहा है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि हम जो है अपने मिट्टी में ये जो पोषक तत्व घट रहे हैं, जो दूसरे पोषक तत्व की अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं, उन्हें पौधों को अवेलेबल कराने में या उपलब्ध कराने में सहयोग करते हैं, उनकी मात्रा अगर हमारे मिट्टी में कम हो जाएगी तो कहीं न कहीं ये हमारे हेल्थ के साथ साथ सॉइल के हेल्थ को भी खराब। और जो दूसरे पोषक तत्व हैं, जो 17 पोषक तत्व हैं, उनकी जो अवेलेबिलिटी है, जो उपलब्धता है, उनको भी ये कम कर देते हैं। तो किसान भाइयों को सबसे पहले ये चाहिए कि हम जो है अपने मिट्टी में ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक खाद, जैसे हम कह लें कि गोबर की शुद्ध सड़ी हुई खाद, या फिर हम कहें कि जो फसल हम उगाते हैं उस फसल का जो अवशेष है, उस अवशेष को मिट्टी में इनकॉर्पोरेट करें और इनकॉर्पोरेट करके उन्हें जो है सड़ा गला करके फिर से जो है जो पोषक तत्व मिट्टी से पौधे लिए हैं उन्हें जो है फिर मिट्टी में मिला करके उन्हें उपलब्ध कराएं। इसके लिए किसान भाई सबसे पहले ये करें कि जो भी फसल उगा रहे हैं उसका जो अवशेष है उस अवशेष को जलाएं नहीं, पहला चीज। दूसरा चीज किसान भाई ये करें कि ज्यादा से ज्यादा पशु का जो गोबर की खाद है, या मुर्गी पालन जो किए हुए उनका जो वेस्ट मटेरियल है वो, या फिर जहां पे हमारी चीनी मिल है उस चीनी मिल का जो मड होता है उस मड को ज्यादा से ज्यादा हम अपने खेत में प्रयोग करें, जिससे क्या होगा हमारे मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। और किसान भाई सबसे ऑथेंटिक बात तो ये है कि वो लोग जो है हमारे पुआली जो होता है, जैसे धान के खेत में हमने धान की फसल उगाए और धान का जो बीज है उसे हम ले लिए और बीज लेने के बाद जो उसकी पुआली बचती है उस पुआली को हम जला देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे मिट्टी के में जो कार्बन की मात्रा है वो घट जाती है, खराब हो जाती है, या जो जीवाणु है वो मर जाते हैं। इसलिए कतई कोई भी किसान भाई पराली न जलाएं, पराली को इनकॉर्पोरेट करके मिट्टी में मिलाएं, जिससे हमारे पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ेगी। दूसरा चीज है कि जितना ज्यादा से ज्यादा किसान भाई ग्रीन मैन्योरिंग करें। ग्रीन मैन्योरिंग का मतलब हुआ कि वो सनई मूंग ढैंचा, जितना ज्यादा सनई मूंग ढैंचा लगाएंगे उतना ज्यादा हमारे मिट्टी में कार्बन की उपलब्धता बढ़ेगी, कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। इससे होगा क्या कि हमारे मिट्टी का सेहत अच्छा बनेगा और ये कहीं न कहीं हमारे पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाएंगे। इसलिए सभी किसान भाई से मेरा अनुरोध होगा कि जैसे धान की फसल लगाते हैं तो धान की फसल लगाने से पहले अपने खेत में ढैंचा जरूर लगाएं, और ढैंचा जब लगाएंगे तो ढैंचे में कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट हैं, जो फिक्स हो जाते हैं, उनकी जो उपलब्धता है उस उपलब्धता को ये बढ़ा देते हैं। जैसे ढैंचा अगर आप अपने खेत में लगाए और ढैंचा को जो है जब मिट्टी में हम सड़ा गला देते हैं तो सड़ाने गलाने के बाद क्या होगा कि मिट्टी में जो जीवाणु हैं उनकी मात्रा बढ़ जाएगी। जब उनकी मात्रा बढ़ जाएगी तो वो कहीं ना कहीं हमारे दूसरे जो पोषक तत्व हैं जो मिट्टी में फिक्स हो गए हैं उनको मोबाइल करेगा, जिससे पौधे अपने बॉडी में उपयोग कर लेंगे और कहीं न कहीं वो हमारे जो उत्पादन है उसको बढ़ाएंगे। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वो ढैंचा मूंग और सनई लगाएं, जिससे हमारे मिट्टी का हेल्थ भी बढ़ेगा और कार्बन की मात्रा भी मिट्टी में ज्यादा होगी। तो किसान भाई आप लोग से मेरा गुजारिश होगा, अनुरोध होगा कि आप लोग पुआली न जलाएं। अगर आपके मिट्टी के ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को संतुलित रहने देना है, उसको डिटोरिएट नहीं होने देना है या छीड़ नहीं होने देना है तो आप पहले नंबर पे जितने भी पुआली है उसे न जलाएं, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन मैन्यूरिंग लगाएं और ज्यादा से ज्यादा गोबर की खाद, केचुए की खाद, ये चीज उसमें डालें। जिस खेत में अगर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा नहीं होगी उस खेत में हम पहचान ये करेंगे कि वहां पे केचुए नहीं दिखेंगे, यानी जिस खेत में केचुए की मात्रा कम होगी समझ लीजिए कि आप जो है रासायनिक खाद का ज्यादा प्रयोग किए हैं जिससे केचुआ हमारे मिट्टी में मर गए हैं, तो वहां पे कार्बन की मात्रा नहीं होगी। कार्बन जो है मूल रूप से पौधों के जो पत्तियां सड़ती है या हमारे फसल के जो अवशेष होते हैं उसी को सड़ गल करके जो पदार्थ बनता है वही कार्बन है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि अपने मिट्टी में कार्बन की मात्रा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और अपने हेल्थ को बचाए रखें। इससे हमारे हेल्थ भी

0: से ज्यादा कार्बन की मात्रा को मिट्टी में इनकॉर्पोरेट करें और मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ाएं, जिससे उसका मिट्टी का हेल्थ भी अच्छा रहेगा और हमारा उत्पादन भी दिन प्रतिदिन अच्छा होगा।
1: खेती किसानी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रामजीत यादव की वार्ता। विषय था मिट्टी में कार्बन मात्रा कैसे बढ़ाएं। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी में समाचार।

0: कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: नियम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याज विश्वस्त।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के 2 कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
2: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश

0: 140 करोड़ लोग एकत्र हुए, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्लीवासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
2: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
3: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे नेपाली कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: शरीफ चाचाले विगत 25 सालदेखि यो काम गर्दै आइरहेको छन्। पहिला त शरीफ चाचाको यस्तो जुनुनदेखि यस्तो कार्यदेखि मानिसहरू तिनलाई पागल भन्ने गर्थे भने पछि उनी मानिसहरूले शरीफ चाचालाई सम्मान गर्न थाले। शरीफ चाचाले पनि उनीहरूको कुरामाथि त्यति ध्यान दिँदैनथे र आफ्नो काम लगातार गरिरहन्थे। यदि कुनै पनि पुलिस स्टेसन, हस्पिटल, रेलवे स्टेसनमा रहेको सबलाई 72 घन्टासम्म पनि दावी गरिँदैन थियो भने त्यहाँबाट शरीफ चाचालाई फोन गरिन्थ्यो। 15 परिवारको एउटा ठुलो परिवारलाई साइकल बनाएर नै धन्य गरे तापनि शरीफ चाचाले कहिले पनि यो कार्यलाई रोकिन दिएनन्। आफू मुस्लिम सम्प्रदायबाट भए पनि तिनले कहिले पनि धर्म अनुरूप सबहरूलाई छुट्याएनन्। उनको निम्ति के मुस्लिम, के हिन्दू, के सिख, के इसाई सबैभन्दा पहिला एक मानव हो भनी शरीफ चाचा भन्ने गर्थे।
1: 20 साल पहिले हाम्रा लडका मोहम्मद रईस खा उमर उसकी 22 साल की थी। वो सुल्तानपुर किसी काम से गया था और उसको किसी ने मार के बोरे में भर के लाइन के कूड़े बाहर स्टेशन के पास फेंक दिया और हम लोग 15 दिन तक घूमते रहे, पता नहीं चला। उसके बाद 1 महीने के बाद डेस्टी टेलर का कपड़ा लेके बुशर्ट आई और हमने देखा वो मेरे लाल की है। मैंने 1 महीने तक पागलमय हो गया और पागल होने के बाद मैंने ये सोच लिया है कि फैजाबाद में मेरे लिए न कोई हिंदू है न मुसलमान, सब है इंसान।
2: मैं ये सोचता हूँ कि मेरे बेटे की लाश को जा रही है तो वो मैं ये नहीं समझता कि कौन है। मैं ये समझता हूँ खून एक है, ये मेरा बेटा है, मैं इसको ले जा रहा हूँ, इसके माँ बाप को शांति मिलेगी।

0: शरीर चर्चाको यस महान कार्यदेखि तिनको छिमेकीहरू अनि तिनलाई चिन्ने मानिसहरू के भन्छन् त आउनुहोस् सुनौ।
1: कोई भी लावारिस हो उसका अंतिम संस्कार करते हैं, ये समझते हैं कि ये मेरा बेटा है।
2: लावारिस लोग हैं जिनका कोई भी वारिस नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। अगर हिंदू है तो उसको जलाना है, मुसलमान है तो उसे दफन करना है, तो ऐसा काम करते हैं कि जो आप किसी को पैसे भी दे करके भी नहीं करा सकते। हमारे दुकान के सामने ही उनकी साइकिल की दुकान है जो वो चलाते हैं।
0: शरीफ चाचालाई सन् 2020 कोरोना कालमा पद्मश्रीद्वारा सम्मानित गरियो। त्यसभन्दा अघि सायद मोहम्मद शरीफ उर्फ शरीफ चाचालाई कसैले पनि चिन्दैन थियो होला। एक समय बलिउड अभिनेता आमिर खानले तिनको चर्चित रियालिटी सो सत्यमेव जयतेमा शरीफ चाचालाई बोलाएका थिए। त्यही बारे आमिर खानले विभिन्न जानकारी राखे। आउनुहोस् त्यसै कार्यक्रमको यो सानो वाक्य सुनौ।
3: शरीफ चाचा लोग मौत से दूर भागते हैं, डरते हैं। आप हर रोज मौत से रूबरू होते हैं, मौत का सामना करते हैं, कहां से आती है ये हिम्मत आप में?
4: मेरा बच्चा जब से गया है तब से मुझे शांति नहीं है। मैं खाना पीना नहीं समझता, सबसे बड़ी इबादत मैं ये समझता हूँ, सब धर्म एक है, खून सबका एक है।

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4 बज रहे हैं। हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे हम अपने सायंकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। साथ ही विविध भारती का कार्यक्रम जारी रहेगा। इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: कष्ट में है तो मदद नहीं कर वीडियो बनाते हैं। आज हम अपने असली रिश्ते को भूलकर डिजिटल रिश्ते खोज रहे हैं, तो वाकई बहुत जो ज्वलंत समस्या है वो आज हमने उठाई है और हमारे श्रोताओं ने उस समस्या को कितनी बुरी तरह से हावी हो चुकी है इस बारे में भी बताया है, लेकिन वक्त की कमी है।
2: बिल्कुल, और चलते चलते यही कहेंगे कि जिन्होंने भी ये प्रोग्राम सुना है वो इस समय जब अपने पति पत्नी साथ में हो तो मोबाइल हटा दें। और हम लोग लेते हैं फिलहाल इस कार्यक्रम से विदा। तो सभी को मंत्री वर्मा और
1: राजुल का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
3: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी, लेकर हाजिर हूं सेहतनामा कार्यक्रम में। एक और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीनल शाह, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ हैं, डाइटिशियन हैं, और इनका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में।
1: मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं सुनने वालों को भी नमस्कार करती हूँ।
0: और आज का जो हमारा विषय है, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व, तो डॉक्टर मीनल बताएंगी आपको इस विषय के बारे में, और आपकी ओर से मैं तमाम सवाल करना चाहूँगा। तो डॉक्टर मीनल, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, ये प्रोटीन और विटामिन्स हैं क्या, और शरीर के लिए इसकी महत्ता या इम्पोर्टेंस क्या है?
1: जी बिल्कुल राजेंद्र जी, प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है अपने शरीर के लिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे खाने में मौजूद होती है, पर ये चीज़ जो है, जो प्रोटीन होता है, वो आपके शरीर के लिए इतना ज़रूरी है कि अगर वो हम ठीक से ना ले तो हम कमज़ोर पड़ सकते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छे से नहीं होता है। ये चीज़ अगर खाने से निकल जाती है तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। हम अपना रोज़ का जो एक्टिविटीज़ है, जो रूटीन है, हम वो नहीं फॉलो कर पाते हैं। एंड अगर जोर दे इस चीज़ पे तो ये बहुत सिंपली अचीव किया जा सकता है, सिर्फ खाने पे थोड़ा ध्यान देने पे। और रही बात विटामिन्स की, विटामिन्स को हम एक्चुअली बोलते हैं वाइटल न्यूट्रिएंट्स। ये चीज़ ऐसी है जो बहुत छोटे प्रमाण में खाने में ज़रूरी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है इनको। लेकिन अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाने में कम हो या ना हो तो हमारे बाकी के खाने का असर ही कम हो जाता है। इनकी मात्रा भले छोटी हो, पर इनका जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो इतना ज़्यादा है कि इनकी एब्सेंस में हमारा खाना या हमारा शरीर अपना काम नहीं कर पाता है।
0: बड़ी अच्छी जानकारी, बहुत ही सरल शब्दों में आपने सुनने वालों को बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, क्यों ना हम प्रोटीन और विटामिन को अलग अलग डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि प्रोटीन के स्रोत या सोर्सेज जो हैं वो क्या क्या हैं।
1: जी, प्रोटीन्स जो है वो खाने में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, सोर्सेज में उसी हिसाब से बताओगी। प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो पूरा है, इनकम्प्लीट नहीं है, वो प्रोटीन्स अलग है। और दूसरे एक टाइप के प्रोटीन जो होते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन है, वो थोड़ा इनकम्प्लीट होता है।
0: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमारा जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स, एक बहुत छोटे ये विटामिन से उससे बनता है, तो उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स मिसिंग होते हैं। तो पहले कंप्लीट प्रोटीन पे फोकस करते हैं, मैं इनकम्प्लीट प्रोटीन पे वापस आऊंगी। कंप्लीट प्रोटीन्स ये है जो शरीर, जब हम खाते हैं तब शरीर उसका पूरा फायदा उठा सकता है, उसमें कोई चीज़ छूटी नहीं है, तो ये हमें सबसे ज़्यादा फायदा करता है। कंप्लीट प्रोटीन्स खाने में पहला सोर्स है दूध और दूध के पदार्थ
0: जी।
1: तो दूध हो गया, दही है, छाछ है, पनीर है, ये सारा फर्स्ट क्लास प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन होता है,
0: जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं।
1: यस, जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। और ये सारी चीजें ऐसी है जो हम बहुत आसानी से और रोज खा सकते हैं, और इसका शरीर पूरा फायदा उठा सकता है, तो इसमें कुछ छूटेगा नहीं। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स मैं बता रही थी, ये वो चीजें हैं जिसमें कुछ मिसिंग है, कोई ऐसी चीज है जो इसमें नहीं है, और इसके लिए हमें ये कॉम्बिनेशन में खानी पड़ती है, दो चीजें साथ में खानी पड़ती है। दाल, मूंग, मटकी, चना, कड़धानियां जो बेसिकली हमारे हैं, वो है हमारा सेकेंड बेस्ट प्रोटीन यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन,
0: जिसमें आम भाषा में या गांव में कई इसको कठोर कहा जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कठोर या कड़धानियां जैसे हम बताते हैं, ये जो प्रोटीन है, इस ये बहुत जरूरी प्रोटीन है, बट इसमें कुछ चीजें इनकम्प्लीट है, कुछ चीज़ें हैं जो पूरा नहीं है वो प्रोटीन, इसके लिए हमें उसके फायदे ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ हम कॉम्बिनेशन में, जैसे मैं बताए, दो चीज़ें साथ में ले ले,

0: ये कंप्लीट हो जाता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारी खिचड़ी।
1: अच्छा,
0: जब हम दाल और चावल कंबाइन करते हैं, जब हम दाल चावल साथ में बनाते हैं या जब हम नॉर्मल दाल चावल साथ में खाते हैं, तब वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है, क्योंकि अनाज और कड़धान्य दोनों साथ में आए हैं।
1: वाह,
0: तो जो हम बेसिकली अब तक खाते आए हैं पुराने जमाने से, वो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है, और हमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो फॉलो करती रहनी चाहिए। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, जो मैंने बताया प्रोटीन सोर्सेस, इसमें आपका सोयाबीन भी आ जाता है।
1: अच्छा,
0: तो पहला अगर मैं देखूँ तो दूध और दूध के पदार्थ है, यानी मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स है। दूसरा मेरा सोयाबीन आ जाता है, जो करीब करीब कंप्लीट है। और तीसरा है जो मेरे कडधान्य है, जो अगर मैं कॉम्बिनेशन में खाऊँ तो वो उतने ही अच्छे है जितना मेरा दूध अच्छा है।
1: अनाज के साथ।
0: बिल्कुल।
1: जी,
0: और इन सब के अलावा ये सारे मेरे शाकाहारी ऑप्शंस हो गए थे। जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए भी प्रोटीन सोर्सेज है, जो हमारा अंडा, चिकन, मच्छी, ये सारा आ जाता है। ये भी अच्छे प्रोटीन्स है, ये भी कंप्लीट प्रोटीन्स है, ये दूध के बराबर आ जाते हैं। भले दूध और इसकी जो
1: सिमिलरिटी है।
0: हाँ जो प्रॉपर्टीज है ये थोड़ी डिफर करती है न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन अगर देखा जाए तो, लेकिन ये कंप्लीट प्रोटीन है, तो इसे भी शरीर पूरी तरह से यूज कर सकता है, इसका भी शरीर पूरा फायदा ले सकता है,
1: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है।
0: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है।
1: जी, आपने प्रोटीन के बारे में जो क्लासिफाइड या वर्गीकृत ढंग से समझाया, बहुत ही अच्छा लगा। हम आगे बढ़ेंगे इसी विषय पर, फिलहाल हम एक संगीत की बात करेंगे और चाहेंगे आपकी पसंद का कोई गाना बजाया जाए। कौन सा गीत आपको पसंद है?
0: हम नहीं बदलेंगे, गोलमाल अगेन से।
1: हम सुनवा रहे हैं दोस्तों डॉक्टर मीनल की पसंद का ये गाना।

0: डॉक्टर मीनल, जैसे कि बात चल रही थी कि प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो क्या-क्या हैं, आपने वर्गीकृत करके बताया था गीत बजने से पहले। हम ये जानना चाहेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स की, जहाँ तक बात होती है, और बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, और एक एज के बाद, 40 के बाद या 35 के बाद या आफ्टर 40, वो ये समझते हैं कि भाई ब्लॉकेज का ज़माना है और ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। तो आखिरकार जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, क्या जो हृदय रोगी होते हैं या इस तरह के मरीज होते हैं उनको भी ये सोर्स काम करते हैं?
1: डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो नुकसान नहीं करते हैं, वो नुकसान तब करते हैं जब हम उसे फैट वाला ले या चर्बी वाला दूध ले। तो ज़रूरी नहीं है डेयरी नुकसान करेगा, डेयरी तब नुकसान करेगा जब हम वो फुल क्रीम मिल्क या भैंस का पूरा मलाई वाला दूध, वैसे दूध वाली चीज़ें ले तो वो नुकसान डेफिनेटली करेगा। लेकिन हमें लेना है या तो गाय का दूध या तो टोन्ड मिल्क। एक बहुत सिंपल चीज़ हम कर सकते हैं, जब हम दूध खरीदें मार्केट से तब सिर्फ पैकेट, आजकल पैकेट का ज़माना है, पैकेट में ही दूध रहता है, तो पैकेट पे सिर्फ फैट परसेंटेज पढ़ ले, वो 3.2 या 3.5 से नीचे होना चाहिए।
0: अच्छा।
1: अगर वैसे है तो वो फैट परसेंटेज जो है दूध का वो कंट्रोल में है। तो हम जब घर पे उसे गर्म करेंगे, जब वो गर्म करके ऊपर मलाई आती है, वो हल्की सी मलाई भी निकाल लेते हैं तो वो लो फैट दूध हो जाता है। तो उसके लिए हमें बाजार से स्किम मिल्क या लो फैट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हम वो चीज़ घर पे ही बना सकते हैं। और वो जो दूध है उसमें कैल्शियम है, उसमें अच्छा वाला प्रोटीन है, तो वो नुकसान कभी नहीं करेगा। अगर वो फुल क्रीम मिल्क है या मलाई वाला दूध है तो वो नुकसान कर सकता है।
0: अच्छा, कुछ लोग जो हैं, आपने जैसे कड़धान्य और अनाज का कॉम्बिनेशन बताया था, एक मिश्रण बताया था, जैसे खिचड़ी का जो उदाहरण है वो बड़ा बेहतरीन रहा है, लेकिन कुछ लोग स्प्राउट खाते हैं, अंकुरित भोजन खाते हैं सुबह के टाइम, या तो वो कितना काम करता है?
1: वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम स्प्राउट करते हैं तब उस जो अनाज है वो ज़्यादा बेहतर बन जाता है। उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो स्प्राउट करने में और अवेलेबल हो जाते हैं, यानी शरीर उसका पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन कर पाता है। तो वो स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक चीज़ गलत हो जाती है कि वो स्प्राउट्स हम कच्चे लेने की कोशिश करते हैं।
0: अच्छा।
1: तो कच्चे है तो शरीर, हमारा शरीर ये नहीं कर पाता है कि कच्ची चीज़ है वो एब्जॉर्ब कर पाए, वो हम पूरी तरह से उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते, फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो जब हम उसको थोड़ा सा भी बॉईल कर लेंगे, उबाल लेंगे या स्टीम कर लेंगे, भाफ देते हैं हम जैसे, अगर थोड़ा सा भी वैसा कर लेते हैं तो वो शरीर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, वो एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है और वो हम पूरी तरह से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई। अच्छा, ये बताइए कि फायदे तो होते हैं, प्रोटीन ज़रूरी होता है, नहीं तो जैसे आपने शुरू में ही बताया कि बीमारियां घर में घुस जाती हैं शरीर में, तो शरीर का जो एक घर है इसमें बीमारियां ना घुसें, उसके लिए सुना ये भी जाता है, कई बार ये मिथ है या सच है, कि प्रोटीन नुकसान भी कर देता है, वो किस अवस्था में करता है और कैसे करता है?
1: प्रोटीन नुकसान कर सकता है, ये बात सच है, लेकिन ये बात सच है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं। अगर हम आज का खाने का तरीका देखें, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हमारा रूटीन या लाइफस्टाइल हो गया है, हम जनरली प्रोटीन मिस कर देते हैं, या फिर हम ऐसे टाइप का प्रोटीन खाने की कोशिश करते हैं जो नुकसान करेगा। तो प्रोटीन फिलहाल नुकसान नहीं कर रहा है, वो फिलहाल खाने में बहुत कम है और उसे बढ़ाने पे जोर देना है। हाँ, कुछ शारीरिक कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन नुकसान करता है,
0: वो कौन सी हैं?
1: जैसे किडनी के डिसीजेस होते हैं, उन केसेस में, उन पेशेंट्स के लिए, उन रोगियों के लिए प्रोटीन बहुत ही कंट्रोल या नियमित होना चाहिए। उनके लिए हम एग्जैक्टली उनके हिसाब से वो प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं और फिर उनको बताते हैं कि कितना खाना है। बट जब तक ये तकलीफ नहीं है हमारे लिए, जो नॉर्मल पेशेंट्स नॉर्मल है, जिनका नॉर्मल रूटीन चल रहा है, उन सब के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है और वो नुकसान नहीं कर सकता है।
0: बतौर एक आहार विशेषज्ञ आप क्या प्रोवाइड करेंगी एक मरीज को जिनकी एक किडनी में यदि पथरी है, तो कितना प्रोटीन उन्हें लेना चाहिए?
1: ये वापस से एक मिथ है, ये नहीं है सच, क्योंकि पथरी जब होती है तब प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब नहीं बनता है। जब हम किडनी डिसीजेस बोलते हैं तब वैसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे उनकी किडनियाँ काम नहीं कर रही है, जब वो फेलियर में जा रही है तब ये प्रॉब्लम आता है। पथरी के लिए एक ही ट्रीटमेंट है जो नई रिसर्चेस बताती है, जो नए पेपर्स आए हैं वो बताते हैं कि सिर्फ पानी पीना है उनको। जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे हैं उनको खाने में कोई चीज़ परहेज नहीं करनी है।
0: प्रोटीन ले सकते हैं,
1: बिल्कुल ले सकते हैं, और ज़रूरी है वो ले, ताकि वो भी बीमार है, भले वो पथरी की वजह से है लेकिन उन्हें भी रिकवर करना है, तो उनको इंश्योर करना है कि जितना ज़रूरी है वो उतना प्रोटीन खाए। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना है लेकिन कम भी नहीं खाना है, कम खाने की वजह से ज़्यादा नुकसान होगा।
0: जी जी
1: उनको सिर्फ पानी पीना है अच्छे से, जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे। इनफैक्ट सीड्स वाला भी कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है, जो हम बोलते हैं
0: एक
1: कि
0: मिथ होता है,
1: बीज
0: बैंगन
1: वाले,
0: बंद कर दीजिए,
1: हाँ
0: टमाटर बंद कर दीजिए।
1: बीज वाली चीजें बंद कर दो, पर वो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो इन पेशेंट्स के लिए हम बोलते हैं कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दो, डायटिशियन से मिल लो, वो आपकी कंडीशन पहले चेक करेंगे फिर बताएंगे कि क्या रिस्ट्रिक्ट करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होती है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे वो चेंज हो जाती है।
0: जी, ये व्यक्तिगत क्षमताओं पर भी निर्भर करता है।
1: हाँ, और स्टोन के प्रकार पे भी डिपेंड करता है।
0: जी, बहुत ही अच्छी बात बताई। तो यहाँ गाने की कोई ऐसी गुंजाइश बनती है, आपकी पसंद का कोई गाना हो जाए?
1: ये वादा रहा इस मूवी से, ये वादा रहा
0: टाइटल
1: टाइटल
0: सॉन्ग
1: सॉन्ग।
0: सुनना है आपको?
1: जी बिल्कुल,
0: हाँ, ऋषि कपूर ने इसमें काम किया था।
1: राइट।
0: हम सुनवा रहे हैं

0: साहब, गीत तो आपने बहुत अच्छा सुना दिया, ये वादा रहा, लेकिन श्रोताओं से एक वादा तो हम लेंगे कि भाई प्रोटीन की कमी मत होने दीजिए अपने शरीर में। डॉक्टर मीनल, ये बताइए कि प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए?
1: प्रोटीन हमें पूरे दिन चाहिए, उसे लेने का आइडियली कोई समय नहीं होता है, वो हमें पूरे दिन चाहिए। हम ये बोलते हैं कि प्रोटीन आप पूरे दिन में एक साथ नहीं ले सकते हो,
0: अच्छा।
1: वो डिफिकल्ट हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इतना सारा एक साथ खा नहीं सकते, और खाएंगे भी तो इतना सारा शरीर एक साथ वो लोड हो जाता है एक टाइम पे, कि
0: पचा
1: इतना
0: नहीं
1: सारा
0: पाएगा।
1: पचा नहीं पाएगा, और इतना सारा पचा के एब्जॉर्ब भी हो गया तो वो बहुत सारा प्रोटीन एक टाइम पे आ जाता है, और फिर पूरे दिन हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो हमेशा प्रोटीन डिवाइडेड डोसेज, मतलब पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके लेना है, एक साथ नहीं लेना है। अगर हम उसे पूरे दिन में हर एक खाने में थोड़ा थोड़ा करके बांट दे तो वो शरीर के लिए भी ज्यादा अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, कि हम उतना वो खा पाएंगे आसानी से। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण ले, अगर मैं किसी को बोलूं कि एक ही टाइम पे आप आधा लीटर दूध और दो कटोरी दाल और साथ में दो अंडे खा लो, तो वो कितना मुश्किल हो जाएगा।
0: ओहो, हैवी हो जाएगा।
1: बिल्कुल वो नहीं खा पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है चीज। तो उसकी जगह पे अगर हम पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके ले, जैसे सुबह और शाम हमने एक एक गिलास दूध ले लिया, दोपहर को और रात को खाने के साथ दाल ले ली, बीच में कभी या सुबह नाश्ते में अंडे ले लिए, तो वो पूरे दिन में तोड़ के प्रोटीन खाते हैं, तो वो शक पॉसिबल भी है, और वो तब शरीर ज्यादा आसानी से यूज कर पाएगा, शरीर को पचाने के लिए समय मिल जाता है, और उसे वो स्टोरेज में नहीं डालेगा, वो यूज करेगा, जिससे आप चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे। वरना होगा ये कि खा सब रहे हैं सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा एक साथ खा रहे हैं और शरीर वो सारी चीजें स्टोरेज में डाल देता है, क्योंकि हमें उतनी सारी चीजों की एक साथ जरूरत नहीं होती, पूरे दिन में थोड़े थोड़े करके होती है।
0: जी। तो इसका मतलब ये है, प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए तो थोड़ा थोड़ा करके, विभाजित करके लिया जाना चाहिए।
1: और एक सिर्फ छोटी सी चीज़ ये की जा सकती है कि जब भी हम खाना खाएं, वो सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, शाम का खाना है, या रात का खाना है, हर एक मेजर मील है जो खाने वाला टाइम है, वहाँ पे हम थोड़ा प्रोटीन हमेशा रखें। तो अगर हम उतना सा भी करते हैं तो जितनी हमारी प्रोटीन की ज़रूरत है वो भी मीट हो जाएगी, यानी हम उतना खा लेंगे प्रोटीन, और जब हम तोड़ के खाएंगे तब वो पचने में भी आसान हो जाता है।
0: अच्छा, कुछ लोगों ने अपनी एक डाइट को फिक्स किया होता है अकॉर्डिंग टू हेल्थ, और हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि भाई सुबह तो हम टाइट खा लें और लंच जो है बहुत हल्का या आधा खा लें और शाम को जो मिला खा लें। तो शाम के टाइम प्रोटीन उस दौरान किस तरह से लिया जाना चाहिए?
1: शाम को अगर हम खाना कम खा रहे हैं, ठीक है, हल्का खा रहे हैं, तो भी प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कुछ कम करना चाहूँ रात के खाने से, तो वो मेरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है। मतलब अगर हम चावल खा रहे हैं तो चावल ना खाइए, पर अगर मैं स्प्राउट्स शाम को खाती हूँ तो वो अच्छी चीज़ है खाने के लिए, या फिर एक रोटी और थोड़ी सी दाल खा ली। तो प्रोटीन हमेशा रहना चाहिए, आपको कम करना है तो उसे सिंपल कार्ब्स जो बोलते हैं हम, यानी चावल हो गया, या अगर मैं चार रोटी खा रही हूँ तो मैं दो रोटी खाऊंगी, अगर मैं भाकरी खा रही हूँ तो मैं एक या आधी खा लूंगी, वो हम कम करेंगे चलेगा। कुछ मीठा खा रहे हो तो वो अवॉइड कर लो शाम को, चलेगा, लेकिन प्रोटीन कभी नहीं कम करना है।
0: डॉक्टर साहब, प्रोटीन बीमारी में लेना चाहिए या नहीं, या किस तरह की बीमारी में है, इसका डिटेल बताइए आप।
1: ज्यादातर देखा जाए तो जब हम बीमार होते हैं हमें प्रोटीन लेना चाहिए, अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमें ठीक होने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, दवाई अपना असर नहीं कर पाएगी, और हम जो तंदुरुस्त बनना है वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो प्रोटीन तो बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया कि कुछ ही कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे प्रोटीन हमें कम करना पड़ता है, और वो टाइम पे जब स्पेशलिस्ट होते हैं वो इंटरवीन करते हैं, वो बताते हैं कि भाई अब प्रोटीन कम कर देना है। पर 90% केसेस देखा जाए तो प्रोटीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और ये डेफिनेटली इंश्योर करना है कि अगर हम प्रोटीन अच्छे से खाएं और जितनी ज़रूरत है उतनी खाएं, तो आपका रिकवरी, आपका जो ठीक होने का समय है वो जल्द से जल्द होगा, टाइम कम लगेगा आपको ठीक होने में।
0: लेकिन उन बीमारियों के बारे में भी तो बताइए कि ये पर्टिकुलर बीमारी है तो फिलहाल प्रोटीन कम कर दें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं।
1: जी, बीमारियां अगर देखी जाए तो दो मेजर कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे प्रोटीन कम करने की ज़रूरत पड़ती है। एक है जब लिवर इन्वॉल्व्ड है। अब इसमें हमेशा प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना ऐसा नहीं है, सिर्फ एक समय आएगा जब शरीर, क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं थ्रो कर पाता है, तो अमोनिया लेवल जो है शरीर में बढ़ जाता है। अमोनिया एक ऐसा टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो बॉडी फेंक देता है बाहर, और उसमें लिवर की मदद लगती है। तो जब लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तब वो शरीर में जमा होने लगता है। जब ये अमोनिया लेवल्स बढ़ जाते हैं तब वो एक ही कंडीशन है जहाँ पे हमें प्रोटीन कम करना पड़ता है। ये जितना वो प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे उतना अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटीन बाहर फेंकने का जो फॉर्म है वो एक तरह से अमोनिया के थ्रू होता है, अमोनिया और यूरिया। तो ये जब बढ़ जाता है शरीर में तब प्रोटीन कम करना पड़ता है, तब इनफैक्ट हम बहुत कम प्रोटीन देते हैं। और दूसरा है जैसे मैंने बताया किडनी कंडीशंस, मतलब अक्यूट किडनी डिसीज़ या क्रॉनिक किडनी डिसीज़ जो होती है। अब इसमें जो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ होती है उसमें एक स्टेज ऐसा होता है जब क्रिएटिन करके एक लेवल होता है शरीर में, वो बढ़ता है,
0: सीरम क्रिएटिनिन,
1: करेक्ट। तो जब ये बढ़ता है तब एक टाइम ऐसा होता है जब वो बढ़ रहा है पर पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है, ये एक टाइम पीरियड है जहाँ पे प्रोटीन बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। पर अगेन बहुत कम नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं, वो बंदे के शरीर के हिसाब से होता है, उनके वेट के हिसाब से होता है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन कम रखना पड़ता है या मॉडरेट रखना पड़ता है, और उस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो ना बढ़े ना कम हो।
0: अच्छा, प्रोटीन के फॉर्म चेंज कर सकते हैं, जैसे सॉलिडिटी से लेकर उसको लिक्विफाइड ढंग से ले लिया जाए?
1: बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटीन का बेस्ट बेनिफिट ये है कि हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपकी ऐसी कोई कंडीशन है, अगर हम ऐसे बीमार है कि हम खाना ज़्यादा नहीं खा पाते, तो उसको लिक्विड्स के फॉर्म में भी लिया जा सकता है,
0: जैसे दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से।
1: बिल्कुल, दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से, आप सूप में पनीर क्रश करके डाल सकते हो, आप दूध मिल्क शेक्स लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप छाछ या लस्सी लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप उसमें थोड़े और ड्राई फ्रूट्स मिला दीजिए तो वो और डेंस हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रोटीन और डेंस बनाया जा सकता है।
0: जी जी जी भैया, बहुत सारे तरीके आपने बताए, लेकिन क्या होता है कि जब कार्यक्रम में बातचीत चलती है तो तरीकों में थोड़ा सा तालमेल होना चाहिए, थोड़ी बातचीत उसके बाद फिर संगीत। तो यहाँ मेरा इशारा समझ गई हैं डॉक्टर मीनल, और आप कौन सा गाना सुनवा रही हैं?
1: अब हम सुनते हैं जूली मूवी का दिल क्या करे गाना,
0: जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। बहुत ही अच्छी फिल्म थी, और गाना आपको सुनवाते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गीत आपने बहुत ही रोमांटिक सुनवाया और अपने दौर की बहुत ही रोमानी फिल्म रही थी जूली। आज के कार्यक्रम का जो विषय है, सब्जेक्ट है दोस्तों, वो है प्रोटीन और विटामिन का महत्व, और इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर मीनल शाह के साथ, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ। तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर मीनल कि विटामिन की बात अब की जाए, प्रोटीन की बात बहुत हो गई है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं?
1: विटामिन अगर हम देखे जाए तो दो मेजर प्रकार है, दो बड़े क्लासिफिकेशंस है। एक विटामिन वो जो वाटर सोल्युबल विटामिन होता है, जिस
0: मतलब जो पानी में घुल जाते हैं,
1: यस, जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसको शरीर के लिए जरूरी है कि वो वाटर के माध्यम से आए, तो वो वाटर सोल्युबल विटामिन हो जाते हैं। जो दूसरे प्रकार के विटामिन है वो है फैट सोल्युबल विटामिन। तो ये विटामिन्स के लिए जरूरी है कि हम थोड़े मात्रा में फैट्स रखें खाने में। तो जो फैट सोल्युबल विटामिन्स है, ठीक है, वो ऐसे विटामिन्स है जो शरीर में स्टोर हो सकते हैं, बॉडी उसे जमा करके रखा जा सकता है क्योंकि वो फैट्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो इसमें बेसिकली आ जाता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये मेरे फैट सोल्युबल विटामिन्स हो जाते हैं। जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स है वो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स है, ये शरीर में स्टोर नहीं किए जा सकते क्योंकि ये वाटर सोल्युबल है, ये पानी की मात्रा से अगर हम कभी ज्यादा लेते हैं तो बॉडी उसे फेंक देगा बाहर।
0: अच्छा।
1: तो ये हमें रेगुलरली लेना जरूरी बन जाता है क्योंकि फैट सोल्युबल शरीर में बैकअप हो सकता है लेकिन वाटर सोल्युबल का कोई बैकअप नहीं है, ये हमें रोज के रोज लेना है।
0: ये तो अच्छी बात बताई, अपने प्रकार भी बताए। कुल मिला के ये बात हुई कि जिस तरह से प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को होती है उतनी ही विटामिन की भी होती है, लेकिन कई बार कुछ लोग बड़े नेचुरल ढंग से प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी बात करते हैं कि भाई हम तो धूप में खड़े हो जाएंगे सुबह सुबह।

0: तो विटामिन डी मिल जाएगा। तो ये कितना सच है कि उतना एब्जॉर्प्शन हो पाता है या खाना भी जरूरी है?
1: एब्जॉर्प्शन हो सकता है विटामिन डी का, एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो सही है, हमें सनलाइट चाहिए विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ऐसा विटामिन है जो दो तरीके से काम करता है, वो खाने से तो मिलता है लेकिन जब सनलाइट होती है तब उसका जो फॉर्मेशन है वो बदल जाता है। तो सनलाइट बहुत ज़रूरी है विटामिन डी के लिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा एक्सपोजर रखें सनलाइट में, हम थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें या थोड़ा टहल क्या है, जब
0: या धूप में निकले?
1: अच्छी धूप हो तब टहल क्या है, जो हम काम करते हैं तब हम काम करने की स्थिति में होते हैं तो हम बहुत इंटेंसिव वर्क में रहते हैं, पैटर्न में एक बहुत हल्का सा मॉर्निंग वॉक, एक बहुत हल्का सा स्ट्रोल जो शांति से करे, ये ज़रूरी होता है विटामिन डी के लिए। तो विटामिन डी के लिए सनलाइट जरूरी है।
0: और भी जो सोर्सेस हैं विटामिन प्राप्त करने के स्रोत हैं वो क्या-क्या हैं?
1: अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग विटामिन्स और अलग अलग सोर्सेस है, और ऐसे ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ से एक ही विटामिन आएगा। हमारे काफ़ी सारे खाने की चीज़ें ऐसी है
0: जैसे
1: जैसे फल हो गए, जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक से ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, ठीक है। आपका दूध हो गया, उसमें भी प्रोटीन्स के अलावा कैल्शियम है, भले वो मिनरल्स है, विटामिन्स नहीं है, बट वो उतने ही ज़रूरी है जितना आपका प्रोटीन हो जाता है। खाने के बारे में ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक चीज़ कभी काम नहीं करेगी। अगर मैं सिर्फ प्रोटीन खा रही हूँ तो सिर्फ प्रोटीन कभी काम नहीं करेगा, अगर मैं सिर्फ विटामिन्स खा रही हूँ तो वो काम नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ होनी चाहिए, जब तक वो कॉम्बिनेशन नहीं है तब तक आपका प्रोटीन खाने का मतलब नहीं है। इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिसिंग है खाने में से, अगर हम नहीं ले रहे वो अच्छे से रोज से, तो आपका प्रोटीन किसी काम का नहीं है, क्योंकि शरीर उसको पूरी तरह से फॉर्म नहीं कर पाता है। वो जो रीज़न है प्रोटीन खाने का वो रीज़न नहीं हो पाता है कंप्लीट, क्योंकि हमारे पास वो विटामिन्स ही नहीं है। तो ये सारे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो अपनी खुद के फॉर्म में इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सोर्सेज देखा जाए तो सोर्सेज भी ऐसे ही बने हैं, नेचुरली प्रकृति ने अपना काम बहुत अच्छे से करा है। तो एक अगर फल देखा जाए, एक फल में एक से ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, जैसे अगर हम पीले या लाल कलर के फल देखें तो उसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, वो कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट
0: जैसे
1: होता है।
0: ऑरेंज है,
1: जैसे ऑरेंज है, जैसे पपाया है, इसमें मेरा विटामिन ए भी आ जाता है, विटामिन सी भी आ जाता है, मेरा नट्स है तो उसमें विटामिन ई भी आ जाता है, और अगर मैं सब्जियां लूँ तो जितनी कलरफुल सब्जियां ले, तो अगर मेरी वो पर्पल कैबेज भी हो सकती है, वो मेरी हरी कैबेज भी हो सकती है, टमाटर भी हो सकते हैं, कोई भी फॉर्म ले लो, अलग अलग कलर्स, जितने अलग अलग कलर्स लेंगे उतने अलग अलग विटामिन्स मिलेंगे हमें। जितनी ज़्यादा रंग हो गया आपके खाने में, जितने ज़्यादा रंग हो गया आपके प्लेट पे, उतने ज़्यादा विटामिन्स हमें मिल रहे हैं। वो एक बहुत आसान तरीका है ये आइडेंटिफाई करने का, ये ना पता करने का कि हम कितने अलग अलग विटामिन्स ले रहे हैं, क्योंकि विटामिन्स की जानकारी सब सबको नहीं होती है, वो उनको ही होगी जो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एक आम आदमी के लिए, एक पेशेंट के लिए वो ज़रूरी, बहुत सिंपल हिंट हो जाता है कि कलर्स रखिए, कि हम जितने अलग अलग रंगों के फ्रूट्स, जितने अलग अलग रंगों के वेजिटेबल्स खाने में रखेंगे उतने अलग अलग विटामिन्स आप इंश्योर
0: ग्रहण
1: कर रहे
0: करना
1: हो।
0: है, बराबर है। तो भाई देखिए, ये तमाम रंगों की बातें हो रही हैं, तो हमारे इस सेहतनामा कार्यक्रम का भी रंग है कि बातचीत होती है फिर म्यूजिक होता है, और उसी को बैलेंस करने के लिए आपकी पसंद का जो अगला गीत है वो कौन सा है?
1: अगला गीत होगा है अपना दिल तो आवारा, 16 साल
0: फिल्म
1: मूवी से।
0: से हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई में आपने बहुत अच्छा सुनवा दिया और हमारे सुनने वालों को भी पसंद आया होगा, उम्मीद है। हमारी बातचीत चल रही थी इस गीत के पहले विटामिन के सोर्सेस के बारे में, कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उसको कंटिन्यू करते हुए हम एक प्रश्न आपको बताते हैं कि भाई ये भी एक जिज्ञासा है, विटामिन विशेष या पर्टिकुलर विटामिन की कमी जब हो जाती है तो शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इस बारे में भी सोर्सेस के बाद आप बताइए।
1: जो विटामिन्स है, जैसे मैंने क्लासिफाई किया वाटर सोल्युबल एंड फैट सोल्युबल, तो अगर सोर्सेज देखा जाए तो एक बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर विटामिन ए है तो वो मेरी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब मेरी आंखें ड्राई हो रही है या कमज़ोर पड़ रही है, अगर विटामिन ए बहुत मात्रा में कम पड़ जाए तो उससे ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस यानी
0: या धुंधलापन
1: धुंधलापन वो प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, ये एक साइन है, ये एक सिम्टम है कि विटामिन्स कम है। और जो सोर्सेज अगर देखा जाए विटामिन ए के, जैसे वो फैट सोल्युबल सोर्सेज है तो वो शरीर में स्टोर करके रखे जा सकते हैं। तो इसमें मेरे रेड येलो कलर फ्रूट्स आ जाते हैं, सब्जी आ जाती है। जितनी मेरी ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, जैसे पपाया हो गया, मैंगो हो गया, पाइनएप्पल हो गया, फिर ऑरेंजेस हो गए, इन सब में अच्छे खासे विटामिन्स होते हैं विटामिन ए के फॉर्म में।
0: जी जी
1: दूसरा विटामिन जो बहुत ज़रूरी हो जाता है वो है विटामिन ई। अब ये भी एक फैट सोल्युबल विटामिन है जो शरीर स्टोर कर सकता है।
0: इसका और क्या काम होता है?
1: ये ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए, जब स्किन ड्राई होने लगती है या फिर बहुत और ये ड्राइनेस सिर्फ ऐसा नहीं कि सीज़न है ठंडी का और स्किन ड्राई हो गई है, ये ड्राइनेस इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि वो ड्राई स्किन की वजह से शरीर में इन्फेक्शंस आ सकते हैं, क्योंकि इसकी त्वचा इतनी टूट जाती है कि वो इन्फेक्शन इन्वाइट करने के लिए एक बेस्ट चीज़ बन जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये सिर्फ अच्छे दिखने वाली ड्राई स्किन की बात नहीं हो रही है, ये तब होता है जब बहुत कम विटामिन्स होते हैं शरीर में और उसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो विटामिन ई सिर्फ त्वचा के लिए, इसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि वो हम अच्छे दिखे, बट वो इसके लिए ताकि हम सेहतमंद रहे।
0: जी।
1: तो विटामिन ई बेसिकली आपके नट्स में होता है ज़्यादातर, तो बादाम हो गया, पीनट्स हो गया, सींग जो हम खाते हैं, ये नट्स जो है वो अच्छे खासे विटामिन के सोर्सेस है। इसके अलावा आप उसे फिश में भी पा सकते हो, तो जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए मच्छी अच्छा सोर्स है विटामिन ई का, और नट्स है जो विटामिन ई के लिए वेजिटेरियन सोर्स है यानी शाकाहारी सोर्सेस है,
0: जी।
1: ये मेजर सोर्सेस है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं बट ये तो ज़्यादा ज़रूरी है। और विटामिन सी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपका इन्फेक्शन फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, वो आपका रोग प्रतिकारक शक्ति इंप्रूव करता है,
0: मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का जो संक्रमण आने वाला होता है उससे हमारी सुरक्षा करता है।
1: जी। और जब हम बीमार होते हैं तब वो वापस वही काम करता है, तब वो जो बीमारी है, जो कीटाणु है, उसे तोड़ने में, उसे फेंकने में मदद करता है।
0: जी।
1: तो विटामिन सी आपके खटास वाली चीज़ों में रहती है, जो सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं, तो इसमें मेरा ऑरेंज और मैंगो वापस आ जाता है क्योंकि वो सिट्रस भी है, पपाया टू एन एक्सटेंट, कीवी आ जाता है, तो जितने भी खटास वाले फ्रूट्स हैं, नींबू, मौसम्बी, पेरू जो सीजन में पूरे 12 महीने मिलता है, गुआवा जिसे हम बोलते हैं, ये सारा फ्रूट्स है जो विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा है। सब्जियों में भी एक परसेंटेज ऑफ विटामिन सी होता है। अगर हम बेस्ट एग्जांपल ले तो ड्रमस्टिक्स जो सींग होती है उसमें भी विटामिन सी का अच्छा खासा परसेंटेज होता है। इसके अलावा एक सिंपलेस्ट चीज़ देखी जाए तो मिर्ची, मिर्ची में अच्छा खासा विटामिन सी होता है, हरी मिर्च में। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास, सिर्फ हम उसका इस तरह से इस्तेमाल नहीं करें कि वो विटामिन सी के लिए हेल्प करे।
0: जी जी और देखिए, आहार जो आपने बताया कि पर्टिकुलर फलों को खाने से, सब्जी के खाने से ये पूर्तियाँ होती है, लेकिन विटामिन की जो मात्रा है कई बार ज़्यादा भी हो जाती है, ये भी आपके मरीजों में आपने देखा होगा।
1: जी, ये होता है कुछ मरीजों में, बट ये तब होता है जब विटामिन्स का उन्होंने कोई एक्स्ट्रा या दवाई ली हो उसे ठीक करने के लिए।
0: अच्छा।
1: क्योंकि अगर हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स देखे जाए तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स वाटर सोल्युबल होते हैं, जैसे मैंने बताया वो शरीर स्टोर नहीं कर सकता है, तो टॉक्सिसिटी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और रही बात फैट सोल्युबल विटामिन्स की, तो वो तब बढ़ जाता है जब हम कोई करेक्टिव डोसेज ले रहे हैं या हम कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं। जैसे कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होने के रीज़न से या कारण से ज़रूरत से ज़्यादा फ्रूट्स या विटामिन्स खाने की कोशिश करते हैं। वो मल्टी विटामिन्स भी ले सकते हैं या फिर फ्रूट्स भी भरपूर मात्रा में खा रहे हैं या फिर वैसी कोई चीज़ नट्स हो गया जिसे भी वो समझते हैं कि वो सेहत के लिए अच्छी है, पर जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तब वो नुकसान करेगा। तो वो टॉक्सिसिटी पाई गई है बहुत कम केसेस में, लेकिन डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। इसके लिए हम बोलते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ कभी नहीं खानी चाहिए। हर चीज़ रोटेशन पे रखो, हर फ्रूट्स हर सब्जी रोटेशन पे रखो। जितना आप उसे अलग अलग चीज़ें खाएंगे अलग अलग समय पे, उनके अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे।
0: तो बातचीत का जो तालमेल है वो यहाँ थोड़ा सा विराम देंगे और संगीत को यहाँ पर उभारेंगे आपकी पसंद के गाने के जरिए।
1: इश्क बुलावा हंसी तो फंसी पिक्चर से।

0: विटामिन की बात चल रही थी, एक आपने कहा था कि विटामिन की जो अधिकतम मात्रा हो जाती है तो वो नुकसान भी करती है, और वैसे कहा जाता है ना कि अति किसी भी चीज़ की हो वो नुकसान ही करती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात आती है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, आप संतुलित आहार लीजिए, स्वस्थ रहेंगे।
1: जी, संतुलित आहार जो होता है, बैलेंस डाइट जिसे हम बोलते हैं, बेसिकली अगर हम आम आदमी के लिए देखा जाए तो एक पांच चीजों से बनता है। सिर्फ ये पांच चीज अगर आपके खाने में है तो आपका आहार संतुलित है। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कही जा सकती है। वो पांच चीजें क्या है? पहला है आपका अनाज। तो आप चावल ले लीजिए, या गेहूं ले लीजिए, या ज्वारी बाजरी ले लीजिए, आप जो खाते हो वो खाइए, पर अनाज होना चाहिए खाने में जब आप खाना खाते हो। ठीक है, कड़धान्य जैसे मैंने बताया वो भी इम्पोर्टेंट प्रोटीन हो जाता है,
0: कठोर,
1: तो कठोर हो गया, दाल हो गई, स्प्राउट्स हो गए, ये आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तीसरा है आपकी सब्जियां,
0: कोई भी सब्जी हो,
1: कोई भी सब्जी हो, और वो सब्जी के फॉर्म में भी हो सकती है और सलाद के फॉर्म में भी हो सकती है।
0: क्या बात है।
1: तो सब्जियां होनी चाहिए, आप जैसे मर्जी आए वो खा लो, पर ये जरूरी है, इसमें विटामिन भी है और आपका फाइबर भी है जो आपके खाने के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा हो गया आपका प्रोटीन सोर्स जो पल्सेस नहीं है, यानी आपका दही, छाछ, जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए चिकन, ये सारी चीजें मेरा चौथा कंपोनेंट है। और आ जाता है मेरा फैट, यानी ऑयल या चर्बी जो होती है। नाउ फैट्स जो है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे विटामिन्स बिना फैट के किसी काम के नहीं है, और फैट्स बुरे नहीं है, ये हमें ताकत भी देते हैं। तो जब हम सही टाइप के फैट्स चूज करें तब वो नुकसान नहीं करेगा, तब वो फायदा करेगा। तो ये जब कंपोनेंट्स है, मैं ये सारा सिंक में लेती हूँ। और इसके साथ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है पानी, जिसे हम ज़्यादातर ओवरलुक कर लेते हैं, जिसे हम ज़्यादातर दुर्लक्ष करते हैं, जिसे हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। तो पानी एक बहुत ज़रूरी चीज़ बन जाती है, जो मेरे डाइट का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो जब तक ये चीज़ें, पाँचों चीज़ें बैलेंस में रह रही है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, तब तक हम गड़बड़ नहीं कर रहे, हम परफेक्टली डाइट फॉलो कर रहे। फिर आप उसमें रोटी सब्जी ले लो, या फिर आप उसमें भाकरी ले लो, या आजकल मॉडर्न जमाना है, पास्ताज एंड पिज्जाज का जमाना है, तो वो पास्ताज एंड पिज्जाज भी बहुत संतुलित बनाए जा सकते हैं। सिर्फ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि हम आग बंद करके ये फॉलो ना करें जो इंटरनेट पे पढ़ते हैं, पर हम खुद की समझ लगाए इस चीज के पीछे।
0: कितनी हमें आवश्यकता है।
1: बिल्कुल
0: अच्छा, एक यहाँ पर बैलेंस डाइट की बात चल रही है तो एक कॉमन सी बात है कि हम लंच में जब लेते हैं तो सलाद पहले खाना चाहिए और पानी बहुत देर से पीना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या?
1: एक तरीके से हाँ, सलाद पहले इसलिए खाना है वो करेक्ट है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सलाद हम जब पहले खाते हैं तब हम फाइबर इंश्योर करते हैं, जो हमारे खाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और फिर हमें जितनी भूख होगी हम उतनी ही खाएंगे। तो ये हमें ज़्यादा खाने से भी रोकता है, और ये ज़्यादा ज़रूरी उन पेशेंट्स के लिए हो जाता है, उन रोगियों के लिए हो जाता है जिनको शुगर की तकलीफ है, डायबिटीज़, उनके लिए ये चीज़ बहुत काम करती है। उनके लिए भी ये चीज़ बहुत काम की है जिनको वज़न कम करना है,
0: जी
1: तो उनके लिए ये फाइबर बहुत ज़रूरी हो जाता है, और खाने से पहले इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, इसकी ज़रूरी वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। और पानी खाने के बाद इसके लिए लेना बोलते हैं कि पानी पी के आप पेट भर लोगे तो कुछ
0: अच्छा।
1: नहीं खाओगे, और प्लस वो एक टू एक्सटेंड एक तरीके से वो आपका विटामिन्स या मिनरल्स या खाना जो आपने खाया है उसको डाइल्यूट कर देता है। तो जो एसिड्स है स्टमक के, वो उनको डिफिकल्ट बना देता है कि वो चीज़ें पचा दे, क्योंकि वो डाइल्यूट हो गई है, डिजॉल्व हो गई है। तो जनरली हम बोलते हैं खाने के साथ ज़्यादा पानी ना पिए, मना नहीं है, लेकिन हो सके तो खाने के बाद अच्छे से पानी पी लीजिए, या खाने से पहले ले लीजिए। तो वो
0: अच्छा।
1: पहले वापस वही काम करेगा जो मेरा सलाड करता है, मेरा पेट भर देगा, तो मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, लेकिन खाने के दौरान थोड़ा कम रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि किस तरह से संतुलित आहार को डिफाइन किया आपने, सरल भाषा में परिभाषित किया, और बहुत सारे भ्रम भी तोड़े कि ऐसा नहीं है। अच्छा, अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर अपनी डाइट ले रहा है पर्टिकुलर बीमारी के दौरान, तो और जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, हृदय रोगी हैं, किडनी के रोगी हैं, पर्टिकुलर जो इस तरह के रोगी हैं, वो अपना आहार लेते हैं तो उसमें प्रोटीन और विटामिन की पूर्ति किस तरह से की जाए, वो चिकित्सक की सलाह से की जाए या स्वयं ही अपने आहार से ली जाए?
1: हम स्वयं ये कर सकते हैं जब तक हम बीमार नहीं हैं। अगर आप बीमार हो तो आपको चिकित्सक की ज़रूरत है, पर अगर आप ठीक हो
0: जैसे बीपी की गोलियां चल रही है।
1: तो मिलना ज़रूरी है, एक बार मिलना ज़रूरी है। आपको रेगुलर विजिट्स या कंसल्टेशंस की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन एक बार मिलके समझना ज़रूरी है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या नुकसान कर सकता है। काफ़ी बार हम चीज़ें खाते हैं ये सोच के कि ये हमें फ़ायदा कर रहा है, या ये चीज़ें हम अवॉइड कर दे रहे। जैसे आपने मेरे को पहले पूछा था कि दूध हम मना कर देते हैं क्योंकि दूध में चर्बी है ये कंसिडर करके, बट अगर वो गाय का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है, और
0: या
1: उसमें
0: फिर वो बिना मलाई का दूध है।
1: एग्जैक्टली अगर वो बिना मलाई का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है। तो हर चीज़ के लेने का तरीका होता है, वो एक बार समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप वो समझ ले फिर आप खुद से चीज़ें कर सकते हो, लेकिन क्या सही है क्या गलत ये पहले जानना, और वो भी किसी चिकित्सक से या किसी डायटिशियन से जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो उन्हें पता है, वो क्वालिफाइड पीपल है। वो इंटरनेट से पढ़ी हुई जानकारी या फिर सुनी सुनाई बातें नहीं बोलते हैं, उन्हें उस चीज़ का नॉलेज है, उस चीज़ की इंफॉर्मेशन रहती है।
0: और ये भी नहीं करना चाहिए कि उस व्यक्ति को ये सूट करता है तो मुझे भी करेगा,
1: बिल्कुल नहीं,
0: व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति अलग होता है, उनका शरीर अलग होता है,
0: उसकी प्रकृति अलग होती है।
1: उनकी प्रकृति अलग होती है, और एज के हिसाब से भी चीज़ें चेंज हो जाती है।
0: बिल्कुल
1: आपकी एज और दूसरे बंदे की एज में भी अगर समानता भी है तो मेडिकल कंडीशंस अलग हो जाती है, उनके काम करने का तरीका, उनके रहने सहने का तरीका, हर एक इंसान अलग है, उनकी ज़रूरतें अलग है, वो एक चीज़ पे नहीं मापी जा सकती। और अगर सिंपल चीज़ें देखी जाए कि हम क्या करें ये चीज़ें इंश्योर करने के लिए, तो दो तीन सिंपल रूल्स अगर हम फॉलो कर ले तो वो बहुत मदद करेगा। तो सिंपल रूल्स में ये रख सकते हैं कि जैसे विटामिन्स अगर हमें चाहिए कि हम रोज़ खाएं, तो एक नियम ये बना लीजिए कि रोज़ खाने में सलाद खाएं और अलग अलग कलर्स के सब्जियों वाला सलाद खाएं, तो हमारे अलग अलग विटामिन्स आ जाएंगे। रोज़ दो फल खाएं, सीजन्स के हिसाब से फल चेंज करें, क्योंकि हर फल का अपना इंपॉर्टेंस होता
0: जैसे
1: है।
0: गर्मी का मौसम है तो कौन से फल प्रेफर करने चाहिए?
1: आम गर्मी के मौसम में सबसे अच्छा आम रहेगा, और आम अच्छा है जब हम कंट्रोल में खाएं। कुछ ही ऐसे रोगी होते हैं जिनके लिए वो नुकसान करता है, तो जैसे मैंने बताया रोगियों के लिए तो चिकित्सक या डायटिशियन की सलाह लगेगी,
0: जी
1: बट हमारे लिए वो बहुत अच्छा है, उसमें अच्छे खासे विटामिन्स हैं। तो वाटरमेलन भी अच्छा है, गर्मी में अभी वाटरमेलन की भी सीज़न है तो वो भी खा सकते हो। तो जैसे जैसे आपकी सीज़न चेंज होगी वैसे वैसे आपके फल चेंज होने चाहिए, और जितना हो सके उतना सीज़न को फॉलो करिए। ऐसे नहीं कि कोई चीज़ प्रिजर्व्ड है और मेरे को आम अगर गर्मी की सीज़न छोड़ के अगर ठंडी की सीज़न में भी मिलने लगे तो मैं आम चूज़ करूँगी, तो वैसा नहीं करना है। उसे जितना हो सके फ्रेश लाइए, हमें प्रोसेस्ड या प्रिजर्व्ड फूड नहीं चाहिए। और तीसरा ये किया जा सकता है कि प्रोटीन इंश्योर करने के लिए हर एक मील में, जब भी हम खाना खाएं, बी इट ब्रेकफास्ट या दोपहर का खाना या शाम का खाना या रात का खाना, तो उसमें प्रोटीन का एक सोर्स, एक खाने की ऐसी चीज़ तो कम से कम रखनी है। एक से ज़्यादा हो सकती है पर एक से कम नहीं करना है। जब हम थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में खाएंगे तब हमारी ज़रूरत पूरी होगी, तब तक हमारी ज़रूरत नहीं पूरी होने वाली है।
0: वक्त हो चला है कि कार्यक्रम को समापन की ओर मोड़ दिया जाए, कि चलते चलते समापन के पहले अपनी ओर से आप हमारे सुनने वालों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: छोटे से ड्यूरेशन में ये सुना कि प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है, विटामिन्स इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, और एक छोटा सा हल्का सा पॉइंट कवर किया जहाँ पे बैलेंस डाइट की ज़रूरत, और बैलेंस डाइट का पहले तो समझा कि क्या होता है। अब इन सब चीज़ों में एक चीज़ रह जाती है, वो है खाने का समय। अगर हम ये चीज़ें खाने वाले हैं तो कब खाने वाले, ये भी ज़रूरी है। आप खाना अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप काम कर रहे हो, आप घर पे हो, आप हो हाउसवाइफ हो, या फिर आप ऑफिस में काम करते हो, तो आप वो चूज कर सकते हो कब खाना खाना है। सिर्फ एक ग्राउंड रूल ये रखना है, यानी एक नियम रखना है रोज का, कि 4 घंटे से ज्यादा खाली पेट नहीं रहेंगे। तो 4 घंटे के बाद हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप कुछ खा रहे हो, क्योंकि उतना देर खाली पेट रहना नुकसान कर सकता है। और रही बात, कुछ ये बोलते हैं कि 2-2 घंटे पे लेना चाहिए, तो 2-2 घंटे पे खाने की हमें जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन 2-2 घंटे पे लिपिया जा सकता है, यानी लिक्विड्स हाइड्रेशन मेंटेन किया जा सकता है। स्पेशली अभी गर्मी की सीजन है, हम पानी को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, तो वो प्लेन पानी भी हो सकता है या फिर कोई लिक्विड भी हो सकता है, जैसे नींबू पानी हो गया या छाछ हो गया, नारियल पानी हो गया या फ्रूट जूसेस हो गए। तो अलग अलग लिक्विड्स हर 2 घंटे पे नियमित तौर से ले, और खाना 4-4 घंटे पे अपने समय से, भले वो बहुत ज़्यादा ना हो बट एक हल्का सा छोटा सा स्नैक भी हो गया, पर 4 घंटे के बाद हमेशा खाना है, तो वो आपका सेहत बनाए रखेगा। और जो हमें चीज़ें, विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स, जितनी भी चीज़ें चाहिए, वो हम थोड़ी थोड़ी करके पूरे दिन में लेते रहेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि पूरे दिन कुछ नहीं खाया और दिन के एंड में पूरे दिन की रिक्वायरमेंट एक ही साथ खत्म कर ली, जिसकी हमें जरूरत नहीं है।
0: तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी आपने दी, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व बताया आज के इस कार्यक्रम में। हम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ डॉक्टर मीनल शाह से। आज का विषय था प्रोग्राम का, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व। आज के इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी रहे महेश वर्मा, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा, और आज के इस प्रोग्राम से अब दीजिए इजाजत।

नमस्कार, हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडिया वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ एवं FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 5 बज रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सायंकालीन सभा। सबसे पहले हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोरा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी इस समय संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।

स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक

0: $100 billion investment और 1 million jobs क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: श्री मोदी आज नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री कल तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो आपसी संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत विधि और न्याय मंत्रालय कल से गुजरात के गांधीनगर में ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों SOM की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि SOM बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के वरिष्ठ अधिकारी वैकल्पिक विवाद समाधान ADR से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। वहीं विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 2400 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं, ताकि समय पर सहायता प्रदान की जा सके और वे देश के नागरिकों की सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं। केरला में नई UDF सरकार ने राज्य परिवहन की बसों में महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों में आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों और रसोईया कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करना शामिल है। राज्य में नई विधानसभा का सत्र इस महीने की 21 तारीख को आयोजित किया जाएगा, जिसमें नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और अध्यक्ष का चुनाव होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रियसिस से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री नड्डा ने वैश्विक स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। बैठक के दौरान WHO के महानिदेशक ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों और वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारियों में नेतृत्व की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्ले ऑफ के और करीब आना चाहेगी, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने पर होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी गोरखपुर है। कुछ बोलो में सुनेंगे हमारी युवा साथी अब तक आयशम यह वाणी।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग।

और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: युवा साथियों नमस्कार, स्वागत है आज के युवाणी में, मैं हूं आपका दोस्त मनोज। दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह एक सुविचार से। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने डर का सामना करना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो हमें अपने डर से ऊपर आकर अथक प्रयास करना पड़ेगा, तभी हम जाके जीवन में सफल हो सकते हैं। दोस्तों सुविचार के बाद आइए सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

गीत के बाद दोस्तों हम कार्यक्रम में वापस लौटते हैं। दोस्तों भारत सरकार ने 16 जनवरी को स्टार्टअप योजना दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। यह दिन भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य देश में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और युवाओं को उद्यमिता की दिशा में प्रेरित करना है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्टार्टअप योजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य देश में नए व्यवसायों और उद्यमियों को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत सरकार नए व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक संसाधनों और समर्थन की पेशकश करती है, जैसे कि वित्तीय सहायता, मेंटरशिप और नेटवर्किंग के अवसर। इस योजना के तहत सरकार ने कई पहल भी की हैं दोस्तों, जिसमें कुछ प्रमुख हैं स्टार्टअप इंडिया अभियान। यह अभियान नए व्यवसायों को बढ़ावा देने और उन्हें सफल बनाने के लिए शुरू किया गया था। स्टार्टअप फंड, जी हां, सरकार ने स्टार्टअप फंड की भी स्थापना की है, जो व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि वह अपने स्टार्टअप को, अपने बिजनेस को शुरू कर सके। इसके अंतर्गत सरकार मेंटरशिप कार्यक्रम भी चलाती है। सरकार ने नए व्यवसायों को मेंटरशिप और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया, जिसको कहते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम। इससे नए व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है, रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और देश में नवाचार और उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलता है। दोस्तों इससे भारत वैश्विक पटल पर अपने आप को एक स्टार्टअप इकोनॉमी के रूप में पेश कर रहा है। इस चर्चा के बाद दोस्तों बारी है एक प्यारे से गीत की।

इस गाने के बाद दोस्तों हम कार्यक्रम में वापस लौटते हैं और दोस्तों हम आज बातें करेंगे कि फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा में करियर बनाने के बारे में। दोस्तों आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई फिट रहना चाहता है, ऐसे में अगर आपको करियर ऑप्शन भी ऐसा मिल जाए जिसमें खुद तो फिट रहें और दूसरों को भी फिट रखकर अच्छे पैसे भी कमा सकें तो बात ही निराली। क्या आप ऐसे करियर क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है फिजिकल एजुकेशन का। इसमें आप अपना शानदार करियर बना सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन में करियर के अच्छे स्कोप है। आप फिजिकल एजुकेशन में कोर्स करने के बाद कई कंपनियों, संस्थानों और स्कूलों के साथ जुड़ सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन कोर्स के लिए योग्यता, दोस्तों फिजिकल एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा कोर्स करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी विषय में 12वीं पास होना जरूरी है। इसमें 3 साल का बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपेड का कोर्स उपलब्ध है। यही नहीं, हर स्टूडेंट चाहता है कि कोर्स ऐसे करें कि भविष्य में करियर ग्रोथ भी हो और अच्छा पैसा भी मिले, जिसके लिए स्टूडेंट मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन में सर्टिफिकेट CPED, CPED या डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन DPED भी कर सकते हैं। दोस्तों कोर्सेज कहां से करें? देश के कई यूनिवर्सिटी में फिजिकल एजुकेशन के कोर्स के तहत डिग्री में बैचलर्स डिग्री और मास्टर डिग्री या डिप्लोमा कोर्स करवाया जाता है। इस क्षेत्र में बेहतर होगा कि आप किसी बड़े या अच्छे संस्थान से ही फिजिकल एजुकेशन का कोर्स करें। दोस्तों आइए आपको बताते हैं इससे जुड़े कुछ कोर्सेज के बारे में, जैसे कि आप सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी कर सकते हैं। इस तरह के किसी भी खेल का बेहतरीन खिलाड़ी बनने के लिए सही अकेडमी का चुनाव करना बहुत जरूरी है। अकेडमी के चुनाव के समय कुछ बातों का ख्याल रखें। कोच या आपकी सफलता में कोच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गेम की टेक्निक के साथ ही फिजिकल फिटनेस को लेकर गाइड करेंगे और आपको बढ़ावा देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिशन के पहले एकेडमी का इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर जांच लें कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, साथ ही समय समय पर होने वाले बदलाव के साथ बदलता रहे। पढ़ाई से सामंजस्य, प्रोफेशनल खिलाड़ी बनने के लिए आपको कड़ी प्रैक्टिस के साथ अपनी फिजिकल फिटनेस को भी ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन इस वजह से अपनी पढ़ाई के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। दोस्तों फिजिकल एजुकेशन का कोर्स करने के बाद बहुत से करियर के विकल्प मौजूद हैं। अच्छे संस्थान द्वारा फिजिकल एजुकेशन में कोर्स करने के बाद आप किसी भी स्पोर्ट्स एकेडमी, हेल्थ क्लब, स्कूल, कॉलेज के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल को विशेष भर्ती अभियानों के लिए रक्षा और पुलिस सेवाओं में प्राथमिकता मिलती है। यहाँ वे सरकारी नौकरी भी पा सकते हैं। वहीं समय समय पर देश की कई संस्थानों में शिक्षण के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भी भर्ती निकलती है, जहाँ वो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल के तौर पर फिजिकल ट्रेनर, कोच, शिक्षक, प्रोफेसर, स्पोर्ट्स मैनेजर, फिजिकल ट्रेनर के तौर पर आप अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको भी खेल पसंद है और आप चाहते हैं कि स्पोर्ट्स के फील्ड में करियर बनाएं, तो आप फिजिकल एजुकेशन जैसे विषय को अपनी 12वीं के पढ़ाई के बाद चुन सकते हैं। इस जानकारी के बाद दोस्तों लीजिए सुनिए एक और गीत।

दोस्तों अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे अपने अगले अंक में। तब तक के लिए अपने दोस्त मनोज को दे अनुमति। नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हम आपको याद दिला दें फिल्म संगीत कार्यक्रम में 7:31 पर आप सुनेंगे एक ही गीतकार कार्यक्रम। इसमें आज ही कलाकार होंगे आनंद बख्शी। हिंदी कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता पर्यावरण चिंतन और संस्कृति। वार्ताकार होंगी ईशा श्रीवास्तव। देसमार कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे ब्रजमोहन राम से उनकी कुछ काव्य रचनाएं। सुगम संगीत में आज के कलाकार होंगे अली हैदर। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम घर आंगन।

शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
4: घर आंगन सुनने वाली सब श्रोता बहन सबके मनीषा का नमस्ते। बहन देखा अपन बैठकी शुरू हो गई। बहन आज हमने के बात करेंगे एड्स वैक्सीन दिवस के बारे में, जवन हर साल 18 मई के मनावल जाला। लेकिन ओकरी पहले ई जान ले जा कि एड्स हवे का। एड्स एगो लाइलाज महामारी हवे जवन HIV नाम के खतरनाक वायरस के कारण फैलेला। हर साल 1 दिसंबर के वैश्विक रूप में सभी देशन के आपसी सहमति और सहयोग से विश्व एड्स दिवस मनावल जाला। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस हर साल 18 मई के मनावल जाला। यह के HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस भी कहल जाला। ये विशेष दिन एड्स के रोकथाम के खातिर एगो प्रभावी टीका विकसित करे के महत्व के उजागर कैके और वैज्ञानिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वयंसेवकन के प्रयास के सम्मानित करे की खातिर मनावल जाला। एकर शुरुआत पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के एगो भाषण के बाद भइल, जवन उ 18 मई 1997 के मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में दिले रहने। एकरी बाद 18 मई 1998 के पहला आधिकारिक विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनावल गइल रहे और बहिन तब से ई हर साल मनावल जाला ताकि लोगन में जागरूकता फैले और उ ए बीमारी के जाने और ई बीमारी से बचे का कोशिश करें। काहे कि ई बीमारी ऐसन है कि ई ठीक नहीं होले और जानलेवा साबित होले। तब बहिन सबके जागरूक रहे के चाहिए और ई टीकाकरण जरूर कराएं। और भी अपनी बैठकी में बात करे के, लेकिन ओकरी पहले मन मनसायन खातिर सुन लिहल जाएगो गीत।

0: बहन देखा अपनी बैठकी में मन मन शांत भइल और आज अपनी बैठकी में फिर हमन का बातचीत करे के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के बारे में। काहे कि हर साल 18 मई के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस भी मनावल जाला। संग्रहालय में हमनी के पूर्वजन क अनमोल याद के संजो के रखल जाला। ये दिवस विश्वभर में संग्रहालय की भूमिका के बारे में लोगन में जागरूकता पैदा करे की खातिर प्रति वर्ष मनावल जाला। लोग तो चल जाला और पर उनका जोन बाटे धरोहर रह जाले और वो हमनी के याद में हमेशा बनल रहेला। ये याद भी कई तरह से सजो के रखल जाला। हमनी के पूर्वज अपनी याद में सुंदर तरीक़ा से सजो के रखले जैसे कि हमनी के आज भी उनके बारे में जान सकीला जा उनके बारे में पूरा पता लग सकेला कि वो का करत रहना कैसे रहना वह चीज़ के कोनो नुकसान ना होके एकरी खातिर कई संग्रहालय बना दिहल गइल बा जैसे हमनी के अपनी पूर्वजन के याद रखे में मदद मिली और संग्रहालय का विशेषता और उनकी महत्व के समझ के संयुक्त राष्ट्र संघ 1983 में 18 मई के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनावे का निर्णय कैले। एकर मुख्य उद्देश्य हवे आम जनता में संग्रहालय के प्रति जागरूकता फैलावल और उकरा के संग्रहालय में जाके अपने इतिहास के जाने के प्रति जागरूकता बनावल। संग्रहालय में ऐसा अनेक चीज सुरक्षित रखल जाला जवन मानव सभ्यता का याद दिलावेला। संग्रहालय में रखल गई वस्तु प्रकृति और सांस्कृतिक धरोहर के प्रदर्शित करेला। संग्रहालय में हमने के पूर्वजन के अनमोल याद रखल जाला जैसे किताब पांडुलिपियन के रतन चित्र शिलाचित्र और अन्य सामान के रूप में तमाम चीज़ संग्रहालय में हमने के पूर्वजन के याद के जिंदा रख लेबा। बहन अपनी बैठकी में बात तो और करे के ओकरी पहले सुन लिया जाए गो वार्ता नवजात शिशु की देखभाल यह पर जानकारी देते ही डॉक्टर अनामिका शर्मा।
1: शिशु का जन्म जिंदगी के अद्भुत पल मानल जाला। नवजात शिशु में भगवान की ओर से दिहल अद्भुत क्षमता भरपूर रूप से होला। बाकिर तब्बो नवजात शिशु भोजन आ आराम बदे दूसरे पर निर्भर रहेले। नवजात शिशु के जन्मते उनके शरीर में अचरज से भरल बदलाव आवे लागेला। सबसे पहले ते ई जानल जरूरी बा कि बच्चा के जन्म का तुरंत बाद गर्भ नाल आ नार के नाभि के पास से काटी के अलग कर दिहल जाला। जौना चलते महतारी के प्लेसेंटा से सांस बदे ऑक्सीजन आ शारीरिक बढ़ोतरी बदे पोषण के निर्भरता खत्म हो जाला। आ ए जरूरत के पूरा करे खातिर जैसे सांस बदे बाहरी ऑक्सीजन आ दूसर बदे महतारी पर निर्भर हो जाले। यही कारण से नवजात शिशु के रख रखाव बदे शुद्ध ऑक्सीजन वाला वातावरण चाहिए। आज जन्म से आधा घंटा के भीतर महतारी के अपन स्तनपान जरूर करा देवे के चाहिए। चूंकि नवजात शिशु के शरीर एक तरह के द्रव से गीला होला जौना के एमनियोटिक द्रव कहल जाला। यही के चलते शिशु का शरीर ठंडा भइला का डर रहेला। शिशु का शरीर ठंडा भइला से बचे खातिर शिशु के हल्का कम्बल आ सूती कपड़ा से लपेट आ त्वचा ढाँप के रखल जाला। आ हीट लैंप के प्रयोग क के ए तरह के नुकसान से बचावल जा सकेला। शिशु के सिर पर बिनल टोपी भी रखा सकेला। आ शिशु की त्वचा अपना छाती आ पेट से सटा के रखला से भी गर्मी मिली सकेला। शुरुए में त्वचा से त्वचा सटा के रखले के चलते बच्चा के रोवले कम हो सकेला। आ महतारी के संपर्क के बेहतर बनावत सफलतापूर्वक स्तनपान करवला में मदद ले मिल सकेला। नवजात शिशु के जन्म के बाद के देखभाल। जन्म के कुछ हुए देर बाद शिशु के स्वास्थ्य का आकलन कैल जरूरी होला। जवन शिशु के कुछ शारीरिक क्रिया का आकलन आ मूल्यांकन क के पता कैल जा सकेला। जैसे शारीरिक गतिविधि, धड़कन के दर, चेहरा आ मुँह के प्रतिवर्ती क्रिया, त्वचा के रंग आ श्वसन क्रिया, ये सब अगर सामान्य बात ठीक ना तो तुरंत कोनो बाल रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेके जरूरत पड़े तो उच्च तकनीक से भी बचाव प्रक्रिया अपना सकल जाला। अगर शिशु के जन्म अस्पताल में भइल बा तो शिशु के स्थिति आ अस्पताल के नीति के हिसाब से शिशु के कुछ शारीरिक क्रिया का जांच प्रसव कक्ष में आ जच्चा के कमरा में हो सकेला। जैसे शिशु का शारीरिक तापमान, हृदय गति, श्वसन दर, वजन, लंबाई आ शरीर का लंबाई साथे साथे सिर के परिधि का मापन, ऐसे ई पता चली सकेला कि शिशु के गर्भकालिक समय के हिसाब से शारीरिक बढ़ोतरी ठीक भइल बा कि नाही। गर्भनाल के देखभाल, शिशु के गर्भनाल के स्टंप पर एगो क्लैंप लागल रहेला, जमना के साफ सुथरा आ सूखा रखे के चाहे। नवजात शिशु का स्नान, जब शिशु के शारीरिक तापमान स्थिर हो जा तब भी शिशु के पहली बेर नहवा सकल जाला आ पहला स्नान करावल जा सकेला। आँखी का देखभाल, कबो कबो जन्म नली में उपलब्ध बैक्टीरिया शिशु के आँखी के संक्रमित कर सकेले। अगर आँखी में संक्रमण होके तो डॉक्टर के सलाह के हिसाब से बैक्टीरिया रोधी आई ड्रॉप आ मलहम का प्रयोग डॉक्टर के निर्देशानुसार करे के चाहे। आई देखल जाओ योनि प्रसव आ नॉर्मल डिलीवरी आ सी सेक्शन सिजेरियन डिलीवरी में कौन कौन सावधानी बरते के पड़ेला। नॉर्मल डिलीवरी से पैदा भइल आ जन्मल शिशु आमतौर पर महतारी के साथे रहला खातिर सक्षम होले। ज़्यादातर अस्पतालन में जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु वजन, लंबाई आदि शारीरिक क्रिया का मूल्यांकन तुरंत कइल जाला। आमतौर पर जन्म के 1.5-2 घंटा बाद नवजात शिशु सतर्क रहे लगेले आ पूर्ण रूप से जागल रहेले, जवना चलते महतारी आ अपने लोगन के नवजात शिशु के बारे में जाने बदे बेहतर अवसर मानल जाला। काहे कि नवजात शिशु के ध्यान 1 फीट अकोरा में लेहला पर अपना बाहीं आ चेहरा का दूरी, सी सेक्शन आ सीजेरियन डिलीवरी के बाद नवजात शिशु का देखभाल। अगर शिशु के जन्म सीजेरियन डिलीवरी से भइल बा तो मान ली कि जन्म के समय महतारी जागल नहीं हुई है, उनका ऊपर बेहोशी का दवाई का असर जरूर हुई। ओई से तो सीजेरियन डिलीवरी शिशु के जांच, पड़ताल आ जांच प्रक्रिया स्वास्थ्य से सेवा देखे वाला अस्पताल के तरफ से कइल जाला। असगरो जांच के बाद शिशु के नर्स के माध्यम से परिजन के गोद में दिहल जाला। ओ समय घर लोग जे भी शिशु के कोरा लेला ओकरा कपड़ा आ शरीर साफ सुथरा होखे के चाही ताकि संक्रमण के संभावना न होखे। एगो औरी बात बतावत चलें कि कुछ महिला लोग ई सोचेला कि ऑपरेशन से बच्चा पैदाइश के बाद शिशु का पहला स्तनपान समय से ना करा पाए, तो ऐसन बात नहीं बा। सी सेक्शन से डिलीवरी भइला के बादो महतारी 1 घंटा में अपना बच्चा के स्तनपान करा सकेली। आई अब ई देखल जाओ कि ए स्थिति से आगे गइला पर नवजात शिशु के देखभाल में कौन कौन जरूरी सावधानी बरते के चाहिए। चूँकि नवजात शिशु का प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित नहीं होला, जैसे शिशु के जल्दी अबेर बेर संक्रमित भइला का डर रहेला। देखें साँच बात ई बा कि नवजात शिशु के देखभाल बदे आपन खुद के साफ सफाई से रहल ढेर जरूरी होला, तो खुद अपनियो साफ सफाई पर ध्यान दिहल बहुते जरूरी हो जाला। ए बाती में कोनो दूर आए नहीं खे कि नवजात शिशु के घर में अयला के बाद साफ सफाई करे का ड्यूटी पहले से कई गुना बढ़ी जाला। नवजात शिशु के घर में अयला के बाद महतारी आ घर के लोगन के बेर बेर साबुन से हाथ धोवत रहे के चाहिए। शिशु के नहवला के पहले, कपड़ा पहिरौला के पहले आपन आपन हाथ बैक्टीरिया रोधी साबुन से जरूर धो लेवे के चाहिए। शिशु का कपड़ा एंटी बैक्टीरियल साबुन से धो के खुला हवा में सुखावे के चाहिए। खुद बीमार आ अस्वस्थ रहला पर शिशु से दूर रहे के चाहिए। सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी आ औरियो कौनो खुद के बीमारी के हालत में शिशु से दूर रहे के चाहिए ताकि बच्चा के संक्रमित भइला के खतरा कम होखे। अगर मजबूरी में बच्चा के संहारे के होखे तो साफ कपड़ा पहिर के हाथ में दस्ताना आ चेहरा आ मुँह नाक पर मास्क लगा के शिशु के संहारल जरूरी होला, जैसे शिशु के संक्रमण से बचा सकल जा। नवजात शिशु के डायपर सूखल जगह पर रखे का चाहे, काहे कि नम जगह पर फफूंदी आ कवक के विकास तेजी से होला, जैसे शिशु के त्वचा में इरिटेशन आ खुजली हो सकेला। डायपर हमेशा सील बंद खरीदे का चाहे। घर के हरदम कीटाणु रहित रखले का कोशिश करें। कम से कम दिन में 2-3 बार कीटाणु नाशक लिक्विड क्लीनर से घर के फर्श पर पोछा लगावे के चाही, काहे कि घर में मौजूद माछी मच्छर कॉकरोच आदि से संक्रमण के खतरा रहेला। शिशु के कपड़ा के साथ सावधानी, खुद अपना के साफ सुथरा रखला के सावधानी के साथ शिशु के कपड़ा आ खिलौना लेके साफ रखे के चाहिए। कम से कम 2 दिन पर शिशु के बिस्तर जरूर बदले, शिशु कपड़ा आ बिस्तर एंटी बैक्टीरियल साबुन आ सर्फ से जरूर धोवे के चाहिए आ खुला हवा में सुखावे के चाहिए। कुल मिला के महतारी आ घर के लोगन के कुछ विशेष साफ सफाई आ सावधानी पर ध्यान देहला पर नवजात शिशु के देखभाल ढंग से हो सकेला।
0: हाँ बहन देखो, इतना निमन जानकारी खातिन इनकरा के दिल जा धन्यवाद। और बैठकी में फिर से मन मनसान खातिन सुन लिहल जाएगो गीत।

हाँ बहन देखा, अपनी बैठकी में पुरहर जानकारी भी लेनी जा और मन मनसायन भी भई, लेकिन हमन का समय से बदल बाणी जा और घड़ी इशारा कर रहल बा आप सबसे विदा लेवे के। तब फिर मिले के, तब तक खातिन बहन सबके नमस्ते।

बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में आज लखनऊ में भयल कैबिनेट के बैठकी में लखनऊ मेट्रो के विस्तार के साथ ही 12 गो महत्वपूर्ण प्रस्तावन के मंजूरी दिया गई हो। एगो रिपोर्ट।
1: आज हुई कैबिनेट बैठक में लखनऊ मेट्रो फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चार बाग से वसंत कुंज परियोजना के लिए MOU को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में आगरा मेट्रो रेल कॉरिडोर 2 में आगरा कैंट से कालिंदी बिहार तक मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी सहमति दी गई। बैठक में पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट बैठक में लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नए परिसर में 1010 बेड का मल्टी स्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर अस्पताल, शिक्षण ब्लॉक तथा नए OPD ब्लॉक के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

0: समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में एगो निजी मीडिया संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल भइले। ए मौका पर

0: एक्सप्रेसवे में 60% एक्सप्रेसवे यूपी के अंदर बने हैं। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन की।
1: स्वीडन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल ही अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित कैलस। ए मौका पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री मोदी कहने कि स्वीडन का सर्वोच्च पुरस्कार मिलल खाली उनकरे सम्मान नहीं बा, बलुक ई 140 करोड़ भारतीयन का सम्मान हो।
2: यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
1: स्वीडन में मिलल सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबले मिलल ई 31वां वैश्विक सम्मान हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीना के 31 तारीख के आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपन विचार साझा करी हैं। ई यह मासिक रेडियो कार्यक्रम को 134वीं कड़ी हुई। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर यह कार्यक्रम बदे अपन विचार आ सुझाव भेज सकें। प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिला के ईसानगर थाना क्षेत्र में आज सवेरे एगो ट्रक आ एगो वैन के टक्कर में 10 जने का मौत हो गई। ये दुर्घटना जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर लंबे पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालिसपुर गांव के लगे भइल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एह सड़क दुर्घटना में भइल जान माल के हान पर दुख जतौले हमें। प्रधानमंत्री श्री मोदी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से हर मृतक के परिजन के 2 लाख रुपया आघाही लोगिन के 50,000 रुपया का अनुग्रह राशि दहले का घोषणा कैले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथो सज्जो मृतकन के परिजनन बदे 4,000,000 रुपया का मुआवजा दहले का घोषणा कैले हमें। केंद्रीय पेट्रोलियम आ प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज वाराणसी में कहने कि देश में पेट्रोल आ गैस के कोनो कमी नहीं बा। केंद्र सरकार इस समय के परिस्थिति के देखत हर संभव कदम उठा रही हो। वाराणसी के जिला विकास समन्वय आ अनुश्रवण समिति दिशा के बैठकी के अध्यक्षता के बादे पत्रकार लोगिन से बतियावत श्री पुरी देशवासियन के ईंधन के उपलब्धता बदे फिर से भरोसा दियो ने। दिशा के बैठकी के दौरान वहां के वाराणसी के कई गो विभागन का बिंदुवार समीक्षा करत अधिकारियन के योजनन के प्रभावी क्रियान्वयन का निर्देश देने।
3: उसका एक स्टेटस रिपोर्ट दिया। ये स्टेटस रिपोर्ट जो है 120 पेज की है जिसमें सारी योजनाएं में इम्प्लीमेंटेशन कितनी हुई है, जहां कुछ कमी है उस पर चर्चा हुई।
1: मौसम विभाग अगला 4 दिन के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस का वहीं न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक के क्रमिक बढ़ोतरी का संभावना जतौले हो। विभाग प्रदेश के पूर्वी या पश्चिमी इलाकन में बिहने से लेके 21 मई ले दिन के समय कुछ जगहन पर तेज घाम चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी कैले बा। एह बीचे पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सतही एकरे लगे के करीब सज्जो जिलन में आज दिन में तेज घाम भीषण गर्मी आ लू से जनजीवन प्रभावित रहल। समाचार पूरा भइल, नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में लखनऊ मेट्रो के विस्तार सहित 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। एक रिपोर्ट।
4: आज हुई कैबिनेट बैठक में लखनऊ मेट्रो फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर 4 बाग से वसंत कुंज परियोजना के लिए MOU को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में आगरा मेट्रो रेल कॉरिडोर 2 में आगरा कैंट से कालिंदी बिहार तक मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी सहमति दी गई। बैठक में पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट बैठक में लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नए परिसर में 1010 बेड का मल्टी स्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर अस्पताल, शिक्षण ब्लॉक तथा नए OPD ब्लॉक के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में एक निजी मीडिया संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने में सफल हुआ है। प्रदेश में

0: मजबूत नेटवर्क आधार तैयार किया गया है और आज रोड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में यूपी ने नई पहचान स्थापित किया है।
1: देश के अंदर अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में टॉप टू राज्यों को चयन करना होगा उसमें से यूपी एक होगा। एक्सप्रेसवे देश के अंदर जितने भी बन रहे हैं उन एक्सप्रेसवे में 60% एक्सप्रेसवे यूपी के अंदर बने हैं। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन की।
0: स्वीडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल अपने यहाँ के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि स्वीडन का सर्वोच्च पुरस्कार मिलना सिर्फ उनका सम्मान नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है।
2: यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: स्वीडन में मिला सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक मिला यह 31वां वैश्विक सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के ईसा नगर थाना क्षेत्र में आज सुबह एक ट्रक और एक वैन की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालिसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज वाराणसी में कहा कि देश में पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हर संभव कदम उठा रही है। वाराणसी के जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पुरी ने देशवासियों को ईंधन की उपलब्धता के प्रति पुनः आश्वस्त किया। दिशा की बैठक के दौरान उन्होंने वाराणसी के विभिन्न विभागों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।
3: उसका एक स्टेटस रिपोर्ट दिया। ये स्टेटस रिपोर्ट जो है 120 पेज की है जिसमें सारी योजनाएं में इम्प्लीमेंटेशन कितनी हुई है, जहां कुछ कमी है उस पर चर्चा हुई।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की जबकि न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में कल से लेकर 21 मई तक दिन के समय में कुछ स्थानों पर तेज लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सहित इसके आसपास के लगभग सभी जिलों में आज दिन में तेज धूप, भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित रहा। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: पंचों जय जवान जय किसान, हाँ नारा लगल और अपन बैठकी शुरू भेल।
3: बिल्कुल, अब देखा आज अपनी बैठकी में हमन का जैसे हमेशा चर्चा कर लेना जाए तो इंसान तो अपन बोल के जोन बटे बीमारी बता सकेला चाहे कुछ कह सकेला, लेकिन पशु अनबोलता जीव हों वो अपनी बारे में कुछ भी बोल ना सकेला।
2: बिल्कुल सही बात है, और बहुत से किसान भाई खेती बाड़ी के साथ साथ पशुओं के भी पालन पोषण कर रहे हैं।
3: बिल्कुल,
2: ऐसे में जो पशुपालन है वो हमारे देश में कृषि से जुड़ल एगो बहुत बढ़िया व्यवसाय भी है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से किसान भाई लोग अपने आजीविका के लिए एगो साधन के रूप में बनौले बाटे।
3: बिल्कुल,
2: पशुअन चौवन के देखभाल और खान पान के अगर ठीक तरह से ध्यान ना देवल जाए तो कहीं ना कहीं वह व्यवसाय से जुड़ल लोगों के लिए एक तरह से कहीं ना कहीं नुकसान दे। अगर उनको ध्यान ना ठीक से हुई तो ये बहुत जरूरी बा, अति आवश्यक बा। कहे से कि पशुओं के अगर सही से रहें बीमारी नहीं हुई तो वो बहुत लाभदायक भी होलें। पशुओं के समय समय पर कई तरह के बीमारी एक तरह से आइले की संभावना रहली, जेकरे कारण बहुत से पशुओं के कभी कभो मृत्यु भी हो जाला।
3: ऐसे पशुओं में टीकाकरण जरूर करावे ताकि अपन पशु जोन बटे बीमारी से ग्रसित ना होके और स्वस्थ भी रहे। तो देखा अपनी बैठकी में बात तो और करे के, लेकिन ओकरी पहले सुनवा दिया जाए वो बातचीत गन्ना की फसल को बेधकों से कैसे बचाएं। श्री संजय कुमार यादव, उनसे बातचीत करता हूं विनय कुमार।
4: संजय कुमार यादव जी, आप हैं गोरखपुर जिला के फसल सुरक्षा अधिकारी। सबसे पहले आपका हमारे यह कार्यक्रम में स्वागत बा।
5: धन्यवाद।
4: ये समय कौन कौन कीड़ा हुआ?

0: जौन गन्ना के छेद करके आ ओके नुकसान पहुँचावेला, चाहे वो जड़ होके, चाहे तना होके, चाहे गोप हो।
1: देखिए किसान भाई को मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि अगर हम कीड़ों के तकनीकी रूप से, उनका तकनीकी नाम अगर हम बताना चाहेंगे तो शायद उन्हें कन्फ्यूज़न होगा या उन्हें ये समझ में आएगा कि इसको हम कैसे जानें। वो किसान भाई ये अच्छे से जानते होंगे कि कभी कभी जब पेड़ी होती है, उनकी जो पुरानी फसल होती है उसको रीजनरेट करते हैं नई, या कभी नई बुआई करते हैं, तो गन्ने का जो टुकड़ा होता है जिसे बुआई के रूप में, बीज के रूप में उपयोग करते हैं, उसको पहले देखें कि वो पूरी तरह से साफ़ सुथरा है, स्वस्थ है कि नहीं, कहीं उसमें लाल धारियां तो नहीं है, कहीं उसके गांठ के पास या उसके दो गांठों के बीच में कहीं होल तो नहीं है। ज़्यादातर कीड़ों के प्रभाव, अगर कोई कीड़े हैं और कीड़े का प्रभाव है तो ज़्यादा सब ये लक्षण होता है कि उसमें लाल रंग का कलर दिखाई देगा या भूरा या कत्थई कलर दिखाई देगा,
0: या पोरी में छेद रही,
1: हाँ इस, या तो छेद रहेगा उसमें। तो इन चीज़ों को तो सबसे पहले वो ध्यान दें। दूसरी चीज़ें कि जो उनके कीड़े हैं, कीड़ों में एक है सिरोपोफैगा निवेला, ये वास्तव में टॉप सूट बोरर कहा जाता है। टॉप सूट बोरर इसलिए कहा जाता है कि जहाँ से पत्तियाँ हरी होती हैं ऊपरी पोर्शन, और तने का पोर्शन मुलायम होता है, जो भाग एकदम से ऊपरी जहाँ हरी हरी पत्तियाँ जुड़ी होती हैं, वहीं पर ये अपना प्रभाव दिखाता है और पूरी तरह से होल करता है। और जब वो होल कर देता है तो जो उसकी नई तने का जो मेन तना है, जो बढ़ने की सिचुएशन होती है, वो उसको रोक देता है। फिर नीचे वाली गांठ से दूसरी एक कलम निकलनी शुरू हो जाती है, दूसरी एक कल्ला निकलना है निकलता है, और जैसे ही वो बढ़ता है, जब उसके लेवल पर पहुँचता है, तब तक फिर उस सूट से निकल करके वो उसमें भी प्रभावित कर देता है, अर्थात कि कई शाखाएँ गन्ने में हो जाती हैं। ये भी एक लक्षण है कि अगर आप किसी के खेत में जाएँ और वो देखें कि एक गन्ना सीधा अकेले खड़ा नहीं, बल्कि उसमें बगल से कई शाखाएँ भी निकली हुई हैं, एक तरह से शाखा के रूप में गन्ना निकला हुआ है, तो वो लक्षण है कि उसमें कीड़े का प्रकोप है।
0: और दूर से देख के पहचान,
1: दूर से देख के पहचान
0: ये समय शरतकालीन बसंतकालीन गन्ना का जौन बुआई भइल बाटे, वो हमें कोना कोना तरह का कीड़ा लग सकेला।
1: कीड़े लगने के लिए तो सबसे पहले तो जड़ में, ज़्यादातर बुआई में ये सिचुएशन आती है कि दीमक भी प्रकोपित करते हैं, उसमें दीमक भी लगते हैं। और ये रूट और सूट बोरर या स्टेम बोरर जो हम बोलते हैं, इनकी स्पीसीज अलग हैं, लेकिन इनका वर्क पैटर्न, इनका लक्षण और इनका काम करने का जो प्रभाव दिखाने का वो है सिम्टम है, वो लगभग समान है। बस इनको आप ये तने में देख रहे हैं तो स्टेम बोरर कह दिए, या जड़ के पास देख रहे हैं तो रूट बोरर के नाम से बोल दिए, या फिर ऊपर के पत्तियों में देख रहे हैं जहाँ नए गोफ निकला है उसमें अगर देख रहे हैं तो आप सूट बोरर बोलते हैं। इनकी प्रजातियाँ अलग अलग ज़रूर हैं, लेकिन इनके इनके इन्फेक्शन, इनके नुकसान करने की जो सिचुएशन है वो लगभग समान है, इनकी लाइफ साइकिल भी लगभग समान है। तो हम एक सामान्य लाइफ साइकिल की बात करेंगे कि कैसे ये पूरे साल उस फसल को एक क्रमिक रूप से
0: गर्मी या बरसात में अगस्त तक,
1: हाँ वैसे भी इनका जो पीरियड होता है इन कीड़ों का प्रकोप का, ये फरवरी से अक्टूबर तक होता है, क्योंकि ये शीतकालीन सुषुप्तावस्था में ये कीड़े चले जाते हैं। तो शीतकाल में तो फसल सुरक्षित होती है, लेकिन हमारी फसल का जो सबसे ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ की सिचुएशन होती है वो जुलाई अगस्त में होती है, और जुलाई अगस्त में मानसून के प्रभाव से बरसात के नाते फसल अपनी चरम पर होती है, और ये टॉप सूट बोरर उसी समय सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं और उसी समय अपना एक तरह से उसमें प्रोपेगेशन शुरू करते हैं, अपनी प्रोजनी बढ़ाना शुरू करते हैं। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि तीन पीढ़ियों से लेकर के लगभग सात पीढ़ियां तक एक साल में ही ये अपना चक्र पूरा करते हैं,
0: जीवन चक्र पूरा करते हैं।
1: अच्छा, जो सबसे ज़्यादा घातक होते हैं।
0: हाँ, एक चीज़ और बताएं कि जैसे आजकल जितना भी रासायनिक दवा है तो ओकरे डल्ला का आप लोग सिफारिश कम करे ली, अगर एकर व्यवस्था कही जा, मैनेजमेंट कही जा, तो एक कैसे कम कही जा सकेला, और जैविक जो कीट नियंत्रण का विधि है ओके कैसे अपनावल जा सकेला।
1: हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कीड़े को रोकने के लिए मैनेजमेंट कैसे वो अपनाएं कि वो व्यवस्थित रखें, ये बताने से पहले थोड़ा सा हम ये ज़रूर बताएंगे कि वो कीड़े की साइकिल कैसी होती है, करता क्या है कीड़ा। कीड़े छोटे छोटे तितली के समान, छोटे छोटे फतिंगे के समान दिखाई देते हैं, जो एडल्ट होते हैं, जो नर्मादा के रूप में होते हैं, और ये अंडे देने शुरू करते हैं, जो 90 से लेकर के लगभग 300 तक अंडे देते हैं
0: एक जगह समूह में।
1: और वो भी गन्ने की पत्ती का जो निचला पोर्शन होता है उस निचले पोर्शन पे ही, उसके मध्य शिरा के पास में ही ये अंडे देते हैं, और 7 से 12 दिन के अंदर वो अंडे पूरी तरह से लार्वा में बदल जाते हैं, और लार्वा ही इसका नुकसानदेह होता है, जो गोली की तरह से सूढ़ी जिसे बोलते हैं, वो लगभग 35 से 45 दिन तक जीवित रहता, मतलब अपने फार्म में लार्वा रूप में रहता है, और उस दौरान बड़े पैमाने पर ये शूट को, रूट को, स्टेम को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद फिर 5-6 सप्ताह जब इसका बीत जाता है, तब फिर ये प्यूपा के स्टेज में जाता है, जो उसी पत्ती के पास में, तने के पास में, या उसके शूट के टॉप में ही वो छिप करके प्यूपा के रूप में रहता है, और 10 से 12 दिन के बाद फिर से एक एडल्ट बन जाता है। इसकी पूरी जनरेशन 5 से 7 सप्ताह के बीच में एक चक्र इसका पूरा हो जाता है, फिर वो जो नई सोडियाँ प्यूपा से फिर एडल्ट में डेवलप होती हैं, फिर वो जनरेशन करना शुरू करती हैं। इस तरह से 3 से 4 जनरेशन एक सीज़न में ये पूरा करते हैं, इनकी संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ती है, और इनके जनरेशन का डेवलपमेंट की जो सिचुएशन होती है, पहली होती है ये फरवरी में निकलते हैं, क्योंकि जैसे ही सुषुप्ता, ये दिसंबर नवंबर जनवरी में सुषुप्तावस्था में होते हैं, और सुषुप्तावस्था के बाद जैसे ही फरवरी थोड़ा सा मौसम गर्म होता है, पहली प्रोजनी इनके निकलती है, अंडे लार्वे देना शुरू करती है, अंडे बच्चे, और फिर 2 अप्रैल में, 3 जून में, 4 अगस्त में, और 5 सितंबर में, इस तरह से 4-5 सीरीज में ये अपना जनरेशन पूरा करते हैं। तो उससे इनकी संख्या तो बढ़ती रहती है, इनकी इंटेंसिटी बढ़ती रहती है, इनका घातक प्रभाव बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर एक रसायन एक बार के छिड़काव से या 2 बार के छिड़काव से इनका नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल हो पाता है। तो इसलिए इस रसायन से नियंत्रण करने के लिए इसलिए भी रोका जाता है, दूसरे रसायन का जो एक नेगेटिव स्वास्थ्य पर, पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ता है, उसको भी कम करने का प्रयास किया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो कल्चरल प्रैक्टिस है, मैकेनिक विधि है, उसको अपनाएं तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस क्रम में हम मैकेनिक विधि में ज़रा सा ये बताना चाहेंगे कि किसी भी हालत में गन्ने की खेत तैयार करने के लिए उसकी कम से कम 4 बार 5 बार गर्मी के समय में या एक निश्चित अंतराल पर जुताई हो, अच्छे से उसके मिट्टी दो सूर्य के प्रकाश में एक तरह से सोलराइज हो जाए, उसका उसमें अगर कहीं लार्वा है, प्यूपा है, तो वो नष्ट हो जाए। दूसरे, जब वो मिट्टी तैयार हो जाती है और आप उसकी बुआई करना चाहते हैं, तो गन्ने की बुआई भी एक निश्चित गहराई पे होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आजकल नए यंत्र रोटावेटर से जुताई करके जब बुआई होती है तो गन्ना ऊपर के पोर्शन पे होता है, कीड़ों के प्रकोप होने के भी चांसेस होते हैं, और गन्ना गिरने के भी प्रभाव होता है, उसका भी एक नुकसान होता है। तो उसकी एक निश्चित गहराई पर बुआई करें। बुआई करने के तुरंत बाद से देखें कि गन्ने के खेत में साफ़ सफाई होना ज़रूरी है। साफ़ सफाई अगर है कि मतलब कोई खरपतवार नहीं है और नियमित अंतराल पर उसको देखभाल कर रहे हैं, तो इस कीड़े का प्रकोप होने का चांसेस कम होगा। अब शुरुआती 2-3 महीने अगर ये निकाल देते हैं बुआई के बाद और गन्ना लगभग 2 फीट का हो जाता है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये सुरक्षित निकल जाता है। लेकिन 2 फीट के होने के बाद जो निचले पोर्शन की जो पत्तियां होती हैं, जो सूख चुकी होती हैं, उसको पूरी तरह से साफ़ करना, उसके जुताई गुड़ाई करके और फिर नियमित अंतराल पर उसकी देखभाल करते रहना ज़रूरी होता है। ये तो है कि उनकी सजगता है। दूसरा ये है कि अगर उनको ये महसूस हो रहा है कि इस खेत में कई बार से कीड़े लगे या पिछली बार लगे थे, अगर उसको परिवर्तित करने का चांस उनके पास हो, विकल्प हो कि कुछ साल, एक साल के लिए उसको छोड़ दें, उसमें दूसरी की कोई फसल ले लें और फिर दूसरे खेत में उसका प्रयोग कर लें, तो अच्छा है। तीसरे, जैविक रूप से या फिर केमिकल विधि के अलावा एक तरीका यह फसली सफसली विधि से भी इसका एक अच्छा नियंत्रण होता है। प्याज की खेती लोग करते हैं, गन्ने के साथ कर लेते हैं, लहसुन की खेती कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो उसको बैलेंस करता है और कीड़े के प्रकोप को कम होने देता है। उसके बाद फिर गन्ना जब थोड़ा सा और आगे बढ़ने लगता है, तो वो देखते रहना है कि इसमें कोई जनरेशन दिख रही है। बाय द वे, किसी स्थिति में अगर दिखता है कि नहीं कहीं सूढ़ी दिख रही है या फिर कहीं होल दिख रहा है शूट में या कोई इस तरह के सिम्टम दिख रहे हैं, तो तुरंत रसायन का प्रयोग तब करना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन उसके अलावा जैविक रसायन का प्रयोग सबसे बढ़िया बात होगी, क्योंकि जैविक रसायन में हमारे यहाँ ट्राइकोग्रामा की कई स्पीसीज हैं, तो ट्राइकोग्रामा का प्रभाव ये होता है कि वो एक निश्चित चेन बना देती है, और जैसे जैसे उनकी जनरेशन, जैसे मैंने पहले बताया कि 5 या 6 जनरेशन में आती रहती हैं, तो उनके ऊपर एक चेन के रूप में वो इन्फेक्शन करते रहते हैं और उस पूरी श्रृंखला को तोड़ते हैं। कोशिश तो शुरू में यही होनी चाहिए कि इस तरह के कीड़े आए ही ना, अगर आ जाते हैं तो फिर अंतिम रूप से जब हमारे पास कोई विकल्प ना हो, तो मुझे रसायन का छिड़काव करने के एक सलाह भी देना जरूरी है। एक क्लोरेंट्रानिलीप्रोल नामक रसायन है जो कि मार्केट में है, उसका भी छिड़काव होता है। वो प्रभावी रसायन तो है क्योंकि उसका ड्यूरेशन 20 से 25 दिन से ज़्यादा होता है, और 25 दिन में जब तक ये लार्वा या प्यूपा की ये एग हैचिंग की सिचुएशन होती है तो उसमें वो प्रभावित करके काफ़ी अच्छा नियंत्रण करता है। लेकिन इसका प्रयोग भी किसान कभी कभी 10 दिन में कर देते हैं, 5 दिन में करते हैं, रिपीट करते हैं। मेरा मानना है कि 20 दिन 25 दिन के पहले ही इसका छिड़काव अनावश्यक है, नुकसानदेह है। और दूसरे, इसका कम से कम 2 बार छिड़काव करना ज़रूरी है, जिससे ये कम से कम 2 बार में 50 दिन का समय ले और पूरे चक्र को तोड़े, तो सबसे प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है कीड़ों का।
0: श्री संजय कुमार यादव जी, आप इतना अच्छा जानकारी दिहली कि इस समय जौन गन्ना का फसल खड़ा बा ओमें लगे वाला कीड़ा कौन हो और ओके अपने फसल के कैसे बचावल जा सकेला, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया, धन्यवाद।
2: गन्ना की फसल को बेदकों से कैसे बचावल जाए, यही विषय पर जानकारी देते रहे श्री संजय कुमार यादव जी, और इनसे बातचीत करते रहे भैया विनय कुमार। और अब लगले हाथे समय हो गया मनमन साइंग के, तो सुनल जाए गीत।

0: हाँ देखा भाई, अपनी बैठकी में मन मनसैन भाई, और अब अपनी बैठकी के आगे बढ़ावल जा सुनवा दिल जा वार्ता कैल्शियम एवं फास्फोरस का पशु उत्पादन पर प्रभाव डॉक्टर सतीश कुमार सिंह से।
1: जैसा कि पशुपालक भाई जानते हैं, जीवन के लिए आहार की आवश्यकता होती है। वैसे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को हम पशुओं को आहार के रूप में देते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, विभिन्न पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए दिया जाता है। ये कौन से पोषक तत्व हैं, इसको हमारे पशुपालक भाइयों को जानना चाहिए, जिससे कि आपके पशुओं का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सके। खाद्य पदार्थ के रूप में जो भी पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाते हैं, उसमें 6 पोषक तत्व होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज मिश्रण एवं जल। इस सारे पोषक तत्वों में देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा केवल ऊर्जा के स्रोत होते हैं, पशु को ताकत देते हैं, साथ ही उसके शरीर के संरचनात्मक अवयवों के भाग भी होते हैं। साथ ही कुछ और तत्व जैसे विटामिन्स और खनिज मिश्रण, ये ऊर्जा तो नहीं देते, लेकिन दैहिक क्रियाओं को संचालन में इनका बड़ा ही अहम योगदान होता है। अगर इनकी कमी हो जाती है तो बहुत सारी समस्याएं पशुओं को झेलनी पड़ती है, आती हैं, दिक्कत होती है। तो इस तरह से आज चर्चा का विषय रहेगा खनिज मिश्रण, और इसमें भी मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस का दुधार पशुओं में किस प्रकार से इसका महत्व है, इस बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जहाँ तक पोषक तत्वों के कार्य की बात है, तो मैंने बताया कि ये जो खनिज मिश्रण हैं, ये इसमें मुख्यतः 7 गौ मुख्य खनिज पोषक खनिज होते हैं। साथ ही बाकी जो हैं वो सूक्ष्म खनिज तत्व होते हैं, जिनकी ग्राम में आवश्यकता या ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, उनको हम मुख्य खनिज तत्व कहते हैं, जिनकी बहुत अति लघु मात्रा में, जिनको मिलीग्राम में हम कहते हैं, उसको सूक्ष्म खनिज कहते हैं। मुख्य खनिजों में जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, इस तरह के होते हैं। अब हम आपको, जहाँ तक कैल्शियम और फास्फोरस की बात है, अक्सर हमारे पशु भाई भ्रमित होते हैं कि ज़्यादा कैल्शियम पशुओं को दे दिया जाता है तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, और जब पशु ब्यात की दशा में आती है या बच्चा देने की दशा में होती है, तो उस समय बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ऐसा नहीं होता। यदि आपकी गाय कमज़ोर है और उसको आप कैल्शियम दे रहे हैं, अब बच्चा स्वस्थ हो जाता है, तो ऐसी दशा में क्या होता है कि उस बच्चे को बड़ा हो जाने से और गाय के कमज़ोर हो जाने से इस तरह की दिक्कतें ब्याध के समय में होती है। हालांकि कैल्शियम का रोल बहुत अच्छा होता है उत्पादन को बढ़ाने में। सबसे पहले तो आप एक खनिज को भी समझ लें कि ये खनिज क्या होता है। जब भी किसी खाद्य पदार्थ को पूरी तरह से आप जला दें और उसका भस्म, जैसे वो सफ़ेद अवयव जो बचता है, उसी को हम खनिज कहते हैं। और खनिज में, जैसा कि हमने बताया कि कैल्शियम, इसके बहुत सारे कार्य हैं। ये तो शरीर की हड्डी दांत बनने में इसका मुख्य योगदान होता है। इसमें हड्डियों में 90% तक या 90% तक इसमें कैल्शियम होता है। फास्फोरस लगभग 60% तक होता है, और हड्डियों का, दांत का विकास ज़्यादा

0: अगर कैल्शियम की कमी शरीर में हो जाती है तो ऐसी दशा में प्रभावित करता है। कैल्शियम एवं फास्फोरस की जब कमी देखी जाती है, खास तौर से जब गाय गर्भित होती है, तो अंतिम 3 महीने में उसको 12 ग्राम कैल्शियम और 5 ग्राम फास्फोरस की प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसा उसकी आहार में कमी होने के बाद आप देखते हैं बहुत सारी समस्याएं पशुओं को हो जाती हैं। जैसे मैं कुछ समस्याओं का आपको बताना चाहूँगा। एक तो सबसे पहली समस्या आती है ब्याने के बाद दुग्ध ज्वर की। दुग्ध ज्वर ये ऐसी बीमारी है जब रक्त में कैल्शियम एवं फास्फोरस की इनकी कमी हो जाती है, तो तत्काल देखने को या बच्चा देने के 4-5 दिन के अंदर ही आपको दिखाई देने लगता है। इसके मुख्य लक्षण ये होते हैं कि पशु कमजोर फील करता है और साथ ही वो देखेंगे तो अपना सर जो है बाई कोख की तरफ करके बैठा होता है, उसको किंकिंग ऑफ द नेक कहते हैं। ऐसे लक्षण अगर परिलक्षित होते हैं तो समझिए वो दुग्ध ज्वर के हैं। दूसरा, इसमें जो समस्याएं आती हैं प्रजनन संबंधित रोग। प्रजनन संबंधित रोग में यदि आप कैल्शियम फास्फोरस की पूर्ति आहार में अच्छे तरीके से नहीं किए हैं तो बहुत सारी विकृतियां, खास तौर से फास्फोरस की कमी से देखा जाता है कि उस पशु में अंडा ही नहीं बनता है, जिससे निषेचन प्रभावित होता है। और अक्सर हमारे पशुपालक भाई अपनी समस्याओं में ये कहते हुए मिलते हैं कि हम अपनी गाय को इतने बार सीमन चढ़ाए या इंसेमिनेशन करवाए लेकिन वो रुकती नहीं है या बार बार गर्म होती है। तो ऐसी प्रजनन संबंधित बहुत सारी समस्याएं इस कैल्शियम और फास्फोरस कमी से देखी जाती है। दूसरा, एक समस्या आता पाइका का, जिसको असामान्य भूख भी कहते हैं। अगर इनकी कमी हो जाती है तो इसके साथ साथ इनमें ये इस तरह की भूख डेवलप होती है जिसमें वो कंकड़ पत्थर लकड़ी ये सब चबाते रहते हैं। तो इसके अलावा वृद्धि और विकास में भी इसका रोल है। जैसा कि हमने बताया कि इसका मुख्य जो संरचनात्मक कार्य में देखा गया है कि हड्डी और दांतों का विकास इन्हीं का होता है, तो इसमें वृद्धि और भूख की कमी का भी न्यूनता रोग देखा गया है। साथ ही रक्त में परिवर्तन, अगर कैल्शियम फास्फोरस की कमी शरीर में हो जाती है तो रक्त में बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं जो कि आंतरिक अंगों के साथ साथ पशु की उत्पादन क्षमता को भी।
1: हाँ देखा भाई, अब अपनी बैठकी का समय समाप्त भाई,
2: घड़ी की सुई भी इशारा कर रहा बा कि अपन कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करल जा।
1: पंचों
2: जय
1: जय
2: जवान
1: हिंद, जय
2: जय
1: किसान।
2: किसान।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बारी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए, खोए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। हरिश्चंद्र अपनी पुत्री महिमा के लापता होने की सूचना हमें देते हैं। महिमा की उम्र है 20 वर्ष, लंबाई 4 फीट 9 इंच, रंग सांवला। ये दिनांक 10 अप्रैल 2026 से लापता है। इनके बारे में अगर आपके पास कोई सूचना हो तो इस पते पर सूचित करें। महिमा पुत्री हरिश्चंद्र, कोडारी थाना बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर। राम केवल अपनी पुत्री अनामिका के लापता होने की सूचना हमें देते हैं। अनामिका की उम्र है 21 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंगे हुआ। ये दिनांक 9 अप्रैल 2026 से लापता है। इनके बारे में अगर आपके पास कोई सूचना हो तो इस पते पर सूचित करें। अनामिका पुत्री राम केवल, बनकटा थाना बासी, जनपद सिद्धार्थनगर। श्रीमती पुष्पा के लापता होने की सूचना इनके पति अशोक वर्मा देते हैं। पुष्पा की उम्र है

0: 31 साल, लंबाई 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा, ये दिनांक 27 फरवरी 2026 से लापता हैं। इनके बारे में अगर आपके पास कोई सूचना हो तो इस पते पर सूचित करें। श्रीमती पुष्पा पत्नी अशोक वर्मा, खलीलपुर टोला रेहरवा, थाना मोहाना, जनपद सिद्धार्थनगर। रोशन अली अपने पुत्र हैसियत अली के लापता होने की सूचना देते हैं। हैसियत अली की उम्र है 70 वर्ष, लंबाई 6 फिट, रंगे हुआ, ये दिनांक 2 अप्रैल 2026 से लापता है। इनके बारे में कोई सूचना हो तो इस पते पर सूचित करें। हैसियत अली पुत्र रोशन अली, मधुबेनिया, थाना गुलहरा, जनपद सिद्धार्थनगर। कोई व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
4: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: यह आकाशवाणी गोरखपुर है, लीजिए सुनिए हमारा लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। इसमें आज के कलाकार हैं राम ज्ञान और साथी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchive.com।

www.cdc.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: अभी आपको लोकगीत सुना रहे थे राम ज्ञान और साथी। ये आकाशवाणी गोरखपुर है। देश हमार का इश्यू में लीजिए सुनी ब्रजमोहन राम से उनकी कुछ भोजपुरी काव्य रचनाएं।
1: आई गांव की तरफ चली जा कि माई के ममता, माई के ममता भई या के दुलार हो, बाड़ा निक लागे यार गौआ हमार हो, बाड़ा निक लागे यार। माई के ममता भैया के दुलार हो, बाड़ा निक लागे यार गौआ हमार हो, बाड़ा निक लागे यार। गोबरे के बनसु जहवा गौरी गणेश हो, दही

खाके लोग जाले परदेस हो, गोबरे के बन सुजहवा गौरी गणेश हो। दही गुर खाके लोग जाले परदेस हो, काली जी के दिहल जाला।

चढ़ी के चरावेला छोटका, खेदेला पतर का तो भागेला मोटका। भैंसी पर चढ़ी के चरावेला छोटका, खेदेला पतर का तो भागेला मोटका। छपकेला पनिया में, छपकेला पनिया में बुधुआ उघार हो, बाड़ा निक लागे यार गौआ हमार हो, बाड़ा निक लागे यार। माई के ममता भई या के दुलार हो, बाड़ा निक लागे यार गौआ हमार हो। मटिए के कोठिला आ मटिए के डेहरी, रक झक करेली सखिया सलेहरी। मटिए के कोठिला आ मटिए के डेहरी, रक झक करेली सखिया सलेहरी। सुकवा समरवा के, सुकवा समरवा के लागेला बाजार हो, बा

चर वहवा भी टोरी सोहनी में रोपनी मेहोला तारा सोरी गैया चरावे चर वहवा भी टोरी हाका हाकी से जहवा हाका हाकी से जहवा चलला कुदार हो बाड़ा निक लगे यार गौवा हमार हो बाड़ा निक लगे यार माई के ममता भई या के दुलार हो बाड़ा निक लगे यार गौवा हमार हो आम बदे जामुन बदे फूटेला कपड़ा हाथ बही होला तो चलेला थपरा आम बदे जामुन बदे फूटेला कपड़ा हाथ बही होला कबो चलेला थपरा।

0: अनारी तकरार हो, बाड़ा निक लागे यार। गहुआ हमार हो, बाड़ा निक लागे यार। गहुआ हमार हो।
1: एगो बेटी जौना के आदमी पैदा करला, कुछ दिन के बाद दूसरा के हो जाले, विदाई होता, बेटी रोवतिया, परिवार के लोग कहता
0: कि जनी रोव नैनन निरढर काई, जनी रोव नैनन नीर ढरकाई, जन्मे के हऊ ए बेटी पराई। जनी रोव नैनन निरढर काई, जन्मे के हऊ ए बेटी पराई। जनी रोव नैनन गजबे बनवलन नाता विधाता, गजबे बनवलनी इनाता विधाता, जे जन्मावल।

ता बदरी के बुनी ऐसन, बदरी के बुनी ऐसन छूटता रोवाई, जन्मे के हऊ ये बेटी पराई, जन्मे के हऊ ए बेटी पराई, बाबूजी अनारी जे चल के सिखावल, बाबूजी अनारी जे चल के सिखावल, कके मजूरी खियावल जियावल, छुट्टी जाली गर्भ में ढोवे वाली माई, छुट्टी जाली गर्भ में ढोवे वाली माई, जन्मे के हऊ।

जन्मे केहू ए बेटी पराई। जेठ जाना भैया जे ढोवल पिठैया, जेठ जाना भैया

पिया भरी आखी लोर लेके, भरी आखी लोर कके करल विदाई, जन्मे के हऊ ए बेटी पराई। जनी रोव नैनन नीर ढरकाई, जन्मे के हऊ ए बेटी पराई। हथवा धरावल जाला जेहिये के हाथे, हथवा धरावल जाला जेहिये के हाथे, खूंटा के बाछियस जालो उनका साथे, खूंटा के बाछी ऐसन जालो उनका साथे। मोहगर होखे चाहे होखे कसाई, मोहगर होखे चाहे होखे कसाई, जन्मे

अभी आपको अपने कुछ भोजपुरी काव्यरचनाएं सुना रहे थे ब्रजमोहन राम। अब आज का देश हमारे का यशम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रादेशिक संगीत का यशम मेरे जी सुनिए बंगला लोकगीत।

0: ও ভাই মানুষুরি, সুযোগ পায়ে সময় হারাসিনি। জন্ম মাটি হলো খাটি, যা দিবি তাই তো পাবি, এসব কথা ভেবিনি, সুযোগ পায়ে সময় হারাসিনি। ও ভাই মানুষুরি।
1: यह आकाशवाणी गोरखपुर है, कुछ ही बोलो में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ समेत आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में यूपी ट्रिपल एससी 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने में युवाओं की अहम भूमिका। लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी, मौसम विभाग ने 22 मई तक अधिकांश जिलों में लू चलने का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के निर्धारण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ये आयोग पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उनके सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन की जाँच करेगा।
3: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। आप सब लोग जानते हैं, बड़ा प्रदेश है, 59,000 से भी ज्यादा पंचायतें हैं, हमारे सैकड़ों विकास खंड हैं, 75 जनपद हैं। तो पंचायत चुनाव कराने से पहले हमें आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना और भी चीजों को देखना है। उसके लिए अब आयोग अध्ययन करेगा और आयोग जैसा रिपोर्ट देगा उसके आधार पर पंचायत के चुनाव की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
2: वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। इनमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए

0: आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। श्री खन्ना ने कहा कि केन्द्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से बसंत कुंज तक के पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी।
1: परिषद की दिनांक 5/3/24 को संपन्न बैठक में लखनऊ मेट्रो परियोजना फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर DPR पर माननीय मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदन पहले प्रदान किया गया। ये खास तौर से इसी सरकार संबंध में लखनऊ मेट्रो फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चारबाग से बसंत कुंज परियोजना की अनुमोदित लागत 5,801.05 करोड़ रूपए पर सहमति प्रदान की गयी। इसमें 50-50% हिस्सा है भारत सरकार, 50% राज्य सरकार।
0: बैठक में मंत्रिमंडल ने पशु चिकित्सा के छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते को 4,000 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 12,000 रूपये प्रतिमाह किए जाने और मिर्जापुर में 2,799 करोड़ रूपये की लागत से बिजली ग्रिड उन्नयन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है। परिणामस्वरूप आज प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।
2: 9 वर्ष की शानदार यात्रा में चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया। एक टीम भावना के साथ परिणाम लाया गया कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है, अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत के विकास में अग्रिम भूमिका के साथ अपने आप को खड़ा कर रहा है।
0: प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कल शाम मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया गया। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्रियों में भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग सौंपा गया है। वहीं मनोज कुमार पांडे को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग आवंटित किया गया है। सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में पदोन्नत किए गए अजीत पाल सिंह को राजनीतिक पेंशन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग दिया है, जबकि सोमेंद्र तोमर को सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा दल विभाग सौंपा गया है। 4 नवनियुक्त राज्य मंत्रियों में कृष्णा पासवान को पशुपालन और दुग्ध विकास विभाग, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग, हंसराज विश्वकर्मा को लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और कैलाश राजपूत को ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग सौंपा गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज वाराणसी में जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने देश में पेट्रोल, PNG और LPG की उपलब्धता को लेकर लोगों को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक घरों तक PNG सुविधा पहुंचाना है।
3: भारत एक ऐसा देश है विश्व भर में जिसमें ना कच्चे तेल की, ना पाइप नेचुरल गैस की, ना LPG की कोई कमी हमने होने दी। एक हमने जो बहुत कोशिश की है काशी में, हम ये चाह रहे हैं जो LPG कनेक्शन थे उसको ज्यादा तेजी से पाइप गैस में कन्वर्ट किया जाए। उससे सुविधा लाभार्थियों को भी होगी। एक तो पाइप गैस ज्यादा एफिशिएंट है, उस सस्ती भी है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण आयात में बाधा के बावजूद देश में रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं। आज नई दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
4: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज हैं। पेट्रोल, डीजल, LPG और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है, लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
0: डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका

0: महापाल ने अपने क्षेत्रवासियों से आग्रह किया है कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील के अनुसार डीजल पेट्रोल के न्यूनतम प्रयोग के साथ साथ सोने की खरीद से बचें। देश भर में ईद उल अजहा यानी बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। कल देश में कहीं से भी चांद दिखने की पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद लखनऊ स्थित मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद और शिया मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने बताया कि बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। लखीमपुर खीरी में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और सवारी वाहन की आमने सामने से टक्कर हो गई। ट्रक चालक हादसे के बाद घटनास्थल से फरार हो गया। घटना पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। साथ ही दोनों ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश में सर्वाधिक गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल से 22 मई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की आशंका है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है। श्री योगी ने सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था और बिजली आपूर्ति बाधित न होने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि अत्यधिक गर्मी और लू के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकले। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ समेत आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में यूपी ट्रिपल एससी 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने में युवाओं की अहम भूमिका। लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी। मौसम विभाग ने 22 मई तक अधिकांश जिलों में लू चलने का किया ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: पिज्जा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
5: को
6: बीप, तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
5: दिमाग चार्ज कर अपना।
7: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
5: देखा
6: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
7: अब क्या करोगे?
6: फ्री वाईफाई है ना?
5: बुद्धू सुधर जा।
7: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
6: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
7: RBI कहता है
8: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
10: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
9: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
10: कहाँ से पता चलेगा?
9: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
11: आज ही सर्च करूंगा।
9: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
8: RBI कहता है
12: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
13: ओह लवली, वेल डन।
8: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
13: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
14: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
13: नो लोन,

0: गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
1: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
0: आप कौन?
2: RBI कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: यह आकाशवाणी गोरखपुर है, ऐसे सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम। आज का गीतकार फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में जब कुछ सुनवाते हैं आनंद बख्शी के लिखे हुए कुछ फिल्मी गाने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गाना राजा और फिल्म से गायिका हैं लता मंगेशकर, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

राजा और रंक, अभी आपने लता मंगेशकर को सुना, फिल्म का नाम था राजा और रंक और गीतकार अनबख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार को फिल्म अजनबी में। इस गाने को लेकर अनबख्शी ने वर्धन बनाई है राहुल देव वर्मन ने।

एक दूजे के लिए। ये नाम है उस फिल्म के संगीत, अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

मोम की गुड़िया अभी अपने इस फिल्म में लता मंगेशकर के साथ आनंद बख्शी को सुने गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है आए दिन बाहर के। इस गाने को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लीजिए सुनिए इस गीत को।

कैशम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म मिलन से। गायक स्वर मुकेश का, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आपने मुकेश को सुना, फिल्म का नाम था मिलन, रचनानंद बख्शी की थी और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गाने के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम आज के गीतकार अब संपन्न होता है। इसमें आज आपने सुना आनंद बख्शी के लिखे हुए कुछ गाने। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हिंदी कार्यक्रम में आज

शरीरा, यह युक्ति इस बात का द्योतक है कि ये तत्व जहाँ एक ओर मनुष्य के विकास को प्रभावित करते हैं, दूसरी तरफ मनुष्य को पृथ्वी पर सबसे सफल प्राणी बनाने में सहायक भी हैं। अन्य जीव वातावरण के दास होते हैं और उसी के अनुकूल अपने को बनाते हैं, किंतु मनुष्य अपने उपयोग हेतु वातावरण को ही अपने अनुकूल बनाने के प्रभाव में लगा हुआ है। वातावरण शब्द आज अनजान नहीं है, यह परि तथा आवरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परि का अर्थ होता है चारों ओर, यथार्थ पर्यावरण चारों ओर का आवरण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीवन को प्रभावित करने वाली समस्त बाह्य परिस्थितियों का मिला जुला नाम ही पर्यावरण है। आप लोग जानते हैं कि जीवन के लिए भोजन, वस्त्र और रहने के लिए मकान की मूलभूत आवश्यक होती है, लेकिन वायु के बिना जीवित रहना असंभव है। क्या कभी आपने शरीर को देखा है? क्या कभी आपने ईश्वर को देखा है? आप भी कहेंगे यह कौन सी नई बात है, ऐसा कौन सा प्राणी होगा जिसने अपने शरीर को न देखा हो, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसने ईश्वर को देखा होगा। यानी अंतर केवल हाँ और ना में है, यही अंतर पर्यावरण और धर्म में है। धर्म न तो बाहरी आवंडर है और न ही कर्मकांड, धर्म तो धारण करने की अवस्था है। धर्म वह जिसे धारण किया जाए। समस्त देव विग्रहों पर भी एक दृष्टि घुमाइए, आपको धर्म के अक्षत दर्शन हो जाएंगे। देवी जी पर्वतवासिनी हैं, वह अन्नपूर्णा हैं, उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र और शास्त्र है। भगवान शंकर की जटाओं से गंगा निकलती है और वह गले में सर्पहार पहने हैं। शेषनाग भगवान विष्णु जी की छत्र छाया करते हैं, वह क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। समस्त नवग्रह भी समष्टि सृष्टि के ही प्रतीक हैं। भजनों में, कीर्तनों में, तप जप में हम जिन धर्म को धारण करते हैं और वास्तव में जिसकी प्रेरणा ईश्वर हमको देता है, उसका ही पता नहीं है। वह धर्म है, पर्यावरण है, समग्र सृष्टि पास करें तो हर धर्म के पर्वों पर का सार पर्यावरण ही है। तीन प्रकार के तापों का वितरण हमारे धर्मशास्त्रों में मिला है, दैहिक, दैविक और भौतिक। तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज नहीं कुदुही व्यापा। न जाने कितनी बार हमने इस चौपाई को पढ़ा होगा, न जाने कितनी बार राम राज का नाम लिया होगा, न जाने कितनी बार हमने श्री रामचरितमानस के अखंड पाठ किए होंगे, लेकिन जो काम करना था वही नहीं किया, दैहिक, दैविक और भौतिक तापों का मनन नहीं किया। दैविक ताप हमारे शरीर के ताप यानी हमारे खान पान, आचार विचार, हमारी सेहत और स्वास्थ्य के प्रति चेतना। दैविक ताप यानी वे ताप जिस पर हमारा जोर नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी उदासीनता और दोहदेही से ताप हमको सहन करने पड़ते हैं। जैसे महामारी, भूकंप, सुनामी, ऋतु असंतुलन। भौतिक ताप यानी जिसका संबंध हमारे अपने कामों से है, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक हानियाँ। तुलसीदास कहते हैं कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापों पर विजय नाम ही रामराज है। हम रामराज की कल्पना तो करते हैं, लेकिन तीनों तापों में खुद तपने और दूसरों को तपाते हैं। पर्यावरण न तो नया नाम है और न ही उसकी अवधारणा ही नई है। धर्म के नाम तो पर तो बहुत काम हुए, सृष्टि, विष्णु पालन और महेश संहार कहिए, तीन ही देवियां हैं। ब्रह्म तो पिता मानो और प्रवृत्ति को माता, संभवतः इसी

0: कारण हमने धरती को माता कहा है। हमारी शक्ति का वास पर्वतों में है, इसीलिए देवी स्वयं पर्वत पर विराजमान हो गई। हमारी शक्ति जल में है तो भगवान शंकर स्वयं गंगाधर हो गए। विष्णु जी क्षीर सागर में हो गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ उठा लिया। इंद्र का भ्रम तोड़ दिया कि वही सब कुछ है। आपदा आई, अति सृष्टि हुई, लेकिन सभी लोग कन्हैया की छतरी के नीचे आ गए। अर्थात सृष्टि के ऊपर कोई नहीं, क्योंकि इसी से हमारा जीवन है, हमारे प्राण हैं। मानव शरीर की बात करते हैं। अब क्षिति जल पावक गगन शमीरा पंच रहित यह अधय शरीरा। वास्तव में यही तो मानव शरीर है। क्षिति जल समीरा गगन और पावक से बना शरीर। अब कहीं देखिए, इन्हीं पंच तंत्रों से मिले शरीर को जमीन का हमने दोहन कर दिया। रासायनिक चीज़ों के प्रचुर प्रयोग से जमीन की उर्वरा शक्ति घट गई। औद्योगिक और रासायनिकीकरण से जल प्रदूषित हो गया। कई नदियों का अस्तित्व मिट गया। मोक्षदायिनी माँ गंगा अपने ही पुत्रों की ओर कटार दृष्टि से देख रही हैं। समीरा वायु प्रदूषण कहीं खुली हवा नहीं। धुआं उगलते वाहन, धुआं पीते हम। गगन यानी ध्वनि प्रदूषण, चारों ओर कोलाहल, शोर ही शोर। पावक आग ही आग, कहीं शास्त्रों की आग, कहीं मशीनों की आग, गैस की आग। स्वास्थ्य संबंधित आंकड़े बोलते हैं कि इन पांच तत्वों के क्षरण से कितने लोग कैंसर, बहिरता, हृदयाघात और नाना बीमारियों से ग्रसित हैं। यह स्थिति तब है जब हमारे कण कण में ईश्वरी वास, ईश्वरी चेतावनी और ऋतु बसंतीय प्रेरणादायी पर्व है। इन लोक से परलोक तक कल्याण की कामना है। सवेरे सूर्य भगवान को जल देते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, हवन करते हैं, मंदिर जाते हैं और फिर निकल पड़ते हैं प्रकृति का दोहन करने। अस्तु हम अपने जेब से अपना कफन लेकर चलते हैं। हमको नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। हर धर्म और अधर्म की ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले की सृष्टि का ही संरक्षण नहीं कर रहे हैं। किसी की भी मंत्र, तंत्र, यंत्र या शास्त्र की गंगा में गोता लगाइए, आपको सृष्टि या पर्यावरण का ही संदेश मिलेगा। सृष्टि का जन्म ही गेंद या सेब से माना गया है। इसका उपसंहार कभी प्रलय होगा, जब गंगा लुप्त हो जाएगी, पर्वत सागर सब एक हो जाएंगे। यह प्रलय कहीं बाहर से नहीं होगी, हम ही इसको जन्म देंगे। कभी आपने सोचा, शंकर जी ने अपनी जटा से गंगा की एक ही धार क्यों निकाली है? जिस गंगा की एक धार इतनी विकराल व गतिमान है, अगर पूरी गंगा धरती पर होती तो क्या होता? इसी का नाम सृष्टि, संयोजन व अनुशासन है। न केवल हिंदू धर्म में वरन इस्लाम में भी कुदरत और कायनात का अमीदा है। हम कुदरत के नियाम तक नहीं पहुंच सकते। जहां विज्ञान की अंतिम रेखा होती है, वहां धर्म का, आध्यात्म का प्रवर्धव होता है। इसी उसकी सृष्टि में कोई भी जीव जंतु और इंसान एक सा नहीं है। उसकी फैक्ट्री में एक ही पीस नहीं बनता। होम जब तब ग्रामीण और शायद कहीं से कोई आवाज़ या असर दिखाई दे, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी जिंदगी हूँ, स्वाह में तुम्हारा कल्याण है, स्वधा में अंत।
1: पर्यावरण चिंतन और संस्कृति अभी अब इस विषय पर ईशा श्रीवास्तव की वार्ता सुन रही थी। अब आज का हिंदी का कार्यक्रम संपन्न होता है। यह आकाशवाणी गोरखपुर है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं अली हैदर।

0: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
1: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
0: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
1: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाए।
1: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
0: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
1: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।

0: स्वच्छता से ही मिलेगी खुशहाल और सुरक्षित जिंदगी।
1: स्वच्छता का संकल्प लाओ, गंदगी को दूर भगाओ,
0: कूड़ेदान में कूड़ा डालो, साफ सफाई का ध्येय अपनाओ।
1: हर गली हर मोहल्ला हो साफ, स्वच्छता से ही मिलेगी खुशियों की सौगात।
0: स्वच्छता का ये संकल्प लें, गंदगी को दूर भगाएं,
1: हर जगह स्वच्छता का दीप जलाएं, स्वस्थ और सुंदर जीवन को अपनाएं।

0: इसी साथ ही हमारा आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। इसमें आज के कलाकार थे अली हैदर। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
2: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
1: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
2: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्व भर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके
3: इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमरीका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एल

0: पीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
1: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जाँच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोलस्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up 2 inquiry commissions to probe corruption and atrocities against women. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement today, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping.
4: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
3: Prime Minister Modi said the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity.
4: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
3: The Prime Minister hoped that using the scale, speed and talent of India, in collaboration with

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इन दिनों अगर आपके घर में जनगणना कर्मी आकर आपके मकान के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका सहयोग करें और पूरी जानकारी उन तक पहुंचाएं, क्योंकि देशव्यापी जनगणना 2027 के पहले चरण का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जा रही है। इस बार जनगणना कार्यों में पहली बार शुरू की गई है स्वगणना सुविधा, जिसे जनता से काफी उत्साहजनक रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। काफी राज्यों में स्वगणना का जो विकल्प है वो समाप्त हो चुका है और कुछ राज्य अभी बचे हैं। ये पहल जनगणना कार्यों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसे कैसे भरना होगा, किस तरह के सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो तुरंत हमें कॉल कीजिए, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम मकान सूचीकरण और आवास गणना पर परिचर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमने आमंत्रित किया है गृह मंत्रालय की महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप महापंजीयक रुशाली वराड़े जी को। नमस्कार रुशाली जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार और धन्यवाद।
0: श्रोताओं, हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप हमारे विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0111-23-01-04-8, 0111-23-71-71, 0111-23-71-06 और 0111-23-34-44 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-09-4044 पर भी भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9289-09-4044 पर आप सवाल भेजते रहिए। सोशल मीडिया एक्स पर #AskAIR का इस्तेमाल करके भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और रुशाली जी, सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ही है कि पहले चरण का काम तेजी से शुरू हो गया है, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना किस तरह की जा रही है इसमें, और किस तरह के सवाल इसमें जनता के लिए चुने गए हैं?
1: जी, जैसे अभी आपने कहा कि इस बार पहली बार हम स्वगणना की उपलब्ध फैसिलिटी उपलब्ध है पब्लिक के लिए, तो काफ़ी राज्यों में स्वगणना का पीरियड ख़त्म हो चुका है, जो कि हमने 15 दिन के लिए रखा था, और 1 महीने का समय है जो कि प्रगणक घर घर जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो कुछ 7 या 8 स्टेट में हमारी स्वगणना कंप्लीट हो चुकी है और HLO का काम भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ राज्यों में स्वगणना अभी चल रही है। तो क्वेश्चन के बारे में अगर हम कहें तो जैसे नाम है इस फेज का, मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, तो इसमें हम सिर्फ मकानों की गणना करेंगे और मकान के हालत कैसी है, घर कैसा है और घर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे पीने का पानी कहाँ से आता है, पीने का पानी कैसे है, टॉयलेट की सुविधा है या नहीं, बाथरूम की सुविधा है या नहीं, घर में कितने लोग रहते हैं, कितने कपल्स रहते हैं, रूम्स कितने हैं घर पे, और घर में एसेट्स क्या है, जैसे कि रेडियो है या नहीं, टेलीविजन है या नहीं, 2-व्हीलर 4-व्हीलर है या नहीं, तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे।
0: जी रुशाली जी, और सबसे पहले हमारे लिसनर हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। जी धर्मवीर जी।
2: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार।
2: एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं धर्मवीर गाने का दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे सवाल में मैं ये पूछना चाहूंगा कि घर घर जाके आप इसके लिए इंक्वायरी करेंगे, जानकारी लेंगे, और कुछ घरों में जाने का मतलब ये है कि घरों में महिलाओं का होना, क्या जो आपके जाएंगे वर्कर तो उसमें एक महिला भी होगी साथ, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, जो अगर कोई दिव्यांग है, दिव्यांग का मतलब ये है कि वो अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो कैसे अपने, जो पहले आपने कहा था कि इसमें खुद भी ये दर्ज कर सकता है, और इसके लिए हमें क्या क्या, मैं कित अगर कोई फ्रॉड आ जाता है इंक्वायरी करने के लिए, तो ऐसे में हम क्या पहचान करें कि ये आदमी फ्रॉड है कि ये सरकार के भेजा गया ये आपका वर्कर है? धन्यवाद।
0: धर्मवीर जी ने 3 सवाल पूछे हैं रुशाली जी। सबसे पहला सवाल उनका ये है कि अगर महिलाएं घर में मौजूद हैं तो क्या कोई महिला कर्मी भी जनगणना कर्मी के साथ मौजूद रहेंगी?
1: तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, महिला अलग से तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो प्रगणक होंगे वो जनरली होते हैं जो स्कूल के टीचर्स होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। हम लोग इंस्ट्रक्शन जरूर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें अपॉइंट करें, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन एक फेथफुली अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट ये कंपलसरी नहीं है और हर घर में एक ही आदमी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पूरे इंडिया के लिए 31 लाख प्रगुणकों की ज़रूरत है। तो इतने सारे लोगों के साथ मतलब और एक महिला जाना इट्स मतलब संभव नहीं है। लेकिन जो तीसरा सवाल है मैं इसी के साथ जोड़ देती हूँ, जो फ्रॉड वाली बात इन्होंने पूछी है धर्मवीर जी ने, तो फ्रॉड की कोई ये नहीं है, क्योंकि प्रगणक के पास अपना आई कार्ड होगा, उसके पास चार्ज ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, उस पर स्टैम्प होगा, प्लस क्यूआर कोड होगा आई कार्ड पे, और अपॉइंटमेंट लेटर पे भी क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड स्कैन होने के बाद हमारी वेबसाइट उस पर आ जाएगी और वेबसाइट पे उसकी डिटेल्स आपको दिख जाएंगे, तो फ्रॉड की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हालांकि हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप अपने चार्ज ऑफिसर को या लोकल ऑफिसर से बात कर सकते हैं।
0: और दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि दिव्यांग व्यक्ति फॉर्म कैसे भर सकते हैं।
1: जी, तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए जैसे पहले ही बताया मैंने, स्वगणना एक अतिरिक्त फैसिलिटी हम दे रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है। प्रगणक हर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, अगर आपने स्वगणना की है तो भी प्रगणक घर घर जाके फिर से वो वेरीफाई करेगा। तो अगर दिव्यांग कोई है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, प्रगणक वहाँ पे जरूर जाएगा और इन्फॉर्मेशन लेके आएगा।
0: और अब हमारे दूसरे लिसनर हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र जी। जी राजेंद्र जी
3: नमस्कार। जी जागृति जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार।
0: नमस्कार, मैं फरहत नाज बात कर रही हूँ राजेंद्र जी,
3: सॉरी जी,
0: लेकिन मैं आपका नमस्कार जागृति जी को भी पहुँचा दूंगी।
3: जी जी, और मैं ये जानना चाहता है अगर कोई गलत जानकारी देता है या तो कोई उस पे कोई कार्रवाई होगी, या जैसे कोई नोटिस दिया जाएगा जनगणना के बारे में, मकान के बारे में, उस पे क्या कार्रवाई हो सकती है? और जो 33 सवाल पूछे जाते हैं उसमें कुछ ही मेरे से कुछ 2-3 ही सवाल पूछे गए थे, और मुझसे ये पूछा गया था कि आप टीवी देखते हो, तो मैंने उनसे मेरे को ये पूछ लिया था कि आप रेडियो सुनते हो, तो मैंने कहा रेडियो, मैं पहला ऐसा शख्स कह रहे मिला है इसके बारे में भी।
0: तो इनका सवाल था कि रेडियो सुनते हैं कि नहीं, इस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे गए थे।
1: जी, एक तो पहला मुझे लगता है इनका सवाल था गलत जानकारी के बारे में, तो पहले मैं बता दूं कि गलत जानकारी अगर कोई देता तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है कि उसे कोई पनिशमेंट मिलती है। बट उससे ऊपर जो इम्पोर्टेंट बात है कि सेंसस की इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, सेंसस एक्ट में ये मेंशन है कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। तो जनरली लोग सही जानकारी देते हैं, और सेंसस एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि लोग अपने बिलीफ से अपने नॉलेज से सही जानकारी दे। जो डेटा रिलीज होता है वो एक एग्रीगेट लेवल पे रिलीज होता है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने की कोई भी संभावना नहीं है। तीसरा जो है, जो हमारे 33 सवाल है वो नोटिफाई हो चुके हैं, गवर्नमेंट के गैजेट में नोटिफाई हो चुके हैं, तो उसमें जो भी सवाल है वो सारे उतने ही एनुमरेटर को पूछने हैं और उनका ही जवाब रिस्पोंडेंट को देना है। ये बिल्कुल सही कहा कि टीवी का सवाल उसमें है, रेडियो का सवाल उसमें है, रेडियो आप किस पे सुनते हैं ये भी उसमें पूछा गया है कि आप मोबाइल पे सुनते हैं या आपके पास रेडियो सेट है या फिर आप

0: कार में सुनते हो, उसी तरह टीवी का भी अलग अलग आप कैसे देखते हो, मतलब दूरदर्शन है आपके पास, फ्री डिश या डीटीएच है या फायर स्टिक है, केबल कनेक्शन है, तो अलग अलग सवाल उसमें हैं।
1: और अगर किसी भी तरह की हमारे श्रोता दिक्कत उठा रहे हैं तो आप मकान सूचीकरण और मकान गणना अनुसूची के लिए वेबसाइट जो पोर्टल दिया हुआ है sec.census.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं और आप सारे सवाल जो हैं वो इसमें आपको शो हो जाएंगे किस तरीके के सवाल जो है जनगणना कर्मी पूछ रहे हैं, ताकि आपको आसानी होगी उस समय आपका सवालों का जवाब देने में। और रोशाली जी, एक और प्रश्न हमारे पास आया है कि क्या जनगणना में सभी के लिए शामिल होना आवश्यक है?
0: बिल्कुल, जैसे जनगणना का पहला ही जो मोटो है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं या किसी को दोबारा गिनती करेंगे नहीं, तो हर एक को इंक्लूड होना है जनगणना में। और जो बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ जनगणना अधिनियम की, सेंसस एक्ट 1948, उसके हिसाब से हर एक व्यक्ति को या हर एक परिवार के मुखिया को ये कंपलसरी है कि सही सही जानकारी प्रगणक को दे। और ये प्रगणक की भी जिम्मेदारी है कि जितने सवाल गैजेट में पब्लिश हुए हैं उतने ही सवाल पूछे, उसके बिना और कोई भी सवाल ना पूछे, और जो भी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है वो उसको गोपनीय रखे।
1: जी, अच्छा, अगर कोई व्यक्ति मतलब जॉब की वजह से यहाँ पर रह रहा है, दिल्ली शहर में रह रहा है, लेकिन वो बिलोंग करता है किसी दूसरे राज्य से, तो वो क्या दोनों जगह का जो है उसके लिए भरना ज़रूरी होगा सेल्फ एनुमरेशन?
0: बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने कहा सबको जैसे हम इंक्लूड करते हैं तो डुप्लीकेट भी नहीं करते हैं। तो जहाँ पे जनगणना की ये कंसेप्ट है, जो जहाँ पे नॉर्मली रिसाइड करता है, यानी जहाँ पे मैक्सिमम टाइम रहता है, अगर काम के सिलसिले में वो दिल्ली में रहता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दिल्ली में कलेक्ट होगी, उसके अदर फैमिली मेम्बर्स अगर गांव में रहते हैं तो अदर फैमिली मेम्बर्स की गिनती गांव में होगी, लेकिन जो जहाँ पे रहता है वहीं पे उसका काउंटिंग होता है।
1: जी, और अब दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ब्रह्मदत्त जी।
2: नमस्कार मैडम जी।
1: नमस्कार।
2: हमारे विषय विशेषज्ञ जी को प्रणाम।
0: नमस्ते। प्रणाम।
2: मेरे दो जिज्ञासाएं हैं। पहली है कि जो हमारे दस्तावेज हैं दूसरे शहर के बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के, और हम दिल्ली में निवास कर रहे हैं, तो क्या हम दिल्ली की जनगणना में सम्मिलित हो सकते हैं? प्रथम प्रश्न। दूसरी है मैडम ये है कि अगर हम घर पर नहीं मिलते हैं तो क्या जनगणना स्टाफ को हम अपने समय के हिसाब से बुला सकते हैं? भाई छुट्टी वाले दिन आ जाना आप, तो क्या ऐसा संभव है? एक अन्य प्रश्न है, जो लोग जनगणना में शामिल नहीं होना चाहते क्या उन लोगों के लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है? धन्यवाद मैडम जी।
0: धन्यवाद ब्रह्मदत्त जी। तो तीनों सवाल आपके बड़े ही अच्छे थे। पहला तो ये है कि जनगणना में कोई भी दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो प्रगणक को नोट डाउन करनी है। इसीलिए हालांकि हम लोग सबसे अपील करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सही है वही इन्फॉर्मेशन दे दे, और आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गोपनीय रहेगी, किसी के साथ वो साझा नहीं की जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि RTI में भी हम इन्फॉर्मेशन देते नहीं हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कोई कोर्ट में अगर सबूत के तौर पर देने के लिए मांगता है तो उसको भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती एज़ पर सेंसस एक्ट। दूसरा जो सवाल था आपका, अगर आप घर पर नहीं मिलेंगे तो इसके लिए भी हमारे प्रगणक को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर घर लॉक मिलता है तो 2 या 3 बार वहाँ पे जाए, छुट्टी के दिन जाए या सुबह जल्दी जाए या शाम को देर से जाए, ताकि घर पे कोई ना कोई मिलेगा। तीसरा जो आपका सवाल था दंडात्मक कार्रवाई का, तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है सेक्शन 11 में कि अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है।
1: तो यानी कि पूरा सहयोग आपको जनगणना कर्मी के साथ करना है और सही सही और सटीक जानकारी उन तक उपलब्ध करवानी है। और अब त्रिपुरा से अविनाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अविनाश जी।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
3: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश अली बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल है कि जब जनगणना टाइम पे सरकारी कर्मचारी हमारे घर पे आते हैं तो हम अपना जानकारी उनको प्रदान करेंगे, तो लेकिन हम उनको पहचानेंगे कैसे कि वो सही व्यक्ति आए हैं मेरे घर पे? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ठगी व्यक्ति भी आ सकते हैं हमारे डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो हम उनको पहचानेंगे कैसे?
0: जी धन्यवाद अविनाश जी। और उसको पहचानेंगे कैसे, तो उनके पास आई कार्ड होगा और अपॉइंटमेंट लेटर होगा, जो कि लोकल चार्ज ऑफिसर, हमारे जो चार्ज ऑफिसर होते हैं वो तहसीलदार या मामलतदार होता है आपके एरिया का, या कोई BDO होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ये इनका स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ प्रगणक के पास एक आई कार्ड होगा, अपॉइंटमेंट लेटर होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर QR कोड होगा, QR कोड स्कैन करके आप देख सकते हैं, उसमें आपको हमारी वेबसाइट से सारे डिटेल मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कोई फ्रॉड हो रहा है तो आप अपने चार्ज ऑफिसर से या एरिया के कोई भी ऑफिसर से उसके कंप्लेंट कर सकते हैं।
1: रुशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास आया है कि खाली मकान, बंद मकान या फिर निर्माणाधीन मकान की गिनती किस श्रेणी में होगी और इन्हें कैसे चिन्हित किया जाता है?
0: जी, तो हमारे जो मैंने कहा हर एक क्वेश्चन के अलग अलग कोड है, तो जो हमारा जनगणना मकान के कोड है उसमें कुछ कोड है वैकेंट के लिए, कुछ कोड है अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए, कोड तो नहीं है बट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है उसका छत डाला हुआ है तो उसको हम मानते हैं, क्योंकि मेन जो हमारा है सेकंड फेज जो फरवरी 2027 में होगा, तो हो सकता है अभी जो घर आपका अंडर कंस्ट्रक्शन हो फरवरी 27 तक वहाँ पे कोई रहने के लिए आ जाए, तो ऐसे इसीलिए उसको हम गिनती अभी कर लेते हैं, उसको नंबर देते हैं और उसको इन्फॉर्मेशन एज अ वैकेंट कर देते हैं और एक रिमार्क डाल देते हैं कि इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, और जो खाली है उसको एक वैकेंट हम मानते ही है। कुछ ऐसे घर भी मिलते हैं कि घर लिया हुआ है लेकिन लॉक है, रहते कहीं और है, तो उसको भी लॉक के कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं ताकि सेकंड फेज में वो छूटे नहीं।
1: जी, अच्छा, इसमें जनगणना मकान नंबर कौन देता है और दीवार पर लिखने का क्या नियम है?
0: ये प्रगणक देता है और नियम है कि एक प्रगणक को एक जो एरिया देते हैं एनुमरेशन ब्लॉक हम जिसको कहते हैं, छोटा सा एरिया होता है 700 से 800 पॉपुलेशन या 150 घरों का, तो वो पूरे अपने एरिया में सीरियली जनगणना मकान नंबर देता है, एक से लेकर जो भी लास्ट उसके एरिया में होगा तो वो खुद लिखता है। उसके लिए हमने कुछ स्टेशनरी उसको प्रोवाइड की है, मार्कर पेन्स वगैरह दिए।
1: ठीक है, और अब शिमला से हमारे साथ राकेश जी जुड़ गए हैं। जी राकेश जी।
4: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
4: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो घर में रहते तो उनकी तो होती है, जो किराए के मकान पे रहते हैं क्या वो भी जनगणना में आता है? उनको क्या जनगणना करानी पड़ती है जो किराए पे रहते हैं?
0: जी बिल्कुल, जैसे फिर से मैं कह रही हूँ कि जनगणना में किसी को छोड़ा नहीं जाता, किसी को दोबारा गिना नहीं जाता, तो अगर आप किराए के भी घर में रह रहे हैं तो जनगणना का पहला जो रूल है कि जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होती है, तो आपका घर खुद का हो, किराए का हो या और किसी का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जहाँ पे रह रहे वहीं पे आपकी गिनती होगी। आपका घर किराए का है या खुद का है ये जानने के लिए हमारा क्वेश्चन है कि घर आपका खुद का है या किराए का है। किराए का है तो उसके लिए भी आपका कोड है कि आपका घर किराए का है, लेकिन आपका खुद का घर कहीं और है तो उससे हमारे पास ये एक नंबर्स आ जाएंगे कि कितने मतलब पूरे कंट्री में या पूरे देश में कितने लोगों के पास खुद के घर है या कितने लोग किराए पर रह रहे हैं।
1: और अब रवि जी जुड़ गए हैं हमारे साथ हरिद्वार से। जी रवि जी।
5: हाँ जी नमस्कार मैम जी, मेरा वीर जवालिया गढ़मीरपुर हरिद्वार से हूँ जी।
1: जी नमस्कार।
5: हाँ जी माँ जी, विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार जी।
0: नमस्ते
5: जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ जी, जो जनगणना है हमें सहयोग करेंगे, अपनी जानकारी देंगे, वो कितनी गोपनीय रखी जाएगी मैम?
0: जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, और कितनी रखी जाएगी इसके लिए मैं एक ही जवाब दे सकती हूँ कि आप भी मांगेंगे बाद में तो आपको भी नहीं दी जाएगी, इतनी गोपनीय रखी जाएगी, क्योंकि पूरी जानकारी एज पर सेंसस एक्ट या सेंसस अधिनियम जो है उसके हिसाब से किसी को दी नहीं जाती, आरटीए में भी दी नहीं जाती, कोर्ट में भी दी नहीं जाती और इंडिविजुअल भी को भी दी नहीं जाती। एक बार फिल होने के बाद वो कॉन्फिडेंशियल रह जाती है और हम सिर्फ एग्रीगेट लेवल पर डेटा रिलीज करते हैं।
1: और अब एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, महेंद्र जी। जी महेंद्र जी।
6: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
6: मैम, मेरा सवाल ये है कि अगर पुत्र या पुत्र वधू अगर माता पिता के साथ जीवन यापन करते हैं और उनका भोजन एक ही रसोई में तैयार होता है तो वो अलग परिवार माना जाएगा या उसी में जॉइंट किया जाएगा?
0: जी देखिए, जनगणना के लिए एक ही कंसेप्ट है, अगर एक परिवार मानने के लिए कि वो एक ही चूल्हे पे खाना पकाते हैं या नहीं, या एक ही किचन में खाना पकाते हैं या नहीं, तो इसमें कोई भी हो अगर वो एक ही किचन से खाना खा रहे हो, खाना पका रहे हो, तो उसको एक ही परिवार माना जाएगा, चाहे वो अनरिलेटेड हो, उनका कोई आपस में रिलेशन भी ना हो। जैसे आजकल हम देखते हैं 3-4 दोस्त मिलके एक छोटा सा फ्लैट लेके रहते हैं और अपना अपना खाना बनाते हैं या मेड को रख के खाना बनाते हैं, तो ऐसे में भी उनको हम एक ही परिवार मानते हैं।
1: अच्छा, इसी से जुड़ा एक और प्रश्न मेरे पास आया था कि अगर मेरी बेटी की शादी हो गई और वो किराए पर रहती है तो क्या वो अपने घर में उसको सदस्य के रूप में शामिल कर सकते हैं?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जहाँ पे रहती है वहाँ पे उसका उसको गिना जाएगा।
1: अच्छा, और अब गुरुग्राम से सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुभाष जी।
7: नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार।
7: आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय को नमस्कार।
0: जी नमस्ते।
7: मेरा सवाल ये है मैम कि जो स्वगणना का जो भूमिका है, जैसे व्यक्ति अगर स्वगणना की आपने जिक्र किया था अभी, तो उस स्वगणना में उसकी कैसी भूमिका को सत्यापन के रूप में जाना जाएगा, उसको मतलब कौन सा ऐसा प्रमुख बिंदु रहेगा जो उसके व्यक्ति के प्रमुख कार्यों को बताकर वह किस तरह से स्वीकारा जाए, उसका सत्यापन करने के क्या तरीके हैं, यही मैं पूछना चाहता था। धन्यवाद जी।
0: जी, तो जैसे मैंने कहा, स्वगणना इस बार पहली बार हम लोग ये फैसिलिटी दे रहे हैं। 2011 तक ये फैसिलिटी नहीं थी। ये इस बार इसलिए इंट्रोड्यूस की कि काफ़ी लिटरेसी भी बढ़ी है, प्लस आजकल बड़े बड़े शहरों में ये देखा जाता है कि घर के सारे सदस्य कहीं ना कहीं काम पे जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो बाहर आते हैं रहते हैं, तो प्रगणक को देने के लिए उतना टाइम उनके पास नहीं होता। लेकिन उसकी वो जो इन्फॉर्मेशन भरेगा वो सत्यापित करनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ हमारे कंसेप्ट्स है, जैसे पानी कहाँ से मिलता है या घर में टॉयलेट की फैसिलिटी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी रिस्पोंडेंट को खुद पता ना चले, क्योंकि प्रगणक को काफ़ी अच्छे से हम ट्रेन करते हैं, 3-4 दिन का उसका ट्रेनिंग होता है, उसको वीडियोस दिए जाते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल दिया जाता है, तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन अगर कभी रिस्पोंडेंट या जो खुद भर रहा है स्वगणना की इन्फॉर्मेशन कुछ गलत अगर करे तो वो प्रगणक एक बार देख के उसको बता के उसको सही करके सत्यापित कर सकता है।
1: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है रुशाली जी की, स्लम और जेजे क्लस्टर बेघर आबादी की गिनती मकान जनगणना में कैसे सुनिश्चित की जाती है?
0: जी, स्लम के एरिया के लिए तो हम जैसे मैंने कहा, एक प्रगणक के लिए छोटा सा एक एरिया होता है, तो स्लम के हम अलग से एरिया बनाते हैं, उसको अलग से कोडिंग करते हैं ताकि हमारे पास स्लम का डेटा भी आ जाए, क्योंकि उनके घर होते हैं, कच्चे हो चाहे पक्के हो, घर होते हैं, उसकी गणना की जाती है, घर नंबर भी दिया जाता है।
1: जी।
0: जो बेघर होते हैं, बेघरों की गणना पहले फेज में नहीं होती, उनको सेकंड फेज में गिना जाता है, जो कि सेकंड फेज हमारा कंप्लीट होने के बाद लास्ट डेट में जो 28 फरवरी का दिन होता है उसको रात को हम उनकी गणना करते हैं, क्योंकि जनरली ये लोग रात को ही मिलते हैं अपने किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे या किसी ब्रिज के नीचे या इस तरह के जगह पे, तो बेघरों को सिर्फ सेकंड फेज में गिना जाता है।
1: जी, तो श्रोताओं, अब आपके सवाल जो हैं वो कुछ कम हो रहे हैं, तो हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं कॉल का। आप परिचर्चा सुन रहे हैं और मकान सूचीकरण आवास गणना पर विषय आज हमने रखा है, क्योंकि जनगणना 2027 जारी है और बहुत तेज़ी से ये काम चल रहा है। जनगणना कर्मी जो है दिन भर लगे हुए हैं, आपके सवाल का जवाब जो है आप दे रहे हैं, और इसी पर आप कॉल कर सकते हैं 0112331-0481 पर, और प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। किसी भी तरह का डाउट अगर आपके मन में है और आप इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 0112371-7117 पर। हम कर रहे हैं आपके कॉल का इंतजार। रुशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास है कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधता वाले राज्यों में प्रश्नावली को समझाने की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
0: सबसे बड़ी चुनौती तो है उनको अपनी भाषा में समझाना, उनको अपनी भाषा में सारा मटेरियल उपलब्ध कराना, और प्रश्न भी उनके भाषा में होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन है जनगणना का, कि जनगणना के सारे मटेरियल 16 भाषाओं में उपलब्ध है, जो सारे हमारे मोबाइल ऐप है या पोर्टल है या स्वगणना का वेब पोर्टल है, ये भी 16 भाषा में उपलब्ध है। जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स है ये तो 19 भाषा में उपलब्ध है, क्योंकि हर एक स्टेट की या हर एक रीजन की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो उन सारे लैंग्वेज में ये सारा अवेलेबल है।
1: जी, अच्छा, 2011 में जो है अगर बात की जाए तो डेटा की एंट्रिंग, स्कैनिंग और वेरिफिकेशन में लगभग बताया जा रहा है कि 2 साल लग गए थे, लेकिन 2026 में रियल टाइम डेटा अपलोड से रिजल्ट कितने जल्दी आने की उम्मीद है?
0: बहुत अच्छा सवाल है। जैसे 2011 में पहला हमारा पब्लिकेशन आने में 2 साल लगे
1: जी।
0: लेकिन आप देख सकते, बहुत सारे क्वेश्चन पे हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो सेकंड फेज में आती है, तो एक एक सीरीज या एक एक पैरामीटर पे डेटा रिलीज करने में 6 से 8 साल लगे थे। जो हमारा लास्ट टेबल रिलीज हुआ था माइग्रेशन पे, वो हमारा 2019 में रिलीज हुआ था। क्योंकि हमारे जो पेपर पे होता था तो देश के हर कोने से पेपर कलेक्ट करना, मतलब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद वो कलेक्ट करना, वो स्कैन करना, इसी में हमारे पूरे 2 साल निकल जाते थे। अब हालांकि हमारा डिजिटल हो रहा है, रियल टाइम डेटा आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट पहला जो हमारा पब्लिकेशन है वो 8 से 9 महीने में रिलीज़ हो जाए और बाकी सारी डेटा 2 से 3 साल के अंदर अंदर डेटा पब्लिश हो जाए।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है। तो मुझे लगता है कि इसमें अगर सब लोग मिलकर भागीदार बनेंगे तो देश प्रगति की राह पर बढ़ेगा। और अब दिल्ली से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विकास जी।
8: हाँ जी, हमारे 2 मकान एक तो गाँव में है राजस्थान में और एक दिल्ली में है, तो हमारी जनगणना कहाँ होगी?
0: जहाँ पे आप रहते हैं हमेशा के लिए या ज़्यादा वक्त जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपकी जनगणना होगी। और यहाँ पे बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि अगर आपकी जनगणना यहाँ पे होगी तो गांव के मकान का क्या होगा। जनगणना का उससे कोई भी संबंध नहीं है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपकी गणना होगी।
1: हाँ ऋषाली, ये प्रश्न वैसे देखा जाए तो बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है रोज़गार के लिए बाहर आते हैं और गांव का जो घर है उनका या तो खाली पड़ा होता है, लेकिन वो होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर जो है उनसे जुड़ा हुआ होता है। तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग वो भर देते हैं, जैसे दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो दिल्ली का अगर भर जाता है तो क्या गाँव का भरना ज़रूरी होगा, और अगर छूट जाता है तो क्या होगा?
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो जनरली जनगणना की यही कंसेप्ट है कि जो आदमी जहाँ पर रहता है, क्योंकि देखिए अगर वो शहर में रहता है तो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक मतलब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मजबूत बनाना है, इसलिए जनगणना का जो कंसेप्ट है जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होगी। हालांकि मैंने फिर एक बार कहती हूँ कि इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपका गांव में भी घर है, गांव में 2 घर है, यहाँ पे 1 घर है, तो इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप जहाँ पे रहते वहाँ पे आपकी गिनती होगी।
1: जी, और अब एक और प्रश्न हमारे साथ जुड़ गए हैं, MP से राजेश नीमा जी ने प्रश्न ले रहे हैं उनका। जी राजेश जी।
9: जी, मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है कि यदि एक घर में एक मकान, आधा मकान कच्चा है और एक कमरा पक्का है, तो वो जनगणना की कौन सी श्रेणी में आएगा?
0: जी, तो जनगणना में अगर सारे सवालों के बारे में एक जिस्ट में बताऊँ तो प्रीडोमिनेंटली यानी मुख्यतः जो यूज़ होता है उसका इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर सोर्स की अगर मैं बात करूं कि आपके पास कुआं भी है और नल से भी पानी आ रहा है, लेकिन आप नल का पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो नल आपको लिखना है। उसी तरह आपका अगर आधा मकान कच्चा है आधा पक्का है, या ज़्यादा मकान पक्का है और थोड़ा सा मकान कच्चा है तो पक्का लिखना है। तो ये डिपेंड है आपका कितना पोर्शन पक्का है कितना पोर्शन कच्चा है।
1: और अब एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, पप्पू सिंह जी। जी पप्पू जी।
10: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार
10: सर। जैसे मकान के अलावा जैसे हमारा प्लॉट है और उसमें हमारे पशु बनते हैं और ईंधन खंडा रखे रहता है और वहाँ पे कुछ भी बना नहीं है, वैसे ही है, उसमें पेड़ वगैरह खड़े हैं, तो उसकी गणना भी होगी क्या?
0: जी नहीं, जैसे हमारे इस फेज का नाम है मकान सूचीकरण, तो वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, खाली प्लॉट को गिनते नहीं हैं। लेकिन वहाँ पे अगर कोई कच्चा सा शेड भी है जिसमें पशु रखे हुए हैं तो उसको एक नंबर दिया जाएगा और उसको नॉन रेसिडेंशियल करके उसको गिना जाएगा।
1: तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था एक तरीके से, क्योंकि अक्सर लोग गांव में जो होता है पशु वगैरह बांध देते हैं और पूरा एक शेड प्रॉपर ताकि बारिश से उनको बचाया जा सके वो रखते हैं। अच्छा रुशाली जी, एक और ये सवाल है कि 2011 में बैंकिंग सेवा का उपयोग नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है जनधन DBT के बाद इसे जोड़ने का क्या मकसद है?
0: मकसद यही है क्योंकि एक स्कीम शुरू की गवर्नमेंट ने जनधन योजना, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कितने लोगों के पास या कितने परिवारों के पास बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, ये देखने के लिए ये प्रश्न नए से जोड़ा गया है।
1: जी, और अंत में चलते चलते हम रुशाली जी आपसे चाहेंगे कि जनता से क्या अपील हम करना चाहेंगे ताकि वो इसमें सहयोग दे सकें पूरी तरीके से।
0: जी, जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि पूरा कोऑपरेट करें इस जनगणना के लिए, क्योंकि जनगणना से जो भी आंकड़े आते हैं फिर से एक बार दोहराती हूँ मैं, पूरी तरह से गोपनीय रखे जाते हैं, इससे कोई भी आपके ऊपर ना कोई टैक्स लगेगा, लेकिन जो भी आंकड़े आप सही आंकड़े देंगे उससे सरकार की नीतियाँ बनेगी, पॉलिसीज बनेगी, जैसे किस गांव में स्कूल बनाने हैं या किस गांव में पानी की सुविधा देनी है, अच्छे पानी देनी है या टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो इस तरह की जो भी वेलफेयर स्कीम्स सरकार बनाती है उसके लिए सही सही जानकारी देना बिल्कुल ज़रूरी है। तो यही एक अपील है कि सही जानकारी दे और कोऑपरेट करे, और जो प्रगणक है हमारे वो अपना काम संभाल के पूरा एक्स्ट्रा काम ये कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से कोऑपरेट तो करे ही, प्लस अच्छे से उनसे उनके साथ बिहेव करे, अच्छे से बात करे।
1: जी बिल्कुल वैशाली जी, क्योंकि 10 साल में एक बार ये मौका आता है कि जब आपके घर की गिनती, आपके सपनों की गिनती जो है वो की जाती है। जनगणना कोई डर की बात नहीं है, ये आपके हक की बात है, और आपका मकान गिना जाएगा तभी मकान तक सुविधा पहुँचेगी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना में भागीदार बनिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आज आप हमारे समक्ष मौजूद रहीं और हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का आपने जवाब दिया।
0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं मुझे दीजिए इजाजत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।
11: यह आकाशवाणी गोरखपुर है, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आपने अलका याग्निक के साथ नलिन देव को सुना। फिल्म का नाम था प्रेम। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आइए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक को। फिल्म का नाम है जीना तेरी गली में। इस गाने को लिखा है रविंद्र रावेल ने और संगीत दिया है बाबुल बोस ने।

जीना तेरी करीबे अभी है अपने इस फिल्म में कुमार सानू और अलका याग्निक को सुना। अगला गीत जान की कसम फिल्म का, आवाजें हैं अनुराधा पाटवाल और कुमार सानू, समीर की गीत और नदीम श्रवण का संगीत।

आई मिलन की रात, अभी आपने इस फिल्म में अनुराधा पाडवाल और मोहम्मद अजीज को सुना। गीतकार थे समीर और संगीतकार थे आनंद मिलिंद। और वही सुनते हैं लक्ष्मीकांत पैरियाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना। फिल्म है प्रेम ग्रंथ और युगल स्वर विनोद राठौर और अलका याग्निक का।

इस गाने के साथ ही हमारे आज का फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी गोरखपुर है। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में रिजय सनी मल्लिकार्जुन मंसूर का गाया राग शुद्ध नट, इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं बालकृष्ण अय्यर और हारमोनियम पर तुलसीदास बोरकर।

0: अभी अब मल्लिकार्जुन मंसूर के गाया राग शुद्धनट सुन रही थी। इनके साथ संगत कर रहे थे तबले पर बालकृष्ण अय्यर और हारमोनियम पर तुलसीदास बोरकर। अब आज का शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी गोरखपुर 11 बजे समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेले से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक

0: Bulletin.
1: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडिया वेव 330.0 विश्व नितिन मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज एवं FM बैंड 110.1 मेगा हर्ट्ज पर 11:10 और 16 सेकेंड वे हमारी आज की सायंकालीन सभा भी यहीं पर संपन्न होती है। कल प्रातः 5:50 पर अपनी प्रातःकालीन सभा के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।